सुप्रभात, हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की तिथि 26, तदनुसार 17 अगस्त सन 2026। इस समय सुबह के 5:49 होने ही वाले हैं। अब आरंभ होती है आज की हमारी ये प्रातःकालीन सभा।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। सुबह के 5:50 हुए हैं। लीजिए सुनिए चिंतन।
1: स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मनक निवास हुए छे। स्वस्थ मनक हेतु शारीरिक स्वस्थता आवश्यक कहल गेल छैक। जँ एक कहबी के सत्य मानल जाए तखन तो मनक अपेक्षा शरीरक श्रेष्ठता स्वीकार करय पड़त। शरीर प्रधान आ मन गौण भ जाए तखन तो मन के शरीरक अनुगामी मानव पड़त। कैक दृष्टियां ई धारणा जे जेहन शारीरिक स्थिति तेहन मानसिक स्थिति आब भ्रामक सिद्ध भ चुकल अछि। देखल जाय छै जे शारीरिक दृष्टियां स्वस्थ आ सबल व्यक्ति मानसिक विकार रुग्णता वा अशक्तता सँ पीड़ित होइ छथि आ शारीरिक दृष्टियां निर्बल व्यक्ति सबल स्वस्थ सुंदर मनक स्वामी होइ छथि। मानसिक स्वास्थ्य ककरा कहब? शरीर शास्त्री कहता जे जँ मस्तिष्क विभिन्न परिस्थिति में सामान्य ढंगक प्रतिक्रिया करे तो एहन मस्तिष्क वाला व्यक्ति के कहल जते जे ओ मानसिक रूप में स्वस्थ अछि। जथा जँ मन शीत उष्णता क्लेश आदिक अनुभव करे, परिस्थितिक अनुसार मन में भय घृणा द्वेष दया प्रेम आदि संवेगक स्फुरण होइक मन बाह्य जगतक प्रति सामान्य प्रतिक्रिया व्यक्त करे तो ई स्वस्थ मनक परिचायक भेल। किंतु विचारणीय जे कि यह पर्याप्त अछि? हमरा बुझना स्वस्थ मनक अर्थ अछि जे मन में कोनो विकार नहीं हो, ककरो प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं हो, छल छद्म सँ मन सर्वथा रहित हो, सभक प्रति स्नेह सद्भाव सँ भरल हो, मन में सदैव नीक उच्च विचारक उद्भव भेल करे।

0: जँ एहि अंग्रेजी लोकोक्ति आ शरीरशास्त्री लोकनिक मतके मानल जाय तँ संसारमे एहन शारीरिक दृष्टिएँ स्वस्थ कै गोटे भेटताह जिनका मनमे सदैव सद्विचारे उत्पन्न होइत होइन, कखनो कोनो दुर्विचार नहि उत्पन्न होइत होइन, जे कखनो ककरो अपकार नहि करैत होथि, सदिखन सभक उपकारे करैत होथि। उत्तर प्रायशः नकारात्मके हैत। तखन तँ ई सिद्ध भेल जे यद्यपि मनक निवास शरीरेमे होइत तथापि ओकर अपन भिन्न सत्ता छैक। एहिसँ इहो सिद्ध होइत जे मन शरीरक अनुगामी नहि होइत अपितु मन ओ सत्ता थिक जे शरीर पर शासन करैत छै। मने प्रधान थिक, शरीर गौण। आब तँ शरीर शास्त्रियो लोकनि स्वीकार करैत छथि जे शारीरिक स्वास्थ्यक लेल मानसिक स्वास्थ्य अपेक्षित अछि। जँ मन तनाव मुक्त, शांत, स्थिर आ प्रसन्न अछि तँ शरीरो स्वस्थ रहत, सबल रहत। जँ मन विकारग्रस्त अछि तँ शरीर निश्चित रूपेँ रुग्ण भऽ जायत। चिकित्सक लोकनि कहब छनि जे रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह आ कैंसर सदृश व्याधिक कारण मानसिक तनाव अछि। भारतीय तत्वदर्शी लोकनि एहि सत्यसँ परिचित छलाह। सांख्य दर्शन त्रिविध तापक मूल विकृत मनस्थितिकेँ मानै छै। संसारक आनो आनो देशमे प्राचीन कालहिसँ शारीरिक व्याधिक उपचार मानसिक उपचार द्वारा करबाक प्रथा छल। अरस्तु अपन ग्रंथ साइकोड्रामामे लिखै छथि जे दुखद स्थितिसँ त्राण पेबाक एकमात्र उपाय अछि जे मनकेँ शुद्ध आ पवित्र बनाओल जाय। ईसासँ 500 वर्ष पूर्व ग्रीसक एपिडोरसक मन्दिरमे शारीरिक व्याधिसँ ग्रस्त रोगीक मानसिक उपचार कयल जाइत छलैक आ एहिसँ रोगी स्वस्थ भऽ जाइत छलैक। कहबाक आशय ई जे मने प्रधान थिक आ विवेकी मनुष्य मनमे सद्विचार आनि मन आ शरीर दुनूकेँ स्वस्थ रखै छथि।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। सुबह के 5:55 होने वाले हैं। अब समय हो चला है किसान भाइयों के लिए कुछ जरूरी बातों का। जी हाँ, कृषि चर्चा।
2: नमस्कार, आजुक कृषि चर्चाक संग हम छी देवनारायण यादव। किसान श्रोता लोकनि, आजुक कृषि चर्चामे चर्च कऽ रहल छी नारियलके आधुनिक खेतीपर। किसान श्रोता लोकनि, ओना देखल जाय तँ जाहि दरसँ नारियलके माँग हाट बाजारमे भऽ रहल अछि ओहि दरसँ एकर पूर्ति नहि भऽ रहल अछि। सदखन नारियलके मूल्य आसमाने छूने रहैत अछि। तैँ नारियलके आधुनिक खेतीके माँग आ पूर्तिके संतुलन कयल जा सकैत अछि। ओनाहियो देखिए रहल छी जे लगले लगले पावन त्यौहार सेहो आबि रहल अछि। तऽ आउ, नारियलके खेती करबासँ पहिने नारियलके वातावरण, माटि आ जलवायुपर प्रकाश डाली। किसान श्रोता लोकनि, नारियल एकटा नगदी फसिल अछि। एकरा कल्पवृक्षके नामसँ सेहो जानल जाइत अछि। एकर खेती समुद्रीय तटीय राज्यमे विशेष रूपसँ होइत अछि। ओना बिहार राज्यके अनेको जिला सबटामे एकर खेतीके सम्भावना जताओल गेल अछि। नारियल पौध लगेबाक गप करी तँ एकरा तालाबके किनारा, नहर, सड़क, उच्चगर सेतु आ गृह वाटिकामे आसानीसँ लगाओल जा सकैत अछि। गंगा, गोदावरी गंगा इत्यादि अछि। नारियल पौधके लगेबाक समय थिक जूनके अंतिम सप्ताहसँ सितंबरके अंत धरि। खाद उर्वरकमे जून

0: जुलाई मास में 2530 किलोग्राम गोबरक सरल खाद, यूरिया 1 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 2 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, 2 किलोग्राम प्रति पौध 4 बरख के बाद देबाक चाही। शुरू बरख में ओहि मात्रा के चौथाई आधा आ 3 मात्रा चौथाई में द देबाक चाही। किसान श्रोता लोकन, खाद उर्वरक के व्यवहार करत काल हमरा लोकन को सेहो ध्यान रखबाक चाही। ओहि लेल अप्रैल मई आ सितंबर अक्टूबर में करबाक चाही। खाद उर्वरक के अलावा 100 ग्राम सोहागा, 200 ग्राम मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रति पौध व्यवहार करबाक चाही। चूना आ तुतिया के घोल गाछ के 4 फीट ऊपर प्रति बरख पोताई करबाक चाही। बीमारी से बचाव लेल 1% बोरो मिश्रण के स्टिकर संग छिड़काव करबाक चाही। छिड़काव सुरक्षा प्रति मास करबाक चाही। किसान श्रोता लोकन, जो एहि तरह हमरा लोकन नारियल के आधुनिक खेती करब तो अवश्य अछि जे नीक लाभ भ सकत अछि। ओनाहियो जे कर मांग सदखन पूजा पाठ से लऽ कऽ आ शुभ काज में होइत रहत अछि। एकरे संग कृषि चर्चा संपन्न भेल। आप देवनारायण यादव के आज्ञा देल जाओ। नमस्कार।
1: श्रोता सुन रहे थे कृषि चर्चा। आज विषय था नारियल की आधुनिक खेती। इस विषय पर जानकारी दे रहे थे देवनारायण यादव। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आप सुन रहे हैं आज की हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। इस समय सुबह के 6 होने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह ने कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण करते हुए ये बात कही।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान 5 के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी

0: आयोजित की जाएगी। इसमें 17 पेंशन वितरण बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए तैयार अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट और परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। इन विषयों में कई त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया कि अंग्रेजी का विषय 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, वाणिज्य विषय का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक और समाजशास्त्र का विषय 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। विशाखापत्तनम की सभी उड़ानें आज से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होंगी। एयर इंडिया भोगपुरम और दिल्ली के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें जारी रखेगी। 77,342 वर्ग मीटर में फैला यह नया टर्मिनल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और परिचालन दक्षता प्रदान करता है। BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। वहीं महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की जोड़ी से खेलेगी। आयुष शेट्टी का सामना चीन के शी यू क्यूई से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं। वहीं भारतीय जोड़ी MR अर्जुन और हरिहरन अंश करुणन का मुकाबला आयरलैंड की जोड़ी से होगा। उधर पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। पुरुष हॉकी में भारतीय टीम आज नीदरलैंड्स में अपने दूसरे मैच में इंग्लैंड का सामना करेगी। आज का मुकाबला पूल डी में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारत ने वेल्स पर 3-1 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी। और मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और लद्दाख में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए स्वास्थ्य चर्चा।
2: आज की स्वास्थ्य चर्चा में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति प्रकाश कर्ण से जानकारी प्राप्त करते हैं हार्ट अटैक यानी हृदय आघात के बारे में। डॉक्टर ज्योति प्रकाश कर्ण, ये हृदय आघात यानी हार्ट अटैक है क्या?
3: हार्ट अटैक का कारण है कि जो हार्ट को सप्लाई कर रहा है ब्लड, उसमें रुकावट हो जाना, सडनली बंद हो जाना, और वो बंद होने के कारण जो हार्ट को सप्लाई कम से कम हो जाता है, इस कारण से छाती दर्द और ये सब होने लगता है, ये हार्ट अटैक है आपका।
2: कारण क्या है?
3: जो 90% जो कारण है वो है प्लाक, उसमें कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाना हार्ट में, और हार्ट में कोलेस्ट्रॉल का जमा होकर फट जाना, इस कारण सडनली वो बंद हो जाएगा। ये कोलेस्ट्रॉल जो है सबसे मेन कारण होता है हार्ट अटैक वाले का।
2: कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी?
3: चर्बी, चर्बी।
2: सिम्टम्स क्या है, लक्षण?
3: लक्षण में जैसे छाती में दर्द होना, छाती में ही नहीं, आपका जबड़ा से लेके पेट के अपनी ऊपर हिस्सा तक दर्द होना हार्ट अटैक का लक्षण है। आपको दोनों बाहों में दर्द होना, खासकर बाएं बाहों में दर्द होना, पीछे दर्द होना, बैक में दर्द होना, कहीं भी आपको ऊपरी छाती के आसपास में बाह के रीजन में दर्द होता है, ये हार्ट अटैक का लक्षण है। आपको अत्यधिक गैस बनना, गैस भी लक्षण है। तीसरा चीज़ जो है वो पसीना आना, सडनली पसीना आ रहा है, आप बेहोश हो रहे हैं सडनली, आपका सांस फूल रहा है, तो ये सब अमूमन लक्षण होता है हार्ट अटैक का।
2: हार्ट अटैक के लिए खतरे की बातें क्या है?
3: सबसे जो रिस्क फैक्टर जेनेटिक होता है, हमेशा हम पूछते हैं कि भाई आपको फैमिली हिस्ट्री क्या है हार्ट अटैक की। लोग कहते हैं भाई हम तो कुछ नहीं करते लेकिन अटैक हो गया, तो बड़ा रिस्क फैक्टर एक फैमिली हिस्ट्री है। उसके बाद आपका आता है लाइफ स्टाइल, बैड हैबिट्स, सिगरेट का पीना, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल खाना, नहीं टहलना, एक्सरसाइज नहीं करना, ये रिस्क फैक्टर हो गया। आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, ये एक रिस्क फैक्टर है। तो नॉर्मली स्मोकिंग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एक्सेसिव फैटी फूड, लैक ऑफ वॉकिंग और जेनेटिक फैक्टर, ये सब जो फैक्टर है अटैक को बढ़ाता है।
2: अल्कोहल,
3: शराब जो है आपके सब ऑर्गन को ख़राब करता है, इसलिए बिल्कुल दूर ही रहें इससे, शराब से बिल्कुल दूर रहें।
2: खतरे में कौन है? डायबिटिक लोग या जिन्हें अन्य बीमारियाँ

0: क्या वो हार्ट अटैक के लिए?
1: जी बिल्कुल, डायबिटीज में क्या होता है कि आपका एक पहले से टेंडेंसी है आर्टरी नैरो होता है, जो नॉर्मल डायबिटिक आदमी नॉर्मल पर्सन में और डायबिटिक पर्सन में लोग एंजियोग्राफी करते हैं, डायबिटिक्स का आर्टरी पहले से ही पतला होता है, डिफ्यूजली डिजीज होता है वो, तो अब हमेशा ज़्यादा खतरनाक होता है डायबिटिक में, पहली बात। दूसरी बात है कि डायबिटीज वाले को ब्लॉकेज जो होता है एक आर्टरी में नहीं, वो मल्टीपल आर्टरी में ब्लॉकेज होता है, एक साथ सब आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है। तीसरी बात, डायबिटीज वाले को ज़्यादातर आपको बाईपास की सलाह दी जाती है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो जाता है, तो नंबर वन डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक है। खासकर जो यंग स्मोकर्स जो होते हैं, जो सिगरेट पीते हैं 40 साल से पहले, उसको बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, पहली बात। दूसरी बात है कि उसमें अटैक के बाद कॉम्प्लिकेशन चांस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि कोलेक्टर्स नहीं बना होता है। कोलेक्टर्स एक होता है जो कि एक बन जाता है कभी कभी ओल्ड एज में, लेकिन यंग में होता नहीं कोलेक्टर्स, इसलिए चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है आपकी यंग पर्सन में।
0: जांच क्या करवाते हैं इसके लिए?
1: जी शुरुआती जांच में जैसे एक ECG हो गया, ECG में हम लोग नॉर्मल आपका ECG करते हैं, फिर आपका एक ट्रेडमिल टेस्ट कहते हैं, इसमें हम लोग ECG लगाते हैं और आपको एक मशीन होता है ट्रेडमिल करके, उसमें चला के देखते हैं कि भाई चलने से कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। उसके बाद एक इकोकार्डियोग्राफी जांच होता है, फिर हम लोग जो कंफर्म करते हैं वो एंजियोग्राफी से करते हैं। एंजियोग्राफी नॉर्मली एक सुई के द्वारा होता है, बहुत छोटी सी जांच है, सुई के साइज का एक नीडल होता है जिसको हम लोग हाथ की नस या पैर की नस में घुसा के हार्ट तक पतली सी कैथेटर ले जाते हैं, जहाँ से हम लोग कॉन्ट्रास्ट और डाई डाल के देख लेते हैं कि कितना कितना ब्लॉकेज है सब में।
0: और उसके बाद अगर कंफर्म हो गया कि ब्लॉकेज है तो फिर ट्रीटमेंट क्या है?
1: ट्रीटमेंट जो अटैक का है, दो तीन तरह का ट्रीटमेंट है। जो शुरुआती ट्रीटमेंट था वो हम लोग रेस्ट था खाली, उसके बाद इवॉल्व थोड़ा सा और आगे आया तो हम लोग का मेडिकल थ्रोम्बोलिसिस आने लगा, जिसमें कि दवाई के द्वारा घुलने लगा आर्टरी, लेकिन उससे चांसेस था ब्रेन हेमरेज होने का ज़्यादा। अब जो सबसे अच्छा इलाज है वो है हम लोग का एंजियोप्लास्टी कहते हैं, जैसे ब्लॉकेज हुआ उसमें क्या करते हैं, कैथेटर के थ्रू ही एक पतली तार घुसा देते हैं आर्टरी में, बैलून से उसको खोल देते हैं और वहाँ पे एक स्टेंट लगा देते हैं।
0: जी, जिन्हें एक बार अटैक आ गया है उनके लिए क्या दूसरी बार या तीसरी बार अटैक होने का खतरा ज़्यादा होता है?
1: बिल्कुल ज़्यादा होता है। जो नॉर्मल आदमी है जिसको अटैक आ चुका है वो भी एक रिस्क फैक्टर ही है, जैसे हाँ। आपका हाइपरटेंशन रिस्क फैक्टर, ऐसे एक प्रीवियस अटैक भी एक तरह से रिस्क फैक्टर है।
0: लाइफ स्टाइल के बारे में, खान पान, रहन सहन,
1: जी
0: ये सारी चीज़ें,
1: बिल्कुल आपका समय से सोना सबसे इम्पोर्टेंट है, समय से जागना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका जागने के बाद जो हेल्दी लाइफ स्टाइल होता है, जैसे कि वॉक करना है, योगा करना, प्राणायाम करना, वो करना जरूरी है। आप डाइट ले, आप संतुलित आहार ले, अपना फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का ये सेवन बढ़ाएं, फैटी चीज़, ऑयली चीज़, तला भुना चीज़ कम ले, मीठी चीज़ का भी से, जैसे पहले नमक कम था, आप तो शुगर कम भी हम लोग कहते हैं, मीठी चीज़ कम से कम ले, डायबिटिक नहीं है तो भी कम ले आप।
0: चलते चलते क्या सलाह देंगे?
1: बिल्कुल हार्ट से अटैक से घबराए नहीं, बिल्कुल छोटा सा पार्ट है लेकिन सबसे खतरनाक ये चीज़ है, बिल्कुल लक्षण को नज़रअंदाज न करें।
2: श्रोता सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा, आज विषय था हार्ट अटैक। इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर ज्योति प्रकाश कर्ण। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, सुबह के 6:10 हुए हैं, समय हो चला है भक्ति संगीत के हमारे इस कार्यक्रम वंदना का। आइए इस कार्यक्रम का आरंभ समूह स्वर में गाए इस देश वंदना से।

समूह स्वर में आप सुन रहे थे ये देश वंदना। भक्ति संगीत का हमारा ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं वंदना। कहते हैं जो औरों को तो धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं, लेकिन स्वयं भस्म लपेटे शमशान में विराजते हैं। जो संसार के सबसे बड़े जोगी हैं, जो संसार के सबसे आदर्श गृहस्थ हैं, जो बच्चों के पिता हैं, अनाथों के नाथ हैं, कहते हैं जिन्हें अपने भक्त की सच्ची श्रद्धा प्रिय है, तभी तो उनके भक्त उन्हें एक लोटा जल समर्पित कर अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त कर लेता है। इन्हें ही तो देवाधिदेव महादेव कहते हैं, वो देव जिनकी आराधना केवल देवता या मनुष्य ही नहीं करते, जिनकी आराधना तो पशु पक्षी पेड़ पौधे और मौसम भी करते हैं। सावन के इस पवित्र महीने में सच्ची श्रद्धा और भक्ति से जिसने भी शिव को पुकारा है, शिव ने उसकी हर कामना पूरी की है। आइए ना हम सब मिलकर ऐसे कृपालु भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, भगवान सबके कष्टों को दूर करें।

सच में कहते हैं जो जन्म और मृत्यु से भी परे हैं, जो साकार भी है निराकार भी है। रूप और आकार से परे, प्रकाश और अंधकार से परे, जब ज्येष्ठ और आषाढ़ माह की प्रचंड गर्मी जीव जंतु को व्याकुल कर देती है, पानी की बूंदों के लिए जब ये प्यासी धरती तरसने लगती है, तब पशु पक्षी और प्रकृति की पुकार को सबसे पहले अगर कोई सुनते हैं तो वो है महादेव। अपनी जटाओं में लपेटे हुए उस गंगा की निर्मल धारा को जीवन रूपी अमृत बनाकर बरसा देते हैं सावन के उन कोमल बूंदों की तरह, जो प्यास से तृप्ती धरती को तृप्त करती है, पशु पक्षी को आनंद से विभोर कर देती है। इन्हें ही तो शिव कहते हैं। शिव है तो सावन है।

भक्ति संगीत का हमारा ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं वंदना। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा, सूचना शिक्षा और मनोरंजन एक साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।

0: सच में कहते हैं जिनके नाम लेने मात्र से ही हमारे रोग शोक और कष्टों का नाश हो जाए, ऐसे कृपालु कोई और नहीं, भगवान भोलेनाथ तो ही हैं। और भोलेनाथ जिनका नाम ही है भोलेनाथ, सच्ची श्रद्धा से भक्तों के हर कष्ट को दूर करने वाली, बस सच्ची श्रद्धा और भक्ति जिन्हें अपने भक्तों की प्रिय है। भक्ति संगीत का हमारा ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे वंदना। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं आज के हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। अब प्रस्तुत है ए हरिहरन के स्वर में रामचरित मानस गान,
1: एपिसोड 62।

अपना नाम एक तनु बताने वाले कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु का विश्वास जीतने के लिए उसे तप की महिमा बताई, जिसके प्रताप से ब्रह्मा जगत की सृष्टि करते हैं और विष्णु उसका पालन करते हैं। कर्म धर्म की कथाएं कहकर वो वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। ये सुनकर जब राजा प्रताप भानु पूर्ण रूप से उसके प्रभाव में आ गया और उसे अपना नाम बताने को हुआ, तो कपटी मुनि एक तनु ने कहा, हे राजन, मैं तुमको जानता हूं। अभी तक अपने विषय में तुम्हारा कुछ न बताना मुझे अच्छा लगा। ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं बताते। तुम महाराज सत्यकेतु के पुत्र प्रताप भानु हो। तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, साधु संतों में निष्ठा और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे प्रति ममता जगी है। अतः तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो।

राजा प्रताप भानु ने मुनि को प्रसन्न जानकर अपनी ओर से ये दुर्लभ वर मांगा कि उसके शरीर को वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख नहीं व्यापे, उसे युद्ध में कोई नहीं जीत सके और वो इस पृथ्वी पर 100 कल्प तक निष्कंटक राज्य करता रहे। तपस्वी ने कहा, ऐसा ही होगा। केवल ब्राह्मण कुल छोड़कर काम भी तुम्हारे सामने झुकेगा।

अभी आप सुन रहे थे ए हरिहरन के स्वर में रामचरित मानस कान। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं आज की हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। श्रोताओं, अब जानकारी प्राप्त कीजिए आज हमारे इस केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों के विषय में।

आज की हमारी सभा में अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। प्यार भरे फिल्मी गीतों का हमारा कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत सुबह 9:50 से। आज सुबह 10:30 पर आप सुनेंगे महाकवि की रचनाएं विद्यापति गीत। महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम होगा नारी संसार अपने निर्धारित समय दोपहर 12:30 से। दोपहर 1:10 समय होगा देशभक्ति गीतों का। दोपहर 1:15 पर एक बार फिर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम। अपराह्न 3 बजे समय होगा लोक गीतों का। आज की हमारी सायंकालीन सभा में शाम 5 बजे युवा श्रोताओं के लिए हमारा कार्यक्रम होगा तरुण कुसुम। शाम 5:40 पर आप सुनेंगे नई फिल्मों से लिए कुछ गीत। शाम 6:10 पर श्रोता सुनेंगे विद्यापति गीत। ग्रामीण भाइयों का अपना कार्यक्रम होगा गांव घर अपने निर्धारित समय शाम 6:30 से।

किसान भाई सुन सकेंगे अपना कार्यक्रम खेती गृहस्थी शाम 7 बजे से। खेती गृहस्थी कार्यक्रम में आज किसान श्रोता सुनेंगे चर्चा पपीता की उन्नत खेती। रात 8:15 ये समय होगा हमारे मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार का। रात 9:30 पर श्रोता सुनेंगे पब्लिक स्पीक, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। और अपनी पसंद के पुरानी फिल्मी गीतों का जीवंत फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी आज आप सुनेंगे रात 10 बजे से। श्रोता जानकारी प्राप्त कर रहे थे आकाशवाणी दरभंगा से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों के विषय में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना का पहला चरण 1 सितंबर से शुरू होगा। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार इन क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ये विशेष व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर के कई इलाके सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण महीनों तक कटे रहते हैं। ऐसे में वहां समय पर जनगणना पूरी करना चुनौतीपूर्ण होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना का कार्यक्रम देश के बाकी हिस्सों से पहले रखा गया है। जनगणना संचालन निदेशक अमित शर्मा ने बताया कि इस प्रक्रिया से निवासियों को 1 से 30 सितंबर तक घर घर जाकर जाने वाली जनसंख्या गणना से पहले डिजिटल रूप से अपनी जानकारी देने का अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया है कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में, वाणिज्य विषय का परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह ने कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करते हुए ये बात कही। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली

में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान 5 के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इसमें 17 पेंशन वितरण बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए तैयार अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे। विशाखापट्टनम की सभी उड़ानें आज से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होंगी। एयर इंडिया भोगपुरम और दिल्ली के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें जारी रखेंगी। 77,342 वर्ग मीटर में फैला ये नया टर्मिनल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और परिचालन दक्षता प्रदान करता है। BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबल से होगा। वहीं महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की जोड़ी से खेलेगी। आयुष शेट्टी का सामना चीन के शी यू क्योई से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बाय मिलने के बाद पहले ही दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं। MR अर्जुन और हरिहरन अमसारुक्कुन का मुकाबला आयरलैंड की जोड़ी स्कॉट गिल्डिया और पॉल रेनॉल्ड्स से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारा ये कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार
1: मिथिला।
0: नमस्कार मिथिला सुना निहार समस्त श्रोता के आजुक नव अंक में स्वागत है। हम छी अंजनी और हमरा संगे छथि सुधाकर जी। सुधाकर जी अहूँ के हमरा तरफ से नमस्कार।
1: नमस्कार अंजनी जी, साथ ही साथ आज इस कार्यक्रम को सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को हृदय से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसी अंजनी जी?
0: बिल्कुल ठीक छी। और देखियो जे जनहिते भोर उठते अपने सब हाल समाचार पूछा लगे छन, नीक हाल चाल चाहे जे भी भोर उठते। ई जरूरी नहीं छै जे सब गोटे नीके रहथिन, बहुत गोटे के कोनो कोनो समस्यो रहै छन, मुदा सुविचार जे अपना सब के मन में आबैत रहै छै तऽ नीके विचार लऽ कऽ अपना सब उठै छी। तऽ तहिना श्रोता सब के सेहो सुविचार आजका सुना दियौन।
1: बिल्कुल अंजनी जी, आज का सुविचार श्रोताओं तक पहुँचाने से पहले हम ये कहना चाहेंगे कि जब हम किसी से उसका हाल पूछते हैं ना, तो हमारे हृदय में उस व्यक्ति के बेहतर की कामना छुपी होती है। हम जब आपसे आपका हाल पूछते हैं तो उसके पीछे उद्देश्य होता है कि हमारे हृदय में आपके लिए बेहतर की कामना है उस परम शक्ति से, उस ईश्वर से। इसीलिए जब हम किसी से मिलते हैं तो कहते हैं भैया आप कैसे हो, या मैम आप कैसी हैं, या चाचा जी आप कैसे हैं। और आज इस कार्यक्रम में बात हो रही है सुविचार की, तो आज का सुविचार है जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, स्वामी विवेकानंद।
0: बिल्कुल। और देखियो जे अपना सबके जीवन जो संघर्षमय नहीं हुए तो अपने सब सीख के लिए जो सुचारू रूप से कहल गया जे दुख के बाद जे सुख अबैत अछि ओकर आनंद, और सुख के बाद जे दुख अबैत अछि ओकर जे विपत्ति अला के बाद जे मन में हर्षित जे रहिए से हर्ष जे खत्म भ जाइए ओकर आनंद किछ अलग रहिए। तहिना अपने सबके कार्यक्रम में सब रंग के चीज अपने सब श्रोता सबके लेल परोसके आनै छी, जेना हालचाल, जेना एखन अहाँ सुविचार कहलहुँ, आजुक इतिहास में सेहो किछ खास अछि,

0: श्रोता सबके सुना दिया।
1: जी हाँ श्रोता, आज के इतिहास की बात की जाए तो आज के इतिहास की जो बात है उसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि 1743 ईस्वी में स्वीडन और रूस के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, यानी आज ही के दिन 17 अगस्त को। और आज ही के दिन यानी 17 अगस्त को ही 1836 ईस्वी में ब्रिटेन की संसद में जन्म, विवाह और मृत्यु से संबंधित पंजीकरण स्वीकार किए गए। इससे पहले शादी और जन्म के रजिस्ट्रेशन की प्रथा नहीं थी,
0: नहीं चला है।
1: साथ ही साथ बात करें आज के दिन की, तो आज ही के दिन 1858 ईस्वी में पहला बैंक खोला गया था। और आज ही के दिन सन 2009 ईस्वी में आंतरिक सुरक्षा के मामलों पर देश के सभी मुख्यमंत्रियों का एक दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। और आज जन्म लेने वाले कुछ विशेष व्यक्तियों की बात करें तो आज ही के दिन सन 1916 ईस्वी में अमृतलाल नागर का जन्म हुआ था, जो साहित्य जगत में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त उपन्यासकार थे। आज ही के दिन सन 1961 ईस्वी में अनामिका नामक कवित्री, जो हिंदी भाषा की जानी मानी कवित्री हैं, उनका जन्म हुआ था। और आज के दिन जिन व्यक्तियों का निधन हुआ है उनके बारे में बता दें, 2007 ईस्वी में दशरथ मांझी, जिसे हम आप माउंटेन मैन के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी के प्रेम में पहाड़ों को काट कर भी रास्ता बना दिया था।
0: जी जी,
1: आज ही के दिन यानी 2007 ईस्वी में दशरथ मांझी जी का निधन हुआ था, जो भारत के ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें दुनिया आज भी माउंटेन मैन के नाम से जानती है। तो ये था आज के इतिहास पर एक छोटी सी नजर। अंजनी जी, हम चाहेंगे कि श्रोताओं को इस कार्यक्रम में ढेर सारी भाई जो चीजें उनका इंतजार होता है, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, हम तीनों एक साथ समेटते हैं। तो समय हो चला है मैथिली सुगम संगीत का। तो आइए श्रोताओं, आप तक पहुंचाते हैं ये मैथिली सुगम संगीत।

0: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन मैं करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
1: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार पुनः स्वागत है आप सभी सुनने वालों का। इस अंतराल से पहले हम लोग सुन रहे थे हर दिन की तरह इस कार्यक्रम में मैथिली सुगम संगीत, और अंजनी जी आज कलाकार थी राखी कुमारी। श्रोताओं, अब इस कार्यक्रम में आपको होगा इंतजार हालचाल का, तो हालचाल के साथ उपस्थित हो चुकी हैं अंजनी कुमारी।
3: धन्यवाद सुधाकर जी, आप सुनो हमारा सा हालचाल। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि पर विद्यालय, शिक्षण संस्थान सहित भाजपा कार्यालय सब में हुनक पुण्यतिथि मनायल गेल। 80वां स्वतंत्रता दिवस पर पोलो मैदान लहरियासराय में आयोजित जिला मुख्यालय समारोह में दरभंगाक प्रसिद्ध उद्योगपति आ समाजसेवी कृष्णकांत ठाकुर के वाणिज्य कर विभाग द्वारा उत्कृष्ट वस्तु एवं सेवा कर विवरणी आ एकीकृत वस्तु सेवा कर भुगतानक लेल प्रतिष्ठित भामा शाह पुरस्कार से सम्मानित कयल गेल। मिथिलाक बाबाधाम कुशेश्वर स्थान में सावनक

0: चार सोमवार के दिन बाबा कुशेश्वर नाथ महादेवक पूजा अर्चना के लेल रवि दिन साँझे से श्रद्धालु सभक भीड़ देखल गेल। सोमवार के पूर्व संध्या में एतेक भीड़ देखत प्रशासन निर्धारित सुरक्षा पर विशेष निर्देश दिलक अछि। मेला के ल क सुरक्षा विशेष कड़ा क देल गेल अछि। 80वां स्वतंत्रता दिवस पर नेहरू स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में पथ निर्माण आ जिलाक प्रभारी मंत्री ई कुमार शैलेन्द्र ध्वजारोहण कयलनि। मंत्री कहलनि जे दरभंगा केवल एकटा प्रशासनिक जिला नहीं अछि बल्कि मिथिलाक समृद्ध सांस्कृतिक ऐतिहासिक आ साहित्यिक विरासत के महत्वपूर्ण केन्द्र अछि। दरभंगा मिथिलाक आत्मा अछि। ओ कहलनि जे आइ के दरभंगा अपन गौरवशाली इतिहास के संग संग विकासक नव कहानी लिख रहल अछि। नवविवाहिता द्वारा मिथिलांचल में पूजल जाय वाला पावनि मधुश्रावणी टेमी दागवा के संग संपन्न भऽ गेल। शनि दिन एकर समापन भेल। 3 अगस्त से आरंभ भेल ई पूजा 15 अगस्त के श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया के भगवती नाग देव देवी सहित अन्य देवताक पूजाक संग संपन्न भेल। अखंड सौभाग्य के कामनाक संगी पूजा विवाहक प्रथम बरख पर होबयवला श्रावण में नवविवाहिता द्वारा कयल जाइत अछि। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे के अध्यक्षता में संस्कृत सप्ताह समारोह आयोजित करवाक लेल बैसार कयल गेल, जाहि में 25 से 31 अगस्त धरि समारोहक आयोजन करवाक आम सहमति बनल। समारोहक सफलताक लेल समिति सबके गठन कयल गेल। PRO डॉक्टर निशिकांत बतौलनि जे 25 अगस्त के दरबार हॉल में उद्घाटन हैत आ 26 के शास्त्र चर्चा हैत। 27 के सांस्कृतिक शोभा यात्रा निकालल जात। जिला में माध्यमिक आ उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षा हासिल कर रहल विद्यार्थी सब के लेल एकटा राहत आ उम्मीद भरल जानकारी सरकार देलक अछि। शिक्षा विभाग शहर के 17 गोट चयनित माध्यमिक आ उच्च माध्यमिक विद्यालय सब में जल्द ही वोकेशनल यानी व्यावसायिक कोर्सक पढ़ाई शुरू कर जा रहल अछि, जेकरा लेल शिक्षक सबके चयन प्रक्रिया पूर्ण कऽ लेल गेल अछि। एहि पहल के मुख्य उद्देश्य छात्र छात्रा सबके पारंपरिक अकादमिक शिक्षा संग संग बाजारक वर्तमान मांग गक अनुरूप व्यावहारिक आ तकनीकी कौशल प्रदान केनाय अछि। पर्यावरण वन आ जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद हायाघाट प्रखंड के गंगा सागर पोखरि होरलपट्टी महादेव मंदिर परिसर में प्रस्तावित पार्क स्थल के निरीक्षण कयलनि। ओ परियोजनाक रूपरेखा आ निर्माण से जुड़ल विभिन्न पहलू पर विस्तृत समीक्षा कयलनि। स्थल निरीक्षण के समय वन प्रमंडल पदाधिकारी दरभंगा आ पार्क निर्माण विशेषज्ञ सब के टीम के संग प्रस्तावित पार्कक संकल्पना विकास कार्य हरित क्षेत्र पर्यावरणीय संतुलन आ आमजन के लेल प्रस्तावित सुविधा सब पर विचार विमर्श कयलनि। कुंवर सिंह महाविद्यालय में शनि दिन उत्सवी वातावरण में स्वतंत्रता दिवस समारोह मनायल गेल। प्रधानाचार्य डॉक्टर शंभु कुमार यादव राष्ट्रीय ध्वज फहरौलनि। ओ युवा के लोकतांत्रिक मूल्य आ नैतिकताक पालन करैत राष्ट्र आ समाजक विकास में सक्रिय भूमिका निभेबाक संदेश देलनि। एहि अवसर पर छात्र छात्रा सब एक स्वतंत्र राष्ट्र में सशक्तिकरण की अभिव्यक्तियाँ विषय पर मूक नाट्य के प्रस्तुति देलनि। एखन अपने सब सुनि रहल छी हालचाल।
1: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन में करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50

0: 1000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं, तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
1: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है, कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: शेष हालचाल विरामक पश्चात बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पटना के सौजन्य सौ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना कोषांग द्वारा समस्तीपुर जिला के विभिन्न कॉलेज सबके 200 NSS स्वयं सेवक सबके 7 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर के जुबली हॉल में अतिथि सबके संग रवि के उद्घाटन कयल गेल। शिविर के शुभारंभ राष्ट्रगीत आ राष्ट्रगान सँ भेल। विज्ञान संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी के अध्यक्षता में आयोजित उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा के सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी प्रणव राज, मुख्य वक्ता हवलदार कृष्ण नंदन सिंह, सम्मानित अतिथि के रूप में भूगोल के प्राध्यापक सह आपदा प्रशिक्षक डॉक्टर हरीश सामारिया, विषय प्रवेशक सह शिविर संयोजक डॉक्टर RN चौरसिया, स्वागतकर्ता सह कार्यक्रम समन्वयक टू डॉक्टर शबनम कुमारी आदि विचार व्यक्त कयलनि। उद्घाटन सत्र सँ पूर्व छात्र छात्रा के पंजीयन करायल गेल आ शैक्षणिक सामग्री एवं आपदा प्रबंधन पुस्तक प्रदान कयल गेल। प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी 800 स्वयंसेवक के आपदा प्रबंधन के प्रशिक्षण देवा के लेल समाज के लेल काफी लाभदायक बतौलनि अछि। राष्ट्रीय आ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कतेको मेडल जीत चुकल जलालुद्दीन के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आ खेल मंत्री श्रेयसी सिंह के उपस्थिति में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी पटना में प्रशस्ति पत्र द कऽ सम्मानित कयलनि। जिला के टिकटार निवासी अंतर्राष्ट्रीय पैरा साइकिलिस्ट जलालुद्दीन के फिलीपींस से लौटला पर सम्मानित कयल जाय के सूचना पर लोक सब हुनका बधाई देलनि। माँ श्यामा मंदिर न्यास समिति के उपाध्यक्ष प्रोफेसर जयशंकर झा कहलनि जे जलालुद्दीन अपन कड़ा मेहनत सँ कामयाबी की सीढ़ी चढ़ि रहल अछि। शिक्षाविद डॉक्टर शिवकिशोर राय जलालुद्दीन के सहयोग करबाक लेल उज्ज्वल कुमार के अखन धरि प्रयासक सराहना कयलनि। नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित 20वीं ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस कप कराटा चैंपियनशिप में दरभंगा के खिलाड़ी सब 3 गोट कांस्य पदक हासिल कैलक। अय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर से करीब 2500 खिलाड़ी सब हिस्सा लेने छल। प्रतियोगिता में सुप्रिया कुमारी कैडेट महिला व्यक्तिगत कुमिते के 47 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक हासिल कैलक। ओतहि युवराज आदर्श जूनियर पुरुष व्यक्तिगत कुमिते के 67 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक अपन नाम कैलक। निशांत चौधरी अंडर 14 बालक 40 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत कर अपन प्रतिभाक परिचय देलक। शाहपुर पटोरी प्रखंड अनुमंडल प्रशासन द्वारा कतेको लोक के सम्मानित कयल गेल। एहिमे जल योद्धा के रूप में विशेष आमंत्रित मोहिद्दीन नगर निवासी भाई रणवीर कुमार सिंह आ मोहनपुर निवासी कुणाल कुमार सिंह के स्मृति चिन्ह आ प्रशस्ति पत्र द कऽ सम्मानित कयल गेल। सम्मानित होबय वाला अन्य लोक सब में IAS बनबाक लेल मोहिद्दीन नगर के राजा जान निवासी अभिषेक चौहान, BPSC के परीक्षा उत्तीर्ण करय वाला SDM बनय वाला पटोरी के राखी कुमारी, नगर कार्यपालक अधिकारी पद में चयनित पटोरी के तन्नु प्रिया,

0: आरडीओ वीडियो पद के लेल चयनित पटोरी के आयुष अमन आ मनोज कुमार के सेहो सम्मानित कयल गेल। शिक्षा विभाग बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के लेल विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया जारी कऽ देलक अछि। एकरा तहत ई शिक्षा कोष पोर्टल पर होबय वला स्थानांतरण प्रक्रिया के विभिन्न बिंदु सब के स्पष्ट कयल गेल अछि। विभाग द्वारा कहल गेल अछि जे एहिसँ स्थानांतरण के प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय आ यूजर फ्रेंडली बनत। नगर के दर्जनों शिक्षक के जानकारी दैत बतौलनि जे SOP के अनुसार पहिल बेर स्थानांतरण के लेल आवेदन करबा में नियमावली में निर्धारित न्यूनतम 5 वर्षक सेवा अवधि के शर्त के शिथिल कयल गेल अछि। हालांकि प्रोबेशन अवधि में कार्यरत शिक्षक जिनका एखन धरि 2 वर्ष नहि पुरलनि यऽ वा प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक स्थानांतरण के पात्र नहि हेता। स्थानांतरण के लेल सेवा अवधि आ कार्य अनुभव के गणना 31 मार्च 2026 तक से आरंभ कयल जात। तो ई छल हालचाल।
1: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन में करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
2: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह ले। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
0: एखन अपने सब सुनै छलहुँ हालचाल और मौसमक जानकारी जो सुधाकर जी दऽ दियौन श्रोता सबके। तो 15 से 19 अगस्त धरि 2026 धरि के मौसम पूर्वानुमान के अनुसारे जे हमरा सबके प्राप्त होइत अछि ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर सँ, ओहिके अनुसारे जँ देखी तऽ उत्तर बिहार के गोपालगंज, सारण, सिवान, पूर्वी आ पश्चिमी चंपारण जिला के अनेक स्थान पर पूरा पूर्वानुमानित अवधि के दौरान गरज के संग मध्यम वर्षा होबाक संभावना अछि। समस्तीपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा आ अन्य जिला में 15 से 18 अगस्त के आसपास 1-2 दिन गरज के संग वर्षा भऽ जायत। पूर्वानुमानित अवधि के ज़्यादातर समय आकाश में हल्लुक बादल आ आसमान के प्रायः साफ रहबाक संभावना अछि। एहि अवधि के दौरान हल्लुक से मध्यम वर्षा होबाक अनुमान तो अछि। सिवान जिला के किछु स्थान पर 15 से 17 अगस्त के बीच भारी वर्षा होबाक संभावना सेहो अछि। एहि दौरान अधिकतम तापमान 33 से 37 डिग्री सेल्सियस आ न्यूनतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहबाक संभावना अछि। सापेक्ष आर्द्रता जँ देखी तऽ भोर में 80 से 90% आ दोपहर के समय 50 से 55% के आसपास रहबाक संभावना अछि। पूर्वानुमानित अवधि में हवा मुख्यतः पूर्वी दिशा से 5 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से चलबाक संभावना अछि। तो ई छल मौसम के संभावित जे बतायल गेल अछि अनुमान ओ अछि। और देखियो सुधाकर जी, जे कहल गेल अछि प्रकृति के और मन के, ई दुनू के अपने सब बांधि के नहीं रख सकै छी।
3: और देखिए ना, आपने मौसम की जब सूचना दी है अंजनी जी, तो किसानों के चेहरे भी खिले होंगे। खेत जो है उनमें बारिश की बूंदों का इंतजार हो रहा है।
0: जी जी।
3: धान के जो फसल है ना, उनको पानी की ज्यादा जरूरत होती है। तो और सावन का जो ये महीना होता है वो प्रकृति के लिए भी एक आनंददायी महीना होता है। वो प्रकृति भी इंतजार करती है इस महीने का।
0: और देखियो ने जे एहि मास में पुरुष और प्रकृति, जेना भगवान शिव के पूजा होइ छन आ एखन जे नव विवाहिता के पावन भेल अछि माता पार्वती के, जे सौभाग्य के कामना के लेल जे माता पार्वती गणपति भगवान

0: यानी गणेश भगवान, नाग नागिन, सब देवी देवता चारू तरफ से ओहिमे उपस्थित भेलथि, हुनका स्थापित कऽ कऽ पूजा कयल गेल अछि। तऽ तहिना पुरुष और प्रकृति के जेना हम पूजा एहि मास मे करै छी, तहिना सावन मास पवित्र मास कहल गेल अछि।
1: बिल्कुल अंजनी जी, देखिए ना, आपने कही प्रकृति और पुरुष की बात की, तो प्रकृति जो है वो माँ है और पुरुष उसे हम शिव का रूप मानते हैं। तो इन दोनों के जो ये मिलन का जो ये महीना होता है ना, इसे भी सावन का महीना कहा जाता है। प्रकृति और पुरुष जब एक हो जाती है, प्रकृति खिल उठती है, हरियाली और खुशहाली चारों तरफ फैल जाते हैं। और देखे ना, लगातार बातों का ये सिलसिला जारी है। खुशहाली की बात हमने की है, हरियाली की बात की है, तो इस कार्यक्रम में भी थोड़े सी
0: हरियाली एबाक आवश्यकता छै। बिल्कुल, हम समझ रहल छी जे अहाँ के इच्छा भऽ रहल अछि मनोरंजन के दिस चलबाक, तऽ आउ पहिले फिल्म संगीत सुन लै छी, ओकर बाद फिर अपने सब उपस्थित हैब।

0: आशाओं के सावन में, सच में जब ज्येष्ठ और आषाढ़ की वो चिलचिलाती गर्मी, वो बेचैनी, पशु पक्षी ही नहीं, जीव जंतु ही नहीं, प्रकृति की भी आशा को निराशा में बदल देती है, तो फिर उनके अंदर एक आशा जगती है। उसी आशा का नाम है सावन।
1: सावन। और देखियो जे एखन सावन में बरखा नहीं ओहन जेहन अपना सबको होय के चाही तेहन नहीं भेल अछि, मुदा जे उमंग के गप केलहुँ तो धियापुता के देखै छियनि जे खेलल जे जाय छै धियापुता जे खिलाड़ी छथि ओ हुनका में उमंग के उत्साह के कमी नहीं छनि एहि गर्मियों में एहि धूपों में। तो खेल जे छै से अपना सबके जीवनक महत्वपूर्ण अंग छै, ओ न केवल शारीरिक विकास में मदद करैत अछि बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लेल सेहो अपना सबके लेल सुदृढ़ करैत अछि। और खेल के माध्यम से हमने केवल शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रहै छी बल्कि टीम भावना के सहयोग और नेतृत्व, जना अपना सबके कोनो चीज में जना एकटा परिवार में अगर चार आदमी छी, तीन आदमी बैठल छथिन एक आदमी काम करे छथिन तो कामो धीरे धीरे होइ छै, और दोसर गप जे समय पर खानो नहीं बन पावे छै, समय पर कोनो काजो नहीं भ पावे या, वह चार आदमी अगर अपन अपन सहयोग के भावना रखे छथिन, नेतृत्व एक आदमी कऽ कऽ सहयोग के भावना तीन आदमी रखे छथिन अगर, तो ओ काज अपना सबके जल्दी भ जाए छै। तहिना खेल में टीम के भावना जे छै और नेतृत्व के भावना ओकर आवश्यकता अवश्य राखी। अनुशासन, एहिमे एकटा कहल जाइत अछि अनुशासन, और ई विशेषता जे छै से खेल में आवश्यक छै।
0: बिल्कुल सही कहा आपने अंजनी जी। देखिए ना, आपने कही कि वो जो खेल जो है ना वो केवल आनंद का माध्यम नहीं है, वो हमें लीडरशिप के गुण को भी विकसित करता है, स्वतः ही हमें वो नेतृत्वकर्ता का गुण भी विकसित होने लगता है, साथ ही साथ हमें खोजी प्रवृत्ति भी आती है। दूसरी बात कि हम अपने मतलब आने वाली समस्याओं को लेकर भी जागरूक हो जाते हैं, उनसे संघर्ष करना हम सीख जाते हैं, और जब खेलते हैं हम तो वो खेल कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने में सहयोगी होता है। आपने कहा अनुशासन की बात, तो अनुशासन के बिना तो खेल संभव है ही नहीं, क्योंकि जिस तरह से अगर अनुशासन ना हो तो नदियां अपनी सीमाओं को तोड़ देती है, जो जीवनदायिनी नदियां अनुशासित होकर बहती है तो वो खेत खलिहान को हरियाली से भर देती है, अगर वो अनुशासन को तोड़ दे, कहने का मतलब है अगर उनका अनुशासन टूट जाए तो वो फिर विनाश का रूप ले लेती है। बिल्कुल उसी तरह जिंदगी में, हमारी आपकी जिंदगी में अनुशासन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, और ये अनुशासन ही हमें बेहतर बनाता है। जब हम खेलते हैं तो उस खेल के कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, उस नियम के खिलाफ हम नहीं जा सकते हैं, तभी उस खेल का आनंद हमें मिलता है।
1: बिल्कुल। और देखियो जे समय जे छै हमर सबके यानी उम्र, ओ अपना पड़ाव से के सुचारू रूप से चलैत अछि, मुदा कहल गेल अछि बहुत लोग कहै छथिन जे खेल के उम्र हमरा सबके आब नहीं रहल, और जब हम अपना कहै छै ना जे इनार के बेंग जे कहै छै ओइसे जो निकल के देखै छी, तो खेल जे छै से हर उम्र के लोग सबके लेल आवश्यक छै, बच्चा के लेल खेल।

नहि, सिर्फ बच्चाके लेल हम कहै छियै बौआ शारीरिक व्यायाम छै, मनोरञ्जन छै, ओ छै, लेकिन हमरा लेल ओ जे छै शारीरिक तन्दुरुस्ती हमरा सबके लेल छै। आओर कम उम्रमे जे खेलके विकसित अनुशासन आओर सफलता दिस अपने सब ध्यान दै छी, ओहिके सकारात्मकता दिस ध्यान दै छी, तऽ ई जरूर अपना सब ओकरा देखै छी जे ओ खेलके भावना एकटा बच्चामे एहि तरहे आबि जाइ छै जे ओ बच्चा नमहर भऽ कऽ एकटा परिवारके नेतृत्व करै लायक भऽ जाइ छै। आओर जबकि अपना सब जानै छी जे हर परिवारसँ लऽ कऽ खेलै

0: सही कहा आपने, नेतृत्व की भावना का विकास होना। जब नेतृत्व की भावना का विकास होता है, अब जैसे खेल खेल में ही छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मान ले जाए क्रिकेट खेलते हैं, तो उनमें एक बच्चा कैप्टन बनता है। जब वो कैप्टन बनता है तो उसमें नेतृत्व का जो वो गुण है वो धीरे धीरे विकसित होने लगता है। वो जानता है कि किस खिलाड़ी को हम कहाँ सेट करें, किसकी फील्डिंग कहाँ लगाए, ये जो गुण है ना ये विकसित होने लगता है। और ये गुण जीवन में उसके हर जगह काम आता है। जब वो बच्चा बड़ा होता है, अपने परिवार में वो नेतृत्व करता है, तो परिवार को बेहतर तरीके से, सामंजस्यपूर्ण तरीके से कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे विकसित करना है, ये गुण उसमें उस खेल भावना के साथ ही विकसित हो जाती है जो उसने बचपन में खेल खेल में ही सीखी थी। और यही नेतृत्व करने का गुण अगर वो समाज में लेकर आता है, देश में लेकर आता है, तो देश और समाज को भी वो विकसित और
1: कह
0: आगे
1: सके।
0: बढ़ाता है।
1: हाँ, और कार्यक्रम अपने सब से हो आगू बढ़े जाए छी, अपन कार्यक्रम आगू बढ़े जाइए तो सब किस श्रोता सब के समक्ष परसे के जरूरतों छे ना।
0: अंजनी जी, ऐसा होता है ना कि जब श्रोताओं के बीच हम आप बैठते हैं
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: श्रोताओं के बीच श्रोताओं के साथ बातें करना शुरू करते हैं ना, तो पता ही नहीं चलता है कि समय कब
1: समय कखन आगू बढ़े। हाँ
0: तो
1: हाँ
0: बिल्कुल, श्रोताओं को भी इंतजार है, प्यारे प्यारे फिल्मी गीतों का भी, तो श्रोताओं आप तक पहुंचाते हैं ये प्यारा सा फिल्म संगीत।

0: श्रोता सुन रहे थे ये फिल्म संगीत, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा और आप सुन रहे हैं अपना ही ये कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। और अंजनी जी, कार्यक्रम में अब तो और ज़्यादा समय हमारे पास शेष नहीं बचा है, तो हम चाहेंगे श्रोताओं तक और भी प्यारी प्यारी जो जरूरी बातें हैं वो पहुँचाई जाए।
1: बिल्कुल। आ देखियौ जे सावन मासक अपने सब चर्चा केने छलहुँ, खेलमे अनुशासन तऽ चर्चा केलहुँ ओहिके कारण, एहि दुआरे जे कोनो भी प्रकृति जखन अपना समयसँ चलै छै, अपना अनुसारे चलै छै, ने हमरा अनुसारे ने अहाँके अनुसारे, ओकर जे दोहन हमसब कऽ रहल छी, दोहन मतलब पेड़ पौधा काटि रहल छियै, समय जगह जगह बांध बनि रहल छै, बांध बनैके इएह बात छै कि हम मतलब जे जनता छै से बचल रहै, जे लोक छथिन ओ विध्वंस होइसँ किछोसँ बचल रहथिन, मुदा हमसब ओकर की माने लगा लेलियै तऽ पेड़ पौधा काटऽ लगलियै, अपन ओकर सुन्दरता खत्म करल। अहाँ देखियौ जतऽ गाछी छै एखनो गाँव घरमे या शहरमे कतहु गाछी देखाइए, अपने सब ओकरा पर्यटन स्थल बना देने छियै। कारण की छै तऽ अपना सब ओहन पेड़ पौधा नहि देख रहल छियै, मुदा एक समय छलै हन सुधाकर जी जे ई पेड़ पौधा देखैवला छलै हन, गाँव घरके लोक लगबै छलखिन, रङ्ग रङ्गके गाछ वृक्ष जड़ी बूटी, आओर एखन अपना सब ओहि जड़ी बूटीके खरीदैके लेल जगह जगह जा रहल छी, ओहि जड़ी बूटीके पाबैके लेल, देखैके लेल पर्यटन स्थल बना देल गेल अछि, ओतऽ देखैके लेल फलाना छै चिलाना छै, मुदा ओकर जे दोहन हमसब कऽ रहल छी, एहि पृथ्वीके जे ई समस्या छै, वैश्विक संकट छै, ओहिसँ अपने सब केना उबरबै, ओकर समस्याके समाधान अपने सबके पास छै।
0: अंजनी जी, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि हम सब प्रकृति से ही आते हैं और प्रकृति में ही मिल जाते हैं। हमारे ये जीवन प्रकृति का उपहार है और हम ये भूल जाते हैं कि जिस प्रकृति की गोद में हम पलते हैं वो प्रकृति अगर सुंदर है, स्वच्छ है, तभी हमारा जीवन भी सुंदर और स्वच्छ है, खुशहाल है। होता क्या है ना कि हमारी जो भोगवादी और विलासितापूर्ण जीवन शैली है ना, ये विलासितापूर्ण जीवन शैली आज प्रकृति के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायी साबित हो रही है।
1: और देखियौ जे अहाँ कहलियै जे भोग और विलासिता, तऽ परिवर्तन आवश्यक छै, ई जरूरी नहि छै जे परिवर्तन आइ परिवर्तन नहि होइतै तऽ हमरा अहाँके हाथमे मोबाइल नहि होइतै, आइ परिवर्तन नहि होइतै जे हम अहाँ कम्प्यूटरके सामने नहि बैसल रहितहुँ, तऽ मुदा एहि चीजके कारण की छै, एहि चीजके आधुनिक जीवन तऽ हम अहाँ जी रहल छियै, मुदा तापमानमे जे वृद्धि कहै छियै, बहुत गर्मी छै एखन देखियौ जे सावन मासमे, आओर पानि आवश्यकतासँ कम अछि ओकर कारण की अछि, बरखा आवश्यकतासँ कम अछि ओकर कारण की अछि, हमही सब छी ओकर कारण, ग्लेशियरके पिघलनाइ, मौसमके हलचलमे खतरनाक बदलाव, ई सब हमसब कऽ रहल छियै, एहिपर अगर हमसब भविष्य हमर सबके आगू केहन हेतै ई सब जानकारी

0: हमरा सब छै, किएक तऽ हमसब शिक्षित मानव छियै आओर शिक्षित मानव होइतहुँ अपना सब आगू नहि बढ़ि रहल छै जलवायुके परिवर्तित करऽमे, मुदा अपना सबके एहिके लेल ठोस कदम उठाबऽ पड़तै, किएक तऽ जलवायु परिवर्तन भेलासँ अपने सबके ओकर प्रभाव पड़ि रहल छै।
1: अंजलि जी, एक बात जो आपने कही ना कि हम लोग शिक्षित हैं, तो भाई शिक्षित हैं तो वो शिक्षा हमारे जीवन में भी दिखना चाहिए। हमें सबसे पहले एक लाइन में अपने जिंदगी को ये समझाना होगा कि भाई आवश्यक और आवश्यकता के अंतर को समझना होगा। आवश्यकताएं अनंत है, लेकिन जो आवश्यक है हमें उस पर ध्यान देना है। आज जिस तरह से हमने प्रकृति का नुकसान किया है, चलिए एक चीज़ अच्छी बात है कि अब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता हो रही है और लोग इस बात को समझ रहे हैं कि हमने प्रकृति को जितना नुकसान पहुंचाया है वो हमारे लिए कितना जानलेवा हो गया है। और अब लोगों में, छात्रों में और समाज में भी ये परंपरा धीरे धीरे बढ़ी है, पेड़ पौधों को लगाने की जो प्रवृत्ति है ना वो लोगों में अब बढ़ रही है।
0: बढ़ रहा
1: और जल जल जो स्रोत हैं हमारे, अंजनि जी, हमारे जितने भी संस्कार है वो जल से जुड़े हुए हैं, तालाबों से जुड़े हुए हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक। लेकिन उन्हीं तालाबों को जब अब छठ के समय में हम साल में एक बार तालाब को साफ कर दे और सालों भर गंदगी फैलाते रहे, ये तो अच्छी बात नहीं है। हमें अपनी प्रवृत्ति को सुधारना होगा, अच्छाई और सफाई की आदत को सब दिन और हरदम बनाए रखना होगा।
0: हाँ हाँ, और हरित विकल्प जे हरियाली अछि ओहि पर विशेष ध्यान देबाक जरूरी अछि, और प्लास्टिक के उपयोग अपना सब कम करी। जते भी फैक्ट्री सँ जे गंदा मलबा निकलै छै या गंदगी निकलै छै ओकरा अपना सब कम करी। कोयला, पेट्रोल और डीजल से जे निकलैत अछि जीवाश्म ईंधन ओकरा अपना सब कम
1: और थोड़ी सी जिंदगी को प्राकृतिक बनाइए, विलासितापूर्ण जीवन शैली को बदले। हाँ, हम आप हमेशा एसी कूलर में ही ना रहे, थोड़ा सा पेड़ पौधों के पास भी बैठे। हाँ, उनके उनको भी जाने, अपने बच्चों को भी पेड़ पौधों की जानकारी दे, उन्हें भी बताए। आज पंच पल्लव की जब हमें जरूरत होती है, अंजनी जी ने बिल्कुल सही कहा कि हम गाँव गाँव में घूमते हैं उन पंच पल्लवों को लेने के लिए। अरे सर जी, हम लोग अपने बगीचे में ही उन्हें लगाए, अपने बच्चों को भी समझाए, अपने संस्कृति और अपने पर्यावरण को बचाए। समय हमें और ज्यादा देर आपके साथ बने रहने की इजाजत नहीं दे रहा अंजनी जी, तो इन्हीं बातों के साथ अब इस कार्यक्रम से हम लेते हैं विदा। आप सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। नमस्कार मिथिला।

श्रोता सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं आज की हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम सूचना शिक्षा और मनोरंजन एक साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा। कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: भोर होते उठ जाओ कि एकता इजोतक पहल किरण संग

0: फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घुराय लगैत अछि, ऊर्जा आबयवला काल्हि लेल।
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
2: आ मनुख ले अंत जरूरी पानी बुन्नी नहीं है तो खेती नहीं है, आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है तो हमरा लोकन खाब की।
3: मामा बने जाने बाबा देने ज्यादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
5: मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज, साथ ही न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा। आप सुन रहे हैं आज के हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। इस समय सुबह के 8 होने ही वाले। अब समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
6: सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
7: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
6: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
8: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
9: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
10: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना का पहला चरण वाली 1 सितंबर से शुरू होगा। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। 1 अक्टूबर को संदर्भ तिथि मानकर लद्दाख में जनगणना 2027 पूरी हो जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
11: लद्दाख देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहा है, जहां जनगणना 2027 का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके अंतर्गत जनसंख्या गणना 1 से 30 सितंबर तक होगी। स्वगणना आज से शुरू हो रही है। लद्दाख में पूरी आबादी को शामिल करने के लिए करीब 637 गणना ब्लॉक बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जनगणना संचालन अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि सितंबर में जनसंख्या गणना कराने का निर्णय क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी, दुर्गम इलाकों और सीमित पहुंच को देखते हुए लिया गया है। जनसंख्या गणना में आबादी के वितरण, जनसांख्यिकी संरचना, शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों, पलायन, दिव्यांगता, भाषा, प्रजनन और आबादी से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाई जाएंगी। जनगणना 2027 डिजिटल माध्यम से कराई जा रही है। यांगचेन डोलमा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
10: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया है कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में, वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से

0: दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की मंजूरी के लिए सिफारिश की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हैं। मंत्रालय ने बताया है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्किंग प्लानिंग ग्रुप NPG तंत्र के माध्यम से किया गया है। ये जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने संसद में हाल ही में संपन्न मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में लिखित उत्तर में दी। इसका उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एकीकृत योजना और अवसंरचना परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक साथ लाना है। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल X @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC JSSC भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
1: JPSC JSSC अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट टिक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने JSSC CGL परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मध्य प्रदेश के इंदौर में देश में पहला वर्चुअल चिड़ियाघर शुरू किया है। इसके साथ ही इंदौर प्राणी संग्रहालय में 14D सिनेमा थिएटर और वर्चुअल जंगल सफारी की सुविधा भी शुरू हुई है। एक रिपोर्ट।
2: करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से PPP मॉडल पर 14D सिनेमा और वर्चुअल जंगल सफारी तैयार की गई है। वर्चुअल जंगल सफारी में लोग तकनीक के जरिए जंगल और वन्य जीवों का आभासी अनुभव ले सकेंगे। वहीं 14D सिनेमा में दर्शकों को फिल्म देखने का अलग अनुभव मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन सुविधाओं का कल लोकार्पण किया और स्कूली बच्चों के साथ 14D सिनेमा में फिल्म भी देखी। इन नई सुविधाओं से बच्चों और पर्यटकों को वन्य जीवों और प्रकृति को तकनीक के जरिए समझने का मौका मिलेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान के 5वें चरण के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की प्रगति केवल सामूहिक संकल्प और एकता की शक्ति से ही संभव है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा कि यही भावना भारत की प्रगति और समृद्धि की मजबूत नींव है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं।

0: सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 011-23-31-04-81 या 23-71-17-17 या 23-71-71-06 और 23-31-44-44। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज पटना में चुनावी साक्षरता क्लब का शुभारंभ करेंगे। इस पहल को चुनावी साक्षरता, डिजिटल सहभागिता और लोकतंत्र में नागरिकों की सार्थक भागीदारी को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। उड़ीसा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
1: राज्य सरकार ने प्रभावित जिलों के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है और भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर में राहत और बहाली के काम में तालमेल बिठाने के लिए 3 IAS अधिकारियों को तैनात किया है। मछुआरों को कल तक समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। बालेश्वर जिले के जलेश्वर में लगातार बारिश के कारण एक दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और 1 अन्य गंभीर रूप से घायल है। मयूरभंज जिले में रेल सेवा भी प्रभावित हुई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू हो गई है। पुंछ जिले की मंडी तहसील में बाबा श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर की 12 दिवसीय ये वार्षिक यात्रा 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। एक रिपोर्ट।
2: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को कड़ी सुरक्षा के बीच पुंछ के लिए रवाना किया। राजौरी और पुंछ जिलों में यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुंछ जिला प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अग्रिम पंजीकरण की सुविधा देने के लिए एक विशेष पोर्टल भी शुरू किया है। समुद्र तल से करीब 4,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में स्वयंभू सफेद पत्थर का शिवलिंग है। यात्रा से जुड़ी सहायता के लिए श्रद्धालु जम्मू यातायात नियंत्रण इकाई से 01912467302 और श्रीनगर यातायात नियंत्रण इकाई से 01942479871 पर संपर्क कर सकते हैं। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं कृष्णकांत।
3: BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। भारतीय खिलाड़ी आज से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त PV सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। महिला डबल्स में ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज से भिड़ेंगी। पुरुष डबल्स में 5वीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गौले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद प्रियंका। वंदे मातरम पर तीखी तकरार और UGC नेट पेपर में गड़बड़ी से जुड़ी खबरों को आज हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, आजादी के उत्सव के बाद सत्ता और विपक्ष में सियासी संग्राम। कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम के गायन के बीच टोका टाकी, भाजपा बोली माफी मांगे। रेलवे स्टेशनों के पानी में जहरीले बैक्टीरिया मिलने की CAG की रिपोर्ट के बाद नवभारत टाइम्स ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस बयान को सुर्खी दी है कि रेलवे करीब 20,000 जगहों पर नया टैंक टू टैप पानी फिल्टर सिस्टम लगाएगा। पुरानी टंकियां बदली जाएंगी और नियमित जाँच होगी। 5 बार के तृणमूल विधायक आशीष बनर्जी के दफ्तर में खुदकुशी की खबर को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट हटाने की वजह जान सकेंगे यूजर्स। अमर उजाला की सुर्खी है, लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद बड़े सुधार की चल रही है तैयारी। छोटे शहरों में JEE, नीट, CUET के मुफ्त कोचिंग सेंटर खोलेगी सरकार। पंजाब, हरियाणा सहित 7 राज्य साथी पोर्टल से पायलट प्रोजेक्ट में 21 लाख बच्चे ले चुके हैं कोचिंग। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, कभी नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ रहे बस्तर में आजादी के बाद से पहली बार तिरंगा फहराया जाना और

0: Delhi-based Indians were among 65 skydivers who jumped from an aircraft at an altitude of 13,000 feet, each carrying their respective national flag, making it to the Guinness World Records. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Pramod. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Cells enumeration for Census 2027 to begin today in Ladakh and identify snowbound areas of Jammu and Kashmir. NTA to reconduct UGC NET exams for three subjects, English, Sociology and Commerce, following complaints of errors in these papers. Protesting Jharkhand students to hold fresh round of talks with state government in Ranchi today. IMD issues red alert for very heavy rainfall in Odisha and Gangetic West Bengal. Annual pilgrimage to Himalayan Shrine of Burha Amarnath begins in Jammu and Kashmir. And BWF Badminton World Championships to begin today in New Delhi. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर, पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के शिनाख्तशुदा बर्फानी इलाकों में 2027 की मर्दुम शुमारी के लिए खुद इंदराज का अमल आज से शुरू हो रहा है। इम्तिहान मुनक़िद कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए तीन मजामीन इंग्लिश कॉमर्स और समाजी उलूम के पर्चों में गलतियों की शिकायत के बाद इन तीनों मजामीन के लिए यूजीसी नेट इम्तिहानात दोबारा मुनक़िद कराएगी। झारखंड में एहतजाज कराने वाले तलबा आज रांची में रियासती सरकार के साथ बातचीत का ताज़ा दौर शुरू करेंगे। महकमे मौसमियात IMD ने उड़ीसा गंगोत्री मगरबी बंगाल में इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में कदीम बाबा बुद्ध अमरनाथ मंदिर के लिए सालाना श्री बुद्ध अमरनाथ यात्रा आज से शुरू होगी और BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप आज नई दिल्ली में शुरू हो रही है। अब खबरें तफसील से। मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके लद्दाख में सितंबर के महीने में मर्दुम शुमारी 2027 के दूसरे मरहले के तहत आबादी के इंदराज का अमल मुकम्मल किया जाएगा। इससे कबल आज से खुद इंदराज का अमल शुरू हो रहा है। ये मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके लद्दाख में आज से शुरू होकर 31 अगस्त तक जारी रहेगा। तफसील हमारे नामा निगार से।
3: लद्दाख मुल्क में मरकज के ज़ेर इंतज़ाम ऐसा पहला इलाका बन जाएगा जहां 1 सितंबर से 30 सितंबर के दौरान आबादी के इंदराज का अमल के साथ ही मर्दमशुमारी 2027 का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। खुद इंदराज के अमल आज से शुरू हो रहा है। लद्दाख में मुकम्मल कवरेज के लिए तकरीबन 637 इंदराज के ब्लॉक्स बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए मर्दमशुमारी के ऑपरेशन से मुतालिक अफसर अमित शर्मा ने बताया कि इस खित्ते में मौसम सरमा की सख्त सूरत हाल, मुश्किल रास्तों और लद्दाख तक महदूद रसाई की पेश नज़र सितम्बर के शेड्यूल का मनसूबा बनाया गया था। मर्दमशुमारी 2027 डिजिटल तरीके से की जा रही है। मकानात की फहरिस्त साजी का अमल 1 जून से 30 जून तक मुकम्मल कर लिया गया था। लेह लद्दाख से यंगचन डोलमा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
2: जम्मू कश्मीर के बर्फानी इलाकों में डिजिटल तरीके से खुद इंदराज का अमल आज से शुरू होकर 31 अगस्त 2026 तक जारी रहेगा। ये आने वाली मर्दमशुमारी के आबादी का इंदराज के अमल का हिस्सा है। हमारे जम्मू के नामा निगार ने खबर दी है कि आज से मखसूस इलाकों में रिहायशियों को डिजिटल इंदराज के अमल के जरिए अपनी तफसीलात दर्ज कराने की सहूलत फराहम की जाएगी। ये सहूलत जम्मू कश्मीर के 1115 गांव और 3 म्यूनसिपल्टियों उरी, गुलमर्ग और किश्तवाड़ के लोगों के लिए दस्तियाब होगी। मर्दमशुमारी के चीफ प्रिंसिपल ऑफिसर अमित शर्मा ने कहा है कि हुक्काम इस मुहिम के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने आबादी के इंदराज के अमल को मर्दमशुमारी का सबसे अहम मरहला करार दिया है। इम्तिहान मुनक़िद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने UGC नेट इम्तिहान के इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के तीन पेपर का दोबारा टेस्ट कराने का ऐलान किया है। इन तीनों पेपरों का इम्तिहान इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि इन पेपरों में बहुत सी गलतियों के बारे में शिकायत मौसूल हुई थी। NTA ने कहा है कि इंग्लिश का पेपर एक शिफ्ट में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक 9 सितम्बर को कराया जाएगा, जबकि उसी रोज़ कॉमर्स का पेपर 2 शिफ्ट में सुपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक करा

0: जाएगा और सोशियोलॉजी का पेपर 10 सितंबर को एक ही शिफ्ट में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक कराया जाएगा। एनटीए ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप अवार्ड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एहलियत और पीएचडी प्रोग्राम्स के दाखिले के लिए 87 मजामीन में 22 से 30 जून तक यूजीसी नेट 2026 के इम्तिहानात मुनाकिद कराए थे। एनटीए ने एक कमेटी तश्कील दी है ताकि इन गलतियों की इंक्वायरी की जा सके। कमेटी ने सिफारिश की है कि एक मुनसिफाना और गलतियों से मुबर्रा इम्तिहान के मफाद में इन तीनों पेपरों का इम्तिहान दोबारा कराया जाना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों का एहतजाज आज 24वें दिन में दाखिल हो गया है। तलबा भर्ती के इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों पर अपना एहतजाज तेज कर रहे हैं। हुकूमत और तलबा के नुमाइंदों के दरमियान बातचीत का ताज़ा दौर आज शुरू हो रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: जेपीएससी जेएसएससी तलबा ने कल रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट इक्का चौक तक एहतजाज मार्च निकाला और वजीर आला हेमंत सोरेन, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव के पुतले नजर आतिश किए। तलबा ने रियासती सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की और भर्ती के अमल में मुबैना बेजाबतगियों जेपीएससी और जेएसएससी के इम्तहानात को मनसूख किए जाने की अपनी मांग को दोहराया और भर्ती के इम्तहानात में बेजाबतियों की सीबीआई जांच की मांग की। इसी दौरान रियासती सरकार ने मुज़ाकरात के जरिए इस मसले को हल करने की अपनी एक और कोशिश का आगाज़ किया है और इस सिलसिले में आज दोपहर 2 बजे मुजाहरा करने वाले तलबा को बातचीत के लिए मधु किया है। तलबा को अपने कानूनी मुशीरों के साथ बातचीत में शामिल करने की भी इजाज़त दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा है कि अगर सरकार तलबा की मांगें पूरी करती है तो एजिटेशन ख़त्म करने की जानिब इकदाम किए जा सकते हैं, वरना एहतजाज जारी रहेगा। तलबा ने 20 अगस्त को वज़ीर आला की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज करने का पहले ही ऐलान कर दिया है, लेकिन कतई फैसला देवेंद्रनाथ महतो की सेहत और आज की बातचीत के नतीजे पर मुनसिर होगा। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: एयर इंडिया ने ऐलान किया है कि उसकी विशाखापट्टनम की तमाम परवाजें आज से भोगापुरम में वाकई अलूरी सीताराम राजू बैन अलाक्वामी हवाई अड्डे से चलाई जाएंगी। एक प्रेस रिलीज में एयर इंडिया ने बताया कि वो भोगापुरम और दिल्ली के दरमियान हफ्तेवार 14 परवाजें जारी रखेगी। 77,342 मुरबा मीटर पर मुहित ये नया टर्मिनल मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात फराहम करता है। हुकूमत ने कहा है कि पीएम गति शक्ति पहल के तहत अब तक 18.66 लाख करोड़ रुपए की तखमीना लागत के साथ मुख्तलिफ वजारतों के बुनियादी ढांचे के 396 प्रोजेक्टों को मंजूर करने के लिए सिफारिश की गई है। इसके लिए कॉमर्स और सनत की वजारत ने कहा है कि इन प्रोजेक्टों में 256 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई है और इनमें से 198 प्रोजेक्ट जेर नफाज हैं। उसने मजीद कहा है कि इन प्रोजेक्टों का नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप NPG मैकेनिज्म के जरिए कदर कीमत का अंदाजा लगाया गया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज मगरबी बंगाल के गंगोत्री और उड़ीसा में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने अगले 2 दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मशरकी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में भी इस तरह के हालात रहने की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक आज आसाम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी शदीद बारिश का इम्कान है। उसने ये भी कहा है कि अगले 2 से 3 दिन के दौरान अंडमान निकोबार जजीरे, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है, जबकि इसी तरह के हालात मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में भी रहने की पेशगोई की है। उड़ीसा में शदीद बारिश का इम्कान है क्योंकि आज खलीज बंगाल के ऊपर हवा का कम दबाव और शदीद हो सकता है, जिससे शिमाली जिलों में सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब होने का खतरा है। महकमे मौसमियात IMD ने 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और शिमाली उड़ीसा में कई मकामात पर शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। दरियाओं में तुगयानी और लाखों लोगों के मुतासिर होने के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने राहत कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया है। वजीर आला मोहन चरण मांझी आज सैलाब से मुतासरा भद्रक और जाजपुर जिलों का फजाई जायजा लेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: सैलाब से मुतासरा इलाकों में सूरत हाल खराब है। कई शुमाली जिलों के इलाकों में पानी भर गया है। रियासती हुकूमत

0: उसे के साथ नुमाया गया है कि नौजवानों को मुफ्त कोचिंग और मसनू ज़हानत AI की ट्रेनिंग दी जाएगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने राजस्थान के शहर अलवर में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया।
1: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के शिनाख्तशुदा बर्फानी इलाकों में 2027 की मर्दमशुमारी के लिए खुद इंदराज का अमल आज से शुरू हो रहा है। इम्तहान मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA 3 मजामीन इंग्लिश, कॉमर्स और समाजी उलूम के पर्चों में गलतियों की शिकायत के बाद इन तीनों मजामीन के लिए

आज से शुरू हो रहा है। इम्तिहान मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA तीन मजामीन इंग्लिश, कॉमर्स और समाजी उलूम के पर्चों में गलतियों की शिकायत के बाद इन तीनों मजामीन के लिए UGC नेट इम्तिहान दोबारा मुनाकिद कराएगी। झारखंड में एहतजाज करने वाले तलबा आज रांची में रियासती सरकार के साथ बातचीत का ताज़ा दौर शुरू करेंगे। महकमे मौसमियात ने ओडिशा, गंगोत्री, मगरबी बंगाल में इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में कदीम बाबा बुद्ध अमरनाथ मंदिर के लिए सालाना श्री बुद्ध अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो गई है और BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप आज नई दिल्ली में शुरू हो रही है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

0: मीडियम वेग 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी पटना है। कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: आपकी जिंदगी में कौन जीतता है, दिल या दिमाग? दिमाग समझा रहा है घी तेल कम खाओ तंदुरुस्त रहोगे, पर दिल ललचा रहा है अंकल जी रोज पराठे दबाते हैं कुछ नहीं हुआ। दिमाग मनाता है कल को ऐसी बीमारियां हो गई कुछ खाई ना पाओ तो क्या फायदा, इसलिए आधे लड्डू से काम चलाओ, पर दिल जिद करता है खाऊंगा तो पूरा ही। इसलिए सोचिए आपकी जिंदगी में हर दिन कौन जीतता है, क्योंकि तंदुरुस्ती दिल से ज्यादा दिमाग का खेल है। आज से ही खाने में चीनी नमक और तेल कम कीजिए।
2: खाद्य संरक्षा आयुक्त स्वास्थ्य विभाग बिहार और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: अगर आपके योग्यता के अनुकूल हो नौकरियों का अवसर तो आप क्या करेंगे?
4: मैं तो तुरंत अप्लाई करूंगा।
3: और अगर ये मौके हो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, रिटेल और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में,
4: फिर तो ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा।
3: तो सुन लीजिए, बिहार सरकार के युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग बिहार कौशल विकास मिशन लेकर आ रहा है रोजगार मेला 2026, जहां है लगभग 20,000 रिक्तियां। दिनांक 19 से 23 अगस्त 2026, स्थान ज्ञान भवन उत्तरी गांधी मैदान पटना।
5: रोजगार है तैयार, अपने भविष्य दे आकार।
3: पंजीकरण के लिए detjob.bihar.gov.in/registration पर जाएं और आज ही अपना पंजीकरण करें। बिना पूर्व पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के आप इस मेले में भाग नहीं ले सकते हैं। साथ अपने निर्धारित तिथि और समय पर ही साक्षात्कार के लिए आएं। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1-800-296-5656 पर संपर्क करें।
5: आपकी सफलता हमारी प्रतिबद्धता। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: और इस गीत के बाद
7: छाया गीत।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार युवाओं को डिजिटल निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने के लिए आज पटना से निर्वाचन साक्षरता क्लब 2.0 की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए आज विद्यार्थी सहयोग पोर्टल का करेंगे लोकार्पण। सावन की तीसरी सोमवारी पर लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ मचने से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत, 10 से अधिक घायल। और मौसम विभाग ने आज कैमूर, गया, जमुई और नवादा जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से।

0: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज पटना से निर्वाचन साक्षरता क्लब ईएलसी 2.0 की शुरुआत करेंगे। यह पहल निर्वाचन साक्षरता, डिजिटल सहभागिता और लोकतंत्र में नागरिकों की सार्थक भागीदारी को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: युवाओं के बढ़ते डिजिटल जुड़ाव को देखते हुए ईएलसी 2.0 की शुरुआत की जा रही है। निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2018 में युवा नागरिकों को निर्वाचन प्रक्रिया से परिचित कराने के मकसद से ईएलसी की शुरुआत की थी। ईएलसी 2.0 के तहत अगले 6 महीने में देश भर के 15 लाख विद्यालयों, 70,000 महाविद्यालयों और 1,420 विश्वविद्यालयों में ईएलसी के गठन का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही इन सभी ईएलसी को भारत निर्वाचन आयोग के नेटवर्क ईसीआई नेट से जोड़ा जाएगा। इधर एक अन्य कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार राजगीर के नालंदा विश्वविद्यालय में आज लगभग 500 बूथ लेवल अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज विद्यार्थियों की शैक्षणिक और छात्रावास संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए विद्यार्थी सहयोग पोर्टल का लोकार्पण करेंगे। विद्यार्थी सहयोग .bihar.gov.in पर अपनी समस्याएं दर्ज कराने के साथ सुझाव भी दे सकेंगे। परिवाद दर्ज कराने की तिथि से 30 दिनों के अंदर निष्पादन सुनिश्चित कर आवेदक को लिखित सूचना दी जाएगी। साथ ही प्रत्येक महीने के चौथे मंगलवार को विद्यार्थी सहयोग शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। विद्यार्थी सहयोग शिविर की जानकारी के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1100 पर संपर्क कर सकते हैं। पटना के जेडी वीमेंस कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी भी मौजूद रहेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2026 के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। योग्य अभ्यर्थी 31 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। एसटीईटी के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण होना और संबंधित विषय में बीएड की डिग्री होना अनिवार्य है। परीक्षा 2 पेपर में होगी। पेपर 1 माध्यमिक और पेपर 2 उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए है। पेपर 1 में 16 और पेपर 2 में 29 विषयों की परीक्षा होगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में नियुक्ति प्रक्रिया पर चर्चा होने के साथ ही वर्तमान पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए तबादला नीति पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य में 7,000 से अधिक पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति होने की संभावना है। नियुक्ति से पहले पात्रता परीक्षा आयोजित होगी, जिसका आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। एनटीए ने बताया कि अंग्रेजी और वाणिज्य विषय की पुनर्परीक्षा 9 सितम्बर को जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा 10 सितम्बर को आयोजित की जाएगी। प्रदेश में महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी की 8वीं श्रृंखला पर रोड शो और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण एवं विकास ट्रस्ट NMETT पर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यशाला में केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, खान मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, खनिज अन्वेषण और परामर्श लिमिटेड के प्रतिनिधि, राज्य सरकार के अधिकारी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और निवेशक शामिल होंगे। बैठक में खान एवं भूतत्व मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। बैठक में निवेशकों को बिहार के महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों, नीलामी प्रक्रिया, बोली प्रणाली और निवेश की संभावनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही समयबद्ध स्वीकृति, सिंगल विंडो सुविधा और भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होगी। राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में आज से पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था लागू की जा रही है। इस व्यवस्था के तहत

0: रजिस्ट्री की प्रक्रिया में कागजी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी और डिजिटल दस्तावेजों के आधार पर निबंधन पूरा किया जाएगा। नई रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होते ही डिजिटल डीड व्हाट्सएप और एसएमएस के माध्यम से मोबाइल पर भेज दी जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संत रविदास के समरसता, सामाजिक समानता और मानवता के संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए श्री गुरु संत रविदास कलश यात्रा को प्रखंड स्तर तक ले जाने का निर्देश दिया है। इस यात्रा का आयोजन कल से 20 अगस्त तक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने श्री गुरु रविदास समरसता संकल्प अभियान की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए। श्री चौधरी ने कहा कि अभियान के तहत हर महीने के पहले गुरुवार को संत रविदास शिविर लगाया जाएगा। ये शिविर अगले वर्ष 15 फरवरी तक लगेंगे। इसके तहत अनुसूचित जाति बहुल गांवों और बसावटों में सरकारी योजनाओं और सुविधाओं की 100% उपलब्धता सुनिश्चित करने पर बल दिया जाएगा। प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान करने वाले नियोक्ताओं पर अब श्रम विभाग के अधिकारी भी जुर्माना लगा सकेंगे। श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग ने श्रम आयुक्त, अपर श्रम आयुक्त और संयुक्त श्रम आयुक्त को यह अधिकार दिया है। अब तक नियोक्ताओं पर जुर्माना लगाने का अधिकार श्रम न्यायालय के पास था। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव आज पटना में भामाशाह सम्मान समारोह में राज्य स्तरीय कॉरपोरेट श्रेणी के करदाताओं को सम्मानित करेंगे। साथ ही उप मुख्यमंत्री पटना जिले के नॉन कॉरपोरेट श्रेणी के करदाताओं को भी सम्मानित करेंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। सावन की तीसरी सोमवारी पर लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ मचने से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह घटना अशोक धाम स्टेशन से मंदिर जाने वाले रास्ते पर हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बिजली के गिरे खंभे में करंट दौड़ने की अफवाह फैलने से श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ मचने से यह हादसा हुआ। गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं अन्य घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौसम विभाग ने आज कैमूर, गया, जमुई और नवादा समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना है।
2: दिनांक 17 अगस्त को राज्य के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के भभुआ, गया, जमुई एवं नवादा जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: पूर्व मध्य रेल ने यात्रियों की सुविधा के लिए आज से पाटलिपुत्र स्टेशन और पूर्णिया कोर्ट के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन का परिचालन सप्ताह में 5 दिन होगा। बिहार साइबर अपराध और सुरक्षा इकाई तथा पटना साइबर पुलिस ने लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 12 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। इनमें प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 9 सदस्य शामिल हैं। वहीं पटना साइबर पुलिस ने पटना

0: और बक्सर से साइबर ठगी के 25 करोड़ रुपए बैंक खातों में रखने वाले तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकिनगर वन क्षेत्र में बाघ के हमले में एक किसान की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने लगभग 5 घंटे तक बगहा वाल्मीकिनगर मार्ग जाम रखा। बांका के बेलहर में आयकर अधिकारी बनकर 40,50,000 रुपए लूटने के मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सीतामढ़ी के विशनपुर शाखा डाकघर में 3,82,000 रुपए के गबन के मामले में तत्कालीन शाखा डाकपाल रमन कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। अररिया नगर थाना क्षेत्र के 0 माइल के पास से पुलिस ने एक तस्कर को 604 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। रोहतास जिले के विक्रमगंज में पिछले दिनों एक आभूषण दुकान से हुई लूट के मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश से 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। भागलपुर के नाथनगर में एक पिकअप वैन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार पिता और उसके 2.5 साल के बेटे की मौत हो गई। बेगूसराय जिले के मेहरा शाहपुर पंचायत के बसौना गंडक घाट पर नहाने के दौरान 3 बच्चे डूब गए। लापता बच्चों की तलाश जारी है। इधर मधुबनी जिले के जयनगर में कमला नदी में डूबने से एक कांवरिया की मौत हो गई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, मुख्य चुनाव आयुक्त बोले, बिहार से शुरू मतदाता सूची का शुद्धिकरण देश में सफल। दैनिक जागरण लिखता है, अब यूजीसी नेट में गड़बड़ी, अंग्रेजी, कॉमर्स और समाज शास्त्र के पेपर दोबारा होंगे। दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, 5 जिलों में एयरपोर्ट, वनों में होंगे एडवेंचर स्पोर्ट्स। प्रभात खबर की सुर्खी है, स्कूलों में 7,000 से अधिक लाइब्रेरियन की जल्द होगी बहाली, बनेगी ट्रांसफर नीति। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, बिहार में खुलेगा पहला गुरुकुलम, वेद विज्ञान और एआई की होगी पढ़ाई, शिक्षा मंत्री। दैनिक आज समेत सभी समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी खबरों को सचित्र प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार युवाओं को डिजिटल निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने के लिए आज पटना से निर्वाचन साक्षरता क्लब 2.0 की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए आज विद्यार्थी सहयोग पोर्टल का करेंगे लोकार्पण। सावन की तीसरी सोमवारी पर लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ मचने से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत, 10 से अधिक घायल। और मौसम विभाग ने आज कैमूर, गया, जमुई और नवादा जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: गन्ना किसानों के लिए सुनहरा अवसर।
4: गन्ना उद्योग विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के बीज विकास योजना के अंतर्गत आधार बीज के उत्पादन पर 70,000 प्रति हेक्टेयर, प्रमाणित बीज उत्पादन पर 70 रुपए प्रति क्विंटल, प्रमाणित एवं सत्यापित बीज के उपयोग पर 260 रुपए से 310 रुपए प्रति क्विंटल तथा सिंगल बर्ड प्लांटलेट पर 15,000 प्रति एकड़ तक आकर्षक अनुदान का लाभ उठाइए।
3: योजना का लाभ लेने के लिए ccs.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। उन्नत बीज अपनाइए, अधिक उपज पाइए।
4: गन्ना उद्योग विभाग एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: खान मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, खनिज राज्य सरकार के अधिकारी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि।

निवेशक शामिल होंगे। इस दौरान कई तकनीकी सत्रों में निवेशकों को बिहार के महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों, नीलामी प्रक्रिया, बोली प्रणाली और निवेश की संभावनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही समयबद्ध स्वीकृति, सिंगल विंडो सुविधा और भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होगी। नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है।

एक बार फिर हम हाजिर हैं अंजुमन लेकर। हुब्बुल वतनी अपने मुल्क से सच्ची मोहब्बत और इसकी फलाह बहबूद के लिए मिट जाने का नाम है। वतन से मोहब्बत का इजहार मुल्क की खूबसूरती, इतिहाद, कुर्बानी और गैरत मिली के पैगामात से लबरेज अल्फाज को शायरों ने बड़ी खूबसूरती से शायरी में उतारा है। तहरीक आज़ादी और इसके बाद के दौर में उर्दू शोरा ने कौम में जोश पैदा करने के लिए वतन परस्ती को अपना बुनियादी मकसद बनाया। इसकी मिसाल हमारे मुल्क का कौमी हिंदी तराना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हुब्बुल वतनी की अजीम तरीन और मकबूल तरीन नज्म है, जिसमें अलामा इकबाल ने न सिर्फ खुद अपनी बल्कि मुल्क के तमाम अवाम के दिलों का हाल बयान किया है।

0: रुपए में जो शामिल है,
1: अच्छा है
0: वो हिंदुस्तान रखता हूँ।
1: वाह
0: जी, मतलब कि आंखों में जब से यार का पैकर ठहर गया, आंखों में जब से यार का पैकर ठहर गया, सोजे दरू में दिल का समुंदर ठहर गया।
2: वाह वाह वाह, बहुत खूब
0: जी, बहुत शुक्रिया। सोजे दरू में दिल का समुंदर ठहर गया, आंसू को कैद करके ही रखना पड़ा मुझे हुजूर। आंसू को कैद करके ही
1: रखना पड़ा
0: मुझे, अपनों का जब से पीठ में खंजर
1: ठहर गया। वाह,
0: अपनों का जब से पीठ में खंजर ठहर गया। अतुले गमे हयात से रिश्ता हुआ कवि, जब से निगाहे यार में अहकर ठहर गया।
1: अच्छा है,
0: जब से निगाहे यार में अहकर ठहर गया। और ये तलमीही शेर के, जूही सफर शुरू हुआ ला मकान का हुक्मे खुदा से वक्त का महवर ठहर गया। तहकीक कारवां के लुटने की जब हुई रहजन अमीर शहर का हमसर ठहर गया। और ये शेर के, पहले किसी भी हाल में रोया न जो कभी, अब क्या हुआ कि रोना मुकद्दर ठहर गया। और ये मक्ता खास तवज्जो
1: कि
0: साबिर किसी पे तंज जो करता है बेसबब, समझो वो अपने रंज का खूगर ठहर गया।
1: अच्छा है
0: जी, बहुत शुक्रिया। समझो वो अपने रंज का खूगर ठहर गया।
1: वाह,
0: बहुत शुक्रिया।
2: अभी अपने खूबसूरत कलाम के साथ आपके रूबरू थे मोहम्मद साबिर, और किसी ने क्या खूब कहा है, आप लोगों की इजाजत हो तो एक शेर। जिंदगी का एक उसूल रखना, किसी को आस दिलाकर कभी उसकी उम्मीद न तोड़ना, किसी को आस दिलाकर कभी उसकी उम्मीद न तोड़ना, क्योंकि टूटे हुए दिल और रोती हुई आंखों की आह बहुत दूर तक पीछा करती है शगुफ्ता। इसके साथ ही सामीन हजरात, आप सभी को समातों के हवाले कर रही हूँ एक और हमारे अजीम शायर हसन रिजवी साहब को। आइए उनकी खूबसूरत कलाम समात करते हैं आपकी समातों के हवाले। हसन रिजवी साहब,
1: शुक्रिया आपका। मतलब पेश खिदमत
2: जी, जी, इरशाद इरशाद।
1: कि ये तेरी चश्मे इनायत मुझे ले डूबेगी, ये तेरी चश्मे इनायत मुझे ले डूबेगी, जज्बे इश्क की शिद्दत मुझे ले डूबेगी, ये तेरी चश्मे इनायत मुझे ले डूबेगी, जज्बे इश्क की शिद्दत मुझे ले डूबेगी। और अर्ज़ किया है कि मैं के सदियों से हूँ तारीख गुफाओं का मकीन, अब ये सूरज की तमाज़त मुझे ले डूबेगी, और हिजर की आग में जलने का हुनर सीखा है। अर्ज़ किया है कि हिजर की आग में
2: जलने का हुनर सीखा है।
1: किस्से वसल की लज्जत मुझे ले डूबेगी। शेर मुलाजा करें कि जख्म रिश्ते हैं तो जीने का पता चलता है, तेरे नश्तर की हलावत मुझे ले डूबेगी, और खार हो जाएंगे तफ्तीशे हकायक में हम, है तजस्सुस की जो आदत मुझे ले डूबेगी, और एक शेर और मुलाजा कर लें कि पारसाई के लिबादे का भरम रखना है, एक हल्की सी शरारत मुझे ले डूबेगी, और ये शेर बतौर ख़ास मुलाजा करें कि दिल तो पहले ही बसीरत ने डुबा रखा है, अब तो लगता है बसारत मुझे ले डूबेगी, और बहरे

0: एहसास में रहता है तला तुम बरपा, बहरे एहसास में रहता है तला तुम बरपा, डूबने की ये सहूलत मुझे ले डूबेगी। बहरे एहसास में रहता है तला तुम बरपा, डूबने की ये सहूलत मुझे ले डूबेगी, और वक्त रहते जो मईशत को संभाला न गया, वक्त रहते जो मईशत को संभाला न गया, चंद सिक्कों की ज़रूरत मुझे ले डूबेगी, चंद सिक्कों की ज़रूरत मुझे ले डूबेगी, और डूबने के सभी असबाब इकट्ठा करके, शेर मुलाहज़ा कीजिए कि डूबने के सभी असबाब इकट्ठा करके, लोग कहते हैं मोहब्बत मुझे ले डूबेगी, डूबने के सभी असबाब इकट्ठा करके, लोग कहते हैं मोहब्बत मुझे ले डूबेगी, रोज़ एक ताज़ा गज़ल लाऊं कहाँ से जाना, ये तेरी हुस्न समात मुझे ले डूबेगी, ये तेरी चश्मे इनायत मुझे ले डूबेगी, जज्बे इश्क की शिद्दत मुझे ले डूबेगी। एक और गज़ल पेश खिदमत है, मुलाहज़ा कर लें कि गज़ल है, साज है, वहशत है और मुसलसल है। गज़ल है, साज है, वहशत है और मुसलसल है, जो है तुम्हारी बदौलत है और मुसलसल है, जो है तुम्हारी बदौलत है और मुसलसल है। और हुस्न मतलब पेश है कि अजब तरह की ये आफत है और मुसलसल है, सभी को मेरी ज़रूरत है और मुसलसल है, अजब तरह की ये आफत है और मुसलसल है, सभी को मेरी ज़रूरत है और मुसलसल है, और तुम्हें बताओ कि क्या आँख बंद रखें हम, सुना है जद पे बसारत है और मुसलसल है, तुम्हें बताओ कि क्या आँख बंद रखें हम, सुना है जद पे बसारत है और मुसलसल है, और जुदा भी हो के कहाँ हम जुदा हुए अब तक, जुदा भी हो के कहाँ हम जुदा हुए अब तक, रिवायतों की मरव्वत है और मुसलसल है, रिवायतों की मरव्वत है और मुसलसल है, और कहाँ का फैसला रोज़े हिसाब तक अपने, कहाँ का फैसला रोज़े हिसाब तक अपने, मुकदमे की समात है और मुसलसल है, मुकदमे की समात है और मुसलसल है। और शेर देखें कि हज़ार तलख सही जायका लहू का मेरे, हज़ार तलख सही जायका लहू का मेरे, जुबां में अब भी लताफत है और मुसलसल है, हज़ार तलख सही जायका लहू का मेरे, जुबां में अब भी लताफत है और मुसलसल है। और शेरस किया है कि कभी तो ख्वाब में देखूं कि मैं वहां हूं जहां, कभी तो ख्वाब में देखूं कि मैं वहां हूं जहां, बड़ा सुकून है, राहत है और मुसलसल है, कभी तो ख्वाब में देखूं कि मैं वहां हूं जहां, बड़ा सुकून है, राहत है और मुसलसल है। और हसन इमाम ये लगता है देखकर तुमको, किसी से तुमको अदावत है और मुसलसल है, गज़ल है, साज है, वहशत है और मुसलसल है, जो है तुम्हारी बदौलत है और मुसलसल है।
1: बहुत अच्छे, बहुत खूब।
0: अर्ज किया है कि आँखें तो मांगती रहीं इज़्ने वगाए दिल,
1: बहुत खूब,
0: आँखें तो मांगती रहीं इज़्ने वगाए दिल, साबित कदम थे सब्र पे लेकिन बखाए दिल,
1: बहुत खूब।
0: और अर्ज किया है कि जब पड़ चुके हों प्यास से कांटे जुबान पर, जब पड़ चुके हों प्यास से कांटे जुबान पर, किस लब से तुम बताओ के फिर मुस्कुराए दिल, किस लब से तुम बताओ के फिर मुस्कुराए दिल, और उरियां पड़ा था राह में लाशा जुनून का, उरियां पड़ा था राह में लाशा जुनून का, गैरत ये कह रही थी उड़ा दो रिदाए दिल, उरियां पड़ा था राह में लाशा जुनून का, गैरत ये कह रही थी उड़ा दो रिलाए दिल, और ये

0: क्या के बढ़ के दुश्मन जा से मिलाए हाथ, ये क्या के बढ़ के दुश्मन जा से मिलाए हाथ, अपना है घर तो वक्त पे कुछ काम आए
1: काम आए
0: दिल।
1: दिल। वाह, बहुत अच्छी,
0: ये
1: बहुत
0: क्या के
1: खूब।
0: बढ़ के दुश्मन जा से मिलाए हाथ, अपना है घर तो वक्त पे कुछ काम आए दिल, और इतनी जगह कहाँ के मोहब्बत को रंग सकें, इतनी जगह कहाँ के
1: के
0: मोहब्बत
1: मोहब्बत को
0: को
1: रंग
0: रख
1: सके।
0: सकें। कुछ और चाहता है तंगनाए दिल, वसत कुछ और चाहता है तंगनाए
1: दिल।
0: दिल, और अश्के अज़ा के वास्ते फर्शे अज़ा न हो, अश्के अज़ा के वास्ते फर्शे अज़ा न हो, ऐसे में क्या सुनाए कोई दर्द हाय
1: दर्द दिल।
0: दिल।
1: वाह वाह, बहुत बहुत
0: आंखें
1: अच्छे।
0: तो मांगती रहीं इज़्ने वगाए दिल, साबित कदम थी सब्र पे लेकिन बकाए दिल।
1: दिल, वाह,
0: जब
1: बहुत
0: पड़
1: खूब।
0: चुके हो प्यास से कांटे जुबान पर, किस लब से तुम बताओ कि फिर मुस्कुराए
1: मुराए
0: दिल।
1: दिल, वाह वाह वाह,
0: आदर्श।
1: बहुत अच्छे, बहुत। ये थे सैयद हसन इमाम रिज़वी। चलते चलते आप लोगों की अगर इजाज़त हो तो एक शेर अर्ज़ करती हूँ। किसी ने क्या खूब कहा है कि मर गया है मुझ में सब कुछ, मर गया है मुझ में सब कुछ, कुछ भी अब बाकी ना रहा। जो तुम हो इतने नेक, जो तुम हो इतने नेक, तो ज़िंदा कर दो ईसा अलैहिस्सलाम की तरह मुझ में सब कुछ। इसके साथ ही सामी महफिल सुखन को ही इख्तिताम पज़ीर करते हैं, इस वादे के साथ कि अंजुमन में महफिल सुखन सजती रहेगी। अपनी दोस्त मेज़बान शगुफ्ता को दीजिए इजाज़त। आप दोनों शायर का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ
0: शुक्रिया,
1: तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: चलिए, बहुत शुक्रिया।
1: महफिल सुखन के बाद हम फिर आपके रूबरू हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जी हाँ सामीन हजरात, ये हर किसी के ज़बान पे सजा हुआ है। इस जैसी लाजवाल शायरी के ज़रिए राम प्रसाद बिस्मिल ने हुब्बुल वतनी की रूह फूंकी है। तो वहीं फैज़ अहमद फैज़ की सबसे मशहूर वतन प्रस्ताना नज़्म के चंद अशार समाअत कीजिए। कहते हैं, निसार में तेरी गलियों के ऐ वतन के जहाँ, निसार में तेरी गलियों के ऐ वतन के जहाँ, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। तो वहीं अल्ताफ़ हसन हाली ने क्या खूब कहा है, वो कहते हैं कि ऐ वतन ऐ मेरे बहिश्ते बरी, ऐ वतन ऐ मेरे बहिश्ते बरी, तुझसे है मेरी ज़िंदगी की बहार। जी हाँ, जब मुल्क बेहतरीन रहता है तो ज़िंदगी में बहारें आती हैं। इसके साथ ही सामीन एक और सी खूबसूरत सी गज़ल समाप्त करते हैं, उसके बाद फिर आपको कहेंगे अलविदा। समाप्त कीजिए ये खूबसूरत सी गज़ल।

साहिल उधानवी अपने वतन की चमन की हिफाजत पर क्या खूब दिलकश अंदाज में कहते हैं, अपने ही खून से सींचेंगे चमन को अपने, अपने ही खून से सींचेंगे चमन को अपने, कोई गैर यहाँ आके न गुलकारी करे। जी हाँ सामीन, हमारे मुल्क की खूबसूरती और इसके इतिहाद की हिफाजत हम सब की बनती है। शायरों ने बड़े खूबसूरत अंदाज में हमारे जज्बात को पेश किया है। दरअसल ये मुल्क हम सभी का है और इसकी खूबसूरती की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी इस तरह बन जाती है कि हम हर मुश्किल घड़ी में एक साथ खड़े होते हैं। इसके साथ ही साथ इस दुआ के साथ कि किसी ने क्या खूब कहा है कि ऐ रब मुल्क को मेरे शाद रखना, ऐ रब मुल्क को मेरे शाद रखना, मैं ना रहूं तो भी तो उसके साथ रहना, यानी कि हम ना रहें तब भी हमारा रब हमारे मुल्क की हिफाजत करता रहे। इस दुआ के साथ आज के अंजुमन को हम यहीं ख़ताम पज़ीर करेंगे और रखिए सबका खूब ख्याल, कल फिर सजेगी अंजुमन अपने कुछ नए गुलों के साथ हाजिर होगी। अपने दोस्तों मेज़बान शगुफ्ता को दीजिए इजाज़त, रखिए दुआओं में हम सभी को याद। खुदा हाफिज़।

अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम अंजुमन, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों बाद। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी पटना है। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:45 हुए हैं। वक्त हो गया है कार्यक्रम सबरस का, तो आइए इस कार्यक्रम

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी पटना है। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:45 हुए हैं। वक्त हो गया है कार्यक्रम सबरस का, तो आइए इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत, आप सभी को नमस्कार। इस कार्यक्रम में आज विशेष हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्में कव्वाली।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़, साथ ही न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप पर। आप सुन रहे हैं आज की हमारी प्रातकालीन सभा के कार्यक्रम। कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

इस समय सुबह के 9:50 हुए हैं। आकाशवाणी दरभंगा से अब समय हो चला है फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम की शुरुआत अमित कुमार के गाए इस प्यारे से गीत से। गीत रचना आनंद बख्शी की है, संगीत राहुल देव बर्मन का। फिल्म का नाम तेरी कसम।

चारों तरफ फैली ये हरियाली तो सच में गुनगुना रही है। प्रकृति भी सावन के इस महीने में झूम उठती है, उसकी वो मीठी खुशबू, बहुत गुनगुनाहट, हवा का वो सरसराहट, यही तो संगीत है। कहते संगीत के बिना तो जिंदगी है ही नहीं, हर चीज में एक संगीत छुपी होती है। ये संगीत है तो जीवन है दोस्तों। हमारी दिल की ये जो धड़कन है ना, ये भी एक संगीत है। ये जब तक धड़कती है हम जीते हैं। हमारे दिल की धड़कन जब बंद हो जाती है, यानी वो संगीत खत्म हो जाता है, उसके साथ ही जिंदगी भी खत्म हो जाती है। दिन भर आप अपने काम में तरोताजा बने रहें, हमारी तो बस यही कोशिश है। जी हाँ, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन एक साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा। प्यार भरे फिल्मी गीतों का ये सुहाना सफर जारी है दोस्तों। अब से लेकर सुबह 10:30 तक हम हैं आपके साथ फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम को लेकर। कार्यक्रम का यह पहला गीत आपको सुनवा रहे थे अमित कुमार का गाया हुआ, फिल्म थी तेरी कसम। गीत रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत राहुल देव बर्मन का। लीजिए इस कार्यक्रम का ये अगला गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है आशा।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: कि आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं, कि आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें।
4: इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार पुनः स्वागत है आप सभी सुनने वालों का। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा। प्यार भरे फिल्मी गीतों के इस सुहाने सफर में आप हैं हमारे साथ। अंतराल से पहले हम आपको सुनवा रहे थे सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर का गाया वो गीत, जिसे हमने लिया था फिल्म प्यासा सावन से। मैं तुलसी तेरे आंगन के, लीजिए श्रोताओं इस फिल्म में अब सुनिए लता मंगेशकर को।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार

पुनः स्वागत है आप सभी सुनने वालों का। आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आज की हमारी पहली सभा के कार्यक्रम। सुबह के 10:30 हो चुके हैं। श्रोताओं, आकाशवाणी दरभंगा से अब समय हो चला है महाकवि की रचनाओं का। सुनिए विद्यापति गीत।

शिव हो उतरब पार कवन विधि। महाकवि की ये रचनाएं आप सुन रहे हैं।

महाकवि की ये रचनाएं आप सुन रहे थे विद्यापति गीत। आज विद्यापति गीतों के कलाकार थे गौतम मिश्र, विदुषी शारदा सिन्हा, सूर्य नारायण पौद्दार, विनय कुमार झा और सूर्य नारायण यादव। विद्यापति गीतों के इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत, कलाकार हैं पंडित जसराज। आइए इनसे सुनते हैं कबीर भजन, राग शुद्ध वरारी में।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे पंडित जसराज से कबीर भजन राग शुद्ध वरारी में। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
1: और अजीत का भी नमस्कार। धन्यवाद आप सबका उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। तो आइए करते हैं हमेशा की तरह शुरुआत आज के सुविचार से, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने।
2: संस्कृति प्रकृति के लाता सारे रंग, ऐसा कार्यक्रम है हमारा उमंग।
1: वाह, संस्कृति प्रकृति के लाता सारे रंग, ऐसा कार्यक्रम है हमारा उमंग।
2: सबके लिए शिक्षा की प्रेरणा जगा देता है, ऐसा प्यारा है कार्यक्रम उमंग।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी खूबसूरत कविता के लिए जो आपने अपने प्यारे कार्यक्रम उमंग को समर्पित किया। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है सहसपुर लोरमी से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलीचंद साहू, सतीबाई साहू और सत्यम साहू जी ने। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम ला सुनाइन दो कंपियर साथी हमरा बहुत सुंदर प्रस्तुति देईस, अहो ज्ञान वर्धक बात बताई ना, एकर बार बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: हमें आशा है कि हमने इस भाषा को ठीक से पढ़ा है।
2: जी, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
1: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
1: तो हमारा पूछा गया पहला प्रश्न था, सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है?
2: इसका उत्तर है, पंचतंत्र नीति साहित्य का कथा ग्रंथ है। इसके रचयिता 2500 से 3000 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध आचार्य विष्णु शर्मा माने जाते हैं।
1: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था?
2: इसका उत्तर है साथियों, बिरसा मुंडा द्वारा प्रारंभ किए गए विद्रोह को उल गुलान के नाम से जाना जाता है।
1: हमारा अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया ने झंडों के कुल कितने डिजाइन प्रस्तुत किए?
2: राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया ने झंडों के कुल 30 डिजाइन प्रस्तुत किए थे।
1: और अब अगला प्रश्न हमारा प्रश्न था, वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए।
2: वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857।
1: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया?
2: राष्ट्रगान जन गण मन महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में लिखा था, लेकिन इसे देश का राष्ट्रगान 1950 में घोषित किया गया था।
1: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे ऊंची मीनार किसे माना जाता था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे ऊंची मीनार किसे माना जाता था?
1: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
2: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और इन्हीं पुस्तकों को आप ऑडियो प्रारूप में भी NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर सुन सकते हैं। तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नहीं होना बीमार।
2: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बड़े हास्य प्रहसन के साथ रोचक ढंग से बताया गया है कि एक बच्चा जब बीमारी का बहाना करते हुए स्कूल नहीं जाता तो उसे अपने घर पर कैसी कैसी अजीब और मजेदार परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है।
3: बेटा सुमेश, चलो झटपट तैयार हो जाओ, चाचा जी को देखने जाना है, जल्दी तैयार हो जाओ।
4: जी दादाजी।
5: साथियों, हुआ ये कि सोमेश के चाचा सुधाकर अचानक बीमार हो गए, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
6: सोमेश दादा दादी के साथ अस्पताल पहुंचा। ये उसका अस्पताल जाने का पहला अनुभव था। उसने देखा

0: क्या सफाई है। सफेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चकाचक। कोई शोर नहीं, अद्भुत शांति।
1: एक पलंग पर सुधाकर चाचा लेटे हुए थे। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो गए।
2: कैसे हो बेटा, अब कैसी तबीयत है?
3: जी माँ जी, अब बहुत बेहतर हूँ।
2: अरे ये लो, डॉक्टर साहब भी आ गए। डॉक्टर साहब, सुधाकर के लिए थोड़ा सा साबुदाने का हलवा लाई थी, खिला दूँ? बड़ा स्वादिष्ट बनाया है। हाँ
4: जी जी, जरूर खिलाइए, शौक से खिलाइए। लेकिन हाँ, ना बाहर का खाना और ना तला भुना हुआ खाना।
0: वाह, क्या ठाट है बीमारों के भी। आराम से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबुदाने का हलवा खाते रहो, कोई काम भी नहीं करना पड़ता। काश सुधाकर चाचा की जगह मैं होता। ओह, मैं कब बीमार पड़ूंगा।
5: कुछ दिन बीत गए। एक दिन सोमेश को स्कूल जाने का मन नहीं हुआ। उसने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो जरूर सजा मिलती। उसने सोचा मम्मी पापा भी किसी काम से दूसरे शहर गए हैं, बीमार पड़ने के लिए आज का दिन सबसे बढ़िया रहेगा, सो चलो बीमार पड़ जाते हैं।
6: सुमेश, सुमेश बेटा उठो, स्कूल का समय हो गया है।
0: दादी, लगता है मुझे बुखार है।
6: क्या कहा, बुखार है? अरे तेरे मम्मी पापा को भी कल ही जाना था, लेकिन तुम तो कल तक बिल्कुल ठीक ठाक थे। जरा माथा तो छूने दो। अरे तुम्हारा माथा तो बिल्कुल ठंडा है।
0: दादी, बुखार बस अभी अभी आया होगा, इसलिए माथा गर्म नहीं हुआ होगा।
6: अरे कोई बात नहीं, मैं जरा थर्मामीटर लेकर आती हूँ।
0: अरे दादी, इतनी जल्दी पता थोड़ी चलेगा।
6: लो ये रहा थर्मामीटर, चलो अब इसे अपने मुंह के अंदर रखो। हाँ
0: दादी, मुंह में रखने से पता थोड़ी चलेगा, अंदर जल रहा है।
6: अरे बेटा, लेकिन स्कूल का क्या होगा?
0: मैंने कहा ना, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, स्कूल नहीं जाना, अब तो पेट में भी दर्द हो रहा है।
6: अरे ये तो खांस भी रहा है। अब तो स्कूल बस भी निकल गई, चलो तुम आराम ही कर लो।
0: जी दादी।
1: सर्दियों के दिन थे, सोमेश को और क्या चाहिए था, रजाई में दुबक गया। थोड़ी देर में फिर से गहरी नींद आ गई। खटर पटर की आवाज सुनकर उसकी आंख खुली।
7: सोमेश बेटा, बेटा सोमेश, अब कैसी तबीयत है?
0: जी दादाजी, अच्छा नहीं लग रहा है।
7: अरे अरे अरे अरे, फिक्र न करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी तबीयत। हो तुम्हें तो खांसी भी है। अजी सुनती हो?
6: जी।
7: सुमेश को खांसी भी आ रही है, जरा वो वैद्य जी वाला काढ़ा भी लेती आना, गाढ़ा वाला काढ़ा।
6: जी जी, अभी लाई। लो बेटा, काढ़े के साथ साथ पुड़िया वाली दवा भी ले लो, धीरे धीरे आराम आ जाएगा। चलो ये लो दवा, लो चलो चलो गटक जाओ, शाबाश।
0: ओ ये तो बहुत कड़वी है ये।
6: अच्छा इसे खाने में क्या देना है?
7: देखो आज शाम तक उपवास ही कर।

0: रे तू अच्छा, सारे विकार निकल जाएंगे। बेटा अब तुम थोड़ा आराम कर लो, लेट जाओ। शाबाश।
1: जी दादाजी।
2: दोनों चले गए। सोमेश को फिर से नींद आ गई। तेज भूख भला निंदिया रानी को कैसे टिकने देती। थोड़ी देर बाद आंख खुल गई। लेटे रहना मजबूरी थी, यूं ही पड़ा रहा। पड़े पड़े अब पीठ भी दुखने लगी थी, लेकिन कोई उपाय न था। लगभग एक घंटे के बाद फिर से दादाजी आए।
0: कैसी तबीयत है बेटा?
1: जी जी अब बिल्कुल ठीक हूँ।
0: बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बेटा तुम्हें दवाई पूरी लेनी पड़ेगी। दवा बीच में नहीं छोड़ते, रात होने तक दो बार लेनी है। लो लो दवा पी लो, चलो उठो उठो। शाबाश। पकड़ता हूँ। उठो। चलो चलो। शाबाश बेटा, अब तुम आराम कर लो, ले जाओ।
2: बड़ी मुसीबत थी ये नाटक, अब भारी पड़ता जा रहा था। भूख के कारण नींद भी नहीं आ रही थी, और आंख जरा भी लगती तो खाने की चीजें ही दिखाई पड़ती।
1: बर्तनों की आवाज आ रही है, शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अरहर की दाल में बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी। आहा, फिर उसमें उन्होंने नींबू भी तो निचोड़ा होगा। हरी मिर्च भी तली गई है, उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं। जरा देखो, उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो साबुदाने का हलवा ही तो मांगता, कोई ताजमहल थोड़ी ही मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो सोमेश बाबू, सारे विकार निकल जाएंगे। थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दे कोई, इससे अच्छा तो स्कूल ही चला जाता। सजा ही तो मिलती, पर ऐसी सजा, उफ।
3: पीछे रेडियो पर गाना चल रहा था, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अब तो सोमेश बाबू हाय हाय करने लगे। जब रहा नहीं गया तो रजाई फेंक कर खड़े हो गए और दरवाजे के पास जाकर बाहर झांका। खाना नहीं मिला तो खुशबू ही सूंघने लगे। कि तभी,
0: अरे सुमेश बेटा जग गए, कुछ आराम आया बेटा है? बोलो ठीक है ना? अरे अब तो तुम्हें खांसी भी बिल्कुल नहीं है।
1: जी दादाजी।
4: चलो चलो बिस्तर पर लेट जाओ, वरना ठंड लग जाएगी। हाँ मैं बस अभी आई। तुम्हें एक पुड़िया और देनी है। हाँ, और शाम तक
0: बिल्कुल
4: ठीक हो जाओगे बेटा।
1: जी।
2: सोमेश जलन, गुस्से और कुढ़न में पांव पटकता वापस बिस्तर पर आ गया। उसे पूरे दिन भूखे पेट ही रहना पड़ा था।
3: सारे विकार निकल गए। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए उसने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया।
5: साथियों, इस कार्यक्रम में आपने एक वाक्य सुना, सारे विकार निकल जाएंगे। विकार का अर्थ है कोई शारीरिक या मानसिक समस्या या दोष। इस अवस्था में शरीर का कोई अंग या तंत्र सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाता है। अभी आपने सुना ये मनोरंजक कार्यक्रम नहीं होना बीमार। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सिद्धो और कान्हू।
0: ऐसे नहीं मानेगा।
6: साहब मत करो साहब।
0: चल सिपाही।
6: यस सर।
0: साहब इसको हंटर मारो।

0: अभी आपने सुना ये मनोरंजक कार्यक्रम नहीं होना बीमार। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सिद्धो और कान्हू।
1: ऐसे नहीं मानेगा।
2: मत करो साहब।
1: चल सिपाही।
3: यस सर।
2: साहब
1: इसको हंटर मारो।
2: साहब
3: जी सर।
0: अबुआ राज अबुआ दिसुम, ये था नारा संथाल जनजाति के हुल आंदोलन यानी स्वतंत्रता संग्राम का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आदिवासी नायक सिद्धो और कान्हू।
4: '1857 के आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना जाता है, लेकिन इससे पहले भी देश भर में स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर विदेशी शासन के विरुद्ध अनेक छोटे बड़े आंदोलन हुए हैं। यदि कहें कि इन आंदोलनों ने राष्ट्रीय स्तर के आंदोलनों को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
5: आज हम बात करेंगे आजादी की लड़ाई को बल देने वाले एक ऐसे आंदोलन की जिसका नेतृत्व सिद्धो और कान्हू नामक दो संथाल आदिवासी युवकों ने किया। ये आंदोलन हुल आंदोलन या संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है।
4: जनसंख्या की दृष्टि से संथाल आज भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। सिद्धो मुर्मू और कान्हू मुर्मू का जन्म भोगना डीह नामक गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था, जो कि वर्तमान में झारखंड के साहेबगंज जिले में है। सिद्धो मुर्मू का जन्म 1815 ईस्वी में हुआ था और कान्हू मुर्मू का जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था।
5: इनके पिता का नाम चुन्नी मांझी था।
4: जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया था। इस नीति के तहत वो बहुत से भारतीय जमींदारों, सामंतों, महाजनों और साहूकारों के सहयोग से भोले भाले आदिवासियों का शोषण करते थे।

0: 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सावन माह के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ एकत्र थी। भगदड़ अशोक धाम स्टेशन से मंदिर तक के रास्ते में बिजली के खंभे में करंट आने की अफवाह से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के निकट परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। पूर्वी इंडोनेशिया में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है। बचाव दलों ने कल 6 और शव बरामद किए। 135 लोगों के घायल होने की सूचना है। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका ने 5 विकेट पर 119 रन बना लिए हैं। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:05 हो रहे हैं। अब आप जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे केंद्र से होने वाले आज के आगामी कार्यक्रमों के संदर्भ में।

श्रोताओं 1:10 पर आप सुनेंगे हमारे केंद्र से देशभक्ति गीत। फिल्मी गीतों का आनंद लेंगे दोपहर 1:15 पर। रोजगार सूचना हम आपको सुनवाएंगे दोपहर 2:10 पर।

फिल्मी गीतों का आनंद लेंगे। दोपहर काल में 2:30 पर लोकगीत हम आपको सुनाएंगे दिन के 3:00। युवाणी कार्यक्रम का समय होगा शाम 5:00। युवाणी में आज श्रोता सुनेंगे तरुण कुसुम। फिल्मी गीतों का आनंद ले सकेंगे संध्या काल में 5:40 पर। साथ ही विद्यापति गीत हम आपको सुनवाएंगे शाम 6:10 पर।

रात्रिकाल 10 बजे आप सुनेंगे हमारे केंद्र से कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। सभा की समाप्ति 11:10 पर की जाएगी। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यही समाप्त होता है।

संध्या 6:30 पर आप सुनेंगे हमारे केंद्र से कार्यक्रम गांव घर। गांव घर के अंतर्गत श्रोता सुनेंगे अनुभव के चश्मा सा, साथ ही सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद, खेती गृहस्थी कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:00।

संध्या काल में पुनः फिल्मी गीतों का आनंद लेंगे 7:50 पर। मैथिली साहित्य के कार्यक्रम सिंगर हार हम आपको सुनवाएंगे 8:15 पर।

श्रोताओं, अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से होने वाले आज के आगामी कार्यक्रमों के बारे में। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत। गायक कलाकार हैं विशाल ददलानी और शेखर रबजियानी।

0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।
1: और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन भर तुहार आबै छल कहियो थमहू अगला साल, हमर गर्दन काट लेला आ अपने बनल हमालू।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनी आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माटिक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: श्रोताओं, अब हम आपको लिए चलते हैं फिल्मी गीतों के सफर पर। सफर का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किया है।

श्रोताओं में अब सुनिए फिल्म आराधना का या हिंदी युगल गीत, जिसमें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज, एस डी बर्मन का संगीत और आनंद बख्शी के बोल हैं।

श्रोताओं, सफ़र का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म अनपढ़ से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर। गीत रचना रज़ा मेहदी अली ख़ान की है। संगीत दिया है मदन मोहन ने।

फिल्मी गीतों के सफर में यह गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म कटी पतंग से। गायक कलाकार किशोर कुमार, गीत रचना आनंद बख्शी ने की थी, संगीत दिया था राहुल देव बर्मन ने। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं गुलशन बावराल ने, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म का नाम हाथ की सफाई।

मन्ना डे की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म उपकार का यह गीत। गीतकार इंदिवर, संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी ने किया था। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म जॉनी मेरा नाम से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार। गीत रचना इंदिवर ने किया है और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को सुन रहे थे अवे फिल्म सच्चा झूठा में। गीत रचना इंदिवर की थी, संगीत दिया था कल्याण जैना जी ने। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम आन मिलो सजना।
1: अच्छा तो हम चलते हैं।

श्रोता अभी आप सुन रहे थे फिल्म जॉनी में मेरा नाम जोकर का यह गीत। वह कलाकार थे मुकेश। इसी के साथ फिल्मी गीतों का सफर अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब आप कुछ इशारों में सुनेंगे हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार और इलाकाई खबरें। कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में राज्य भर के लगभग 500 बूथ लेवल अधिकारियों के साथ संवाद किया। श्री कुमार ने निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी, सुगम और नागरिक केंद्रित बनाने से जुड़े विषयों पर चर्चा की। इससे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने विश्वविद्यालय परिसर का भ्रमण किया। उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी और विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों के साथ संवाद किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने नालंदा के खंडहरों का भी दौरा कर पुरातात्विक अवशेषों का अवलोकन किया। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त आज पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में निर्वाचन साक्षरता क्लब ELC 2.0 की शुरूआत करेंगे। ये पहल निर्वाचन साक्षरता, डिजिटल सहभागिता और लोकतंत्र में नागरिकों की सार्थक भागीदारी को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने आज विधानसभा की सदस्यता की शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में उन्हें सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र कुमार यादव, जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती और अन्य लोग मौजूद थे। आज सावन की तीसरी सोमवारी के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न शिवालयों और प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतार लगी है। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ, सोनपुर के हरिहरनाथ, मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ, रोहतास के गुप्ता धाम, पटना के बैकटपुर धाम समेत प्रमुख शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। आज नाग पंचमी भी है, इसे लेकर आज की पूजा का विशेष

0: शेष महत्व माना जा रहा है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। तीसरी सोमवारी के अवसर पर लखीसराय के अशोक धाम मंदिर पहुंचने के क्रम में भगदड़ की घटना में आज 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह घटना अशोक धाम स्टेशन से मंदिर जाने वाले रास्ते पर हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बिजली के गिरे खंभे में करंट दौड़ने की अफवाह फैलने से श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ मची और यह हादसा हुआ। गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं अन्य घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में मृतकों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन इस हादसे में प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ की घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के निकटतम परिजन को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान की राशि देने और घायलों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा और आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा समेत अन्य गणमान्य लोगों ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। इधर धार्मिक न्यास बोर्ड ने कहा है कि इस पूरी घटना की जांच की जाएगी। बोर्ड के अध्यक्ष रणवीर नंदन ने बताया कि मामले की जांच के लिए न्यास की एक टीम लखीसराय जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विद्यार्थियों की शैक्षणिक और छात्रावास संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए आज विद्यार्थी सहयोग पोर्टल का लोकार्पण किया। पटना के जेडी विमेन्स कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पोर्टल का शुभारंभ करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार छात्रों की समस्याओं को लेकर संवेदनशील है और हर स्तर पर उन्हें सहायता देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। विद्यार्थी पोर्टल के आधिकारिक एड्रेस sahyog.bihar.gov.in पर अपनी समस्याएं दर्ज कराने के साथ सुझाव भी दे सकेंगे। राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में आज से पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था शुरू हो गई है। इस व्यवस्था के तहत रजिस्ट्री की प्रक्रिया में कागजी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी और डिजिटल दस्तावेजों के आधार पर निबंधन पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: आदाब, यह आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने आज नालंदा यूनिवर्सिटी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में मुनक्दा एक प्रोग्राम में रियासत के तकरीबन 500 बूथ लेवल अफसरान के साथ बातचीत की। इस गुफ्तगु के दौरान मिस्टर कुमार ने इंतखाबी अमल को मजीद मुअसर, शफाफ, आसान और शहरी मरकज बनाने से मुतालिक मौजूदात पर तबादला ख्याल किया। इससे कबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यूनिवर्सिटी कैंपस का दौरा किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी और यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबरान के साथ भी गुफ्तगू की। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नालंदा के खंडरात का भी दौरा किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज पटना के ज्ञान भवन में मुनक्दा एक प्रोग्राम के इफ्तिताह करेंगे। इस पहल को इंतखाबी इलेक्शन लिटरेसी क्लब बेदारी, डिजिटल शमूलियत और जमहूरियत में शहरियों की मानाखेज शिरकत को नई रफ्तार देने की समत में एक अहम कदम समझा जा रहा है। पटना के बांकीपुर असम्बली हलका से नौमुंतखब रुकन असम्बली जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने आज कानून साज असम्बली की रुकनियत का हलफ लिया। असम्बली के स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार ने अपने दफ्तर में उन्हें ऐवान की रुकनियत का हलफ दिलाया। इस मौके पर असम्बली के नायब स्पीकर नरेंद्र कुमार यादव, जन स्वराज के रियासती सदर मनोज भारती और दीगर लोग मौजूद थे। आज सावन के तीसरी सोमवारी के

मौके पर रियासत के मुख्तलिफ शिवालयों और अहम मंदिरों में सुबह से ही अकीदतमंदों की कतार लगी हुई है। सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ, सोनपुर के हरिहर नाथ, मुजफ्फरपुर के गरीब नाथ, रोहतास के गुप्ता धाम, पटना के बैकटपुर धाम समेत अहम शिव मंदिरों में जल अभिषेक के लिए अकीदतमंदों का हुजूम उमड़ रहा है। आज नागपंचमी भी है, इसे लेकर आज की पूजा की खास अहमियत भी है। सावन के तीसरे सोमवारी पर लखीसराय के अशोक धाम मंदिर पहुंचने के दौरान भगदड़ के वाकये में 7 खवातीन अकीदतमंदों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज़्यादा अकीदतमंद जख्मी हो गए हैं। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि यह वाकया अशोक धाम स्टेशन से मंदिर जाने वाले रास्ते पर हुआ। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक बिजली के गिरे खंभे में करंट दौड़ने की अफवाह फैलने से अकीदतमंदों के दरमियान भगदड़ मचने से ये हादसा हुआ। शदीद तौर पर जख्मी लोगों को बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है, वहीं दीगर जख्मियों का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में मरने वाले के तई गहरे रंजोगम का इजहार किया है। जनाब मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में जख्मियों के जल्द सेहतयाब होने की दुआ की है। उन्होंने कहा कि मुकामी इंतजामिया इस हादसे में मुतासिर लोगों की मदद कर रहा है। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने भी अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ के वाक़े पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने महलुकिन के वर्षा को 4-4 लाख रुपये इमदाद देने और जख्मियों को मुकम्मल तिब्बी सहूलतें दस्तयाब कराने की हिदायत दी है। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह, साबिक वजीर आला नीतीश कुमार, वजीर ज़राअत विजय कुमार सिन्हा और वजीर बराए आफात मैनेजमेंट रत्नेश सदा समेत दीगर मौजूद लोगों ने इस हादसे पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। इधर धार्मिक न्यास बोर्ड ने कहा है कि इस पूरे वाकया की जांच की जाएगी। बोर्ड के सदर रणवीर नंदन ने बताया कि मामले की जाँच के लिए न्यास की एक टीम लखीसराय जाएगी। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने तुलबा की तालीमी और हॉस्टल से मुतालिक मसाइल के हल के लिए आज विद्यार्थी सहयोग पोर्टल का इजरा किया। पटना के जीडी विमेंस कॉलेज में मुनक्दा प्रोग्राम के दौरान पोर्टल का इफ्तिताह करते हुए जनाब चौधरी ने कहा कि रियासती हुकूमत तलबा के मसाइल के मद्देनज़र फिक्रमंद है और हर सतह पर उन्हें तावुन देने के लिए कोशिश की जा रही है। तलबा पोर्टल के सरकारी एड्रेस sahyog.bihar.gov.in पर अपने मसाइल दर्ज करने के साथ मशवरे भी दे सकेंगे। पोर्टल से मुतालिक सभी मालूमात के लिए हेल्पलाइन नंबर 1100 पर राबता कर सकते हैं। रियासत के सभी रजिस्ट्री ऑफिसों में आज से पेपरलेस रजिस्ट्री का नज़्म शुरू हो गया है। इस इंतज़ाम के तहत रजिस्ट्री के अमल में कागजी दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं होगी और डिजिटल दस्तावेजात की बुनियाद पर रजिस्ट्री मुकम्मल की जाएगी। इस नए निज़ाम में रजिस्ट्री के अमल पूरे होते ही डिजिटल डीड व्हाट्सएप के तवसुल से मोबाइल पर भेज दी जाएगी। डिजिटल डीड मिलने की इत्तला मुतालका शख्स को SMS के ज़रिए भी भेजा जाएगा। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:10 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे हमारे केंद्र से रोजगार सूचना।

एसबीआई में जूनियर एसोसिएट के 9124 पदों पर युवा के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन डिग्री या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। आयु सीमा, उम्मीदवार की आयु सीमा 20 वर्ष से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसी आवेदन के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर करियर सेक्शन में जाकर जूनियर एसोसिएट भर्ती के अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन करें, आवेदन फॉर्म भरें, फोटो एवं हस्ताक्षर सहित

जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और निर्धारित शुल्क जमा कर फॉर्म सबमिट करें। आवेदन की रसीद प्रिंट सुरक्षित रखें। पटना हाईकोर्ट एक्सकेडर असिस्टेंट ने 68 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। इसके साथ कम से कम 6 माह का कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा सर्टिफिकेट तथा कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना आवश्यक है। आयु सीमा 1 जनवरी 2026 के अनुसार न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम आयु सामान्य पुरुष के लिए 37 वर्ष, सामान्य महिला एवं ओबीसी महिलाओं के लिए 40 वर्ष तथा एससी एसटी के लिए 42 वर्ष निर्धारित है। आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस ईबीसी 1000 रुपये, एससी एसटी तथा दिव्यांग के लिए 500 रुपये है। उम्मीदवार पटना हाईकोर्ट के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसकी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। चयन प्रक्रिया, उम्मीदवारों का चयन प्रारंभिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, कंप्यूटर दक्षता परीक्षा, इंटरव्यू, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। झारखंड इंटरमीडिएट लेवल भर्ती के 326 पदों पर आवेदन शुरू किए गए हैं। शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। कुछ पदों के लिए संबंधित विषय अतिरिक्त योग्यता भी निर्धारित की गई है। इसके लिए आयु सीमा 18 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तथा आरक्षित वर्गों के लिए नियमानुसार 37 से 40 वर्ष तक निर्धारित है। आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस 100 रुपये, झारखंड के एससी एसटी वर्ग 50 रुपये। इसकी विस्तृत जानकारी आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। चयन प्रक्रिया, अभ्यर्थियों का चयन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, लिखित परीक्षा तथा दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। इसी के साथ रोजगार सूचना समाप्त हुई।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। अब समय हो चला है दोपहर समाचार का।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के 30वें दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 184 रन बनाए। और BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। भारत के MR अर्जुन, हरिहरन अम सकरून पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार पर जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 2 दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद कहा कि यह समिति विभिन्न मुद्दों और अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्य दिशा तय करेगी।
2: On the basis of a well-researched
3: पहले से उपलब्ध शोध दस्तावेजों से समिति को चर्चा के लिए जरूरी ठोस जानकारी प्राप्त होंगे। समिति के विचारों और सुझावों से स्पष्ट होगा कि यह देश को विकसित भारत की दिशा में किस तरह आगे बढ़ाना चाहती है और इसमें बैंकों की क्या भूमिका होगी।
2: And in that, the role of banks.
1: वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय बैंक इस समय मजबूत स्थिति में हैं। डूबे कर्ज की स्थिति निम्नतम स्तर पर होने के कारण भविष्य के सुधारों के लिए मजबूत आधार उपलब्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उच्च स्तरीय समिति से सिफारिशें मिलने के बाद सरकार और बैंकिंग क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज गति देने में सक्षम

0: सक्षम होंगे। भारत ने अपने ब्रिक्स सहयोग की अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की है। नई दिल्ली में आज जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य तथा संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा कि ब्रिक्स संगठन पिछले दो दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है।
1: श्री तन्मय कुमार ने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि सतत विकास, जलवायु समायोजन, संसाधन क्षमता और चक्रीय अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरणीय निगरानी के संदर्भ में भागीदारी मजबूत हुई है। बैठक के दौरान भारत ने स्पष्ट किया कि ब्रिक्स 2026 की गतिविधियां वैश्विक सहयोग को मनुष्यता प्रथम के आधार पर जन केंद्रित बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से निर्देशित हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान पर्यावरणीय कार्य समूह और संपर्क समूह ने चार प्राथमिकता क्षेत्रों सतत जीवन शैली, वनीकरण, जंगल की आग और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और समायोजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स सिविल फोरम में विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में संचालित 350 से अधिक बैठकों से विभिन्न सेक्टर के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले हैं। उन्होंने कहा कि इससे ब्रिक्स संगठन के तीन आधार स्तंभ राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, वित्तीय सहयोग और जनभागीदारी के बीच समन्वय मजबूत हुआ है। पीएम गति शक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सावन माह के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां एकत्र थी।
2: लखीसराय के अशोक धाम मंदिर पर जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की कतार में भगदड़ से ये हादसा हुआ। हादसे में गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार के अनुसार आज सुबह श्रद्धालुओं के अशोक धाम स्टेशन हॉल्ट से मंदिर जाने वाले रास्ते में बिजली के गिरे खम्भे में करंट दौड़ने की अफवाह के बीच भगदड़ मचने से ये हादसा हुआ।
3: मंदिर का क्यू वो पहुंचा हुआ था अशोक धाम हॉल्ट तक, तो जो उसका क्यू था उसके राइट साइड में पोल था, उधर गिरा तो अफवाह फैल गया कि बिजली गिरा है।
2: इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के निकटतम परिजन को 4,4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने और घायलों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धालुओं की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता कर रहा है। रक्षा मंत्री ने इस दर्दनाक हादसे के पीड़ित हर व्यक्ति के लिए कठिन समय में धैर्य बनाए रखने की प्रार्थना की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। आग सबसे पहले होटल के रिसेप्शन में लगी और 4 मंजिला इमारत तक फैल गई। आग लगने के समय ज्यादातर लोग सो रहे थे। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा बचाव अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीरभूम हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए डिजिटल स्वगणना प्रक्रिया आज आधी रात से शुरू हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जनगणना 2027 के अंतर्गत ये

0: प्रक्रिया 31 अगस्त तक जारी रहेगी।
1: जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी अमित शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि ये प्रक्रिया जम्मू कश्मीर के 16 जिलों में की जा रही है। इसमें जम्मू, श्रीनगर, सांबा और राजौरी जिलों को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख को इस अभियान के अंतर्गत पूरी तरह कवर किया जाएगा। श्री शर्मा ने बताया कि स्वगणना प्रक्रिया जियो रेफरेंस्ड है। अपने निर्धारित क्षेत्रों में मौजूद निवासी ही इस प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। निवासी आज से डिजिटल स्वगणना के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। इस बार जाति संबंधी जानकारी भी देनी होगी। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने खुद को दिमागी नक्सली बताने पर गर्व व्यक्त किया था। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस सरकारें नक्सलवाद को समाप्त करने में विफल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समस्या पर निर्णायक रूप से नियंत्रण किया गया है।
2: नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे, नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था। यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वो कांग्रेस नेता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही न करे। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी से भी कहा कि वे श्री गांधी के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल न करें। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ तथा ने श्री गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया और सीबीआई, ईडी तथा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले कर्नाटक निवासी एस विग्नेश शेषिर को नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ गांधी की ओर से दायर याचिका पर यह पीठ सुनवाई कर रही थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तेजी से बदलती तकनीक के इस दौर में स्नातक डिग्री शिक्षा का अंत नहीं बल्कि निरंतर बदलाव के साथ सीखते रहने की शुरुआत है। आज तमिलनाडु के तिरुवरूर में तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने वर्ष 2014 के बाद देश में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के अभूतपूर्व विस्तार का उल्लेख किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त मैत्री सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए आज थाईलैंड रवाना हो गई। सैन्य अभ्यास कल से इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मैत्री अभ्यास का उद्देश्य भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाना है। इससे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत जंगलों और अर्धशहरी क्षेत्रों में उग्रवाद तथा आतंकवाद का सामना करने की संयुक्त क्षमता बढ़ेगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भी कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारिककाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन के दौरान गरज के साथ आंधी वर्षा की संभावना है। दिल्ली के कुछ भागों में आज हल्की बारिश हो सकती है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हुई।

एम आर अर्जुन और हरिहरन अमसाकरुणन की भारतीय जोड़ी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। आज ही पूर्व विश्व चैंपियन और नौवीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल के साथ खेलेंगी। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने 5 विकेट पर 187 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। हॉकी विश्व कप में आज नीदरलैंड्स के अम्स्टरफेंड में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। विश्व कप में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत शनिवार को वेल्स पर 3-1 की विजय के साथ की, जबकि इंग्लैंड ने प्रतियोगिता के पहले दिन पाकिस्तान को 4-1 से हराया। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 कर्मियों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार से सम्मानित किया। इन पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने कानून निरस्त किए जाने और नए कानून बनाने तथा प्रशासन और लेखांकन में प्रौद्योगिकी अपनाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331 0481, व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 148 अंक की गिरावट से 77,861 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 189 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 2.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:30 हो रहे हैं। पुनः हम आपको लिए चलते हैं फिल्मी गीतों के सफर पर। सफर का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म बरसात की रात। गायक कलाकार हैं सुमन कल्याणपुर, कमल आरोत, गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीत निर्देशन रोशन ने किया है।

चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में गाए इस गीत को अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और उनके साथियों की आवाज़ में फिल्म भाभी से। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों के सफर का अगला गीत फिल्म जुर्माना से। गायक कलाकार लता मंगेशकर, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन।

मुकेश की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म सबक का यह गीत। गीत रचना सावन कुमार ने की थी, संगीत दिया था उषा खन्ना ने। श्रोताओं आइए सुनते हैं अगला गीत सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में, फिल्म सबक का यह गीत। गीतकार सावन कुमार, संगीतकार उषा खन्ना।

आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को भी आप सुन रहे थे फिल्म चुपके चुपके से। गायक कलाकार थी लता मंगेशकर। संगीत दिया था SD परमन ने। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म क्रीचर से। गीत और संगीत टोनी कक्कर ने दिया है।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में एक रेचर फिल्म का यह गीत अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ फिल्मी गीतों का सिलसिला भी यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीत कलाकार हैं राखी कुमारी, आइए इनसे सुनते हैं नचारी।

राखी कुमारी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे लोकगीत में नचारी। आइए सुनते हैं इन्हीं की आवाज़ में अगला लोकगीत देवी गीत।

राखी कुमारी के सुर में भी आप सुन रहे थे लोकगीत। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3:20 हो रहे हैं। यह सभा यहीं समाप्त होती है। पुनः हम उपस्थित होंगे अपने आगामी कार्यक्रमों के साथ संध्या 5 बजे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति।

0: अच्छा हुआ मेरे सिर आई। मरा दरा दोरा है दामोदर, आए कहीं कोई मत जाओ।
1: अम्मा अम्मा, अभी अभी जाकर डॉक्टर बुला लाऊं, अभी लौटा आता हूं, ठीक हो जाओगी तुम।
0: अरे कहाँ जाते हो? अरे नहीं नहीं बेटा, डॉक्टर के पास जाकर क्या करोगे? अरे अरे वो कोई ईश्वर है क्या है? डॉक्टर कोई अमृत पिला देगा, है? 10-20 वो भी ले जाएगा मेरा। डॉक्टर पैसे कुछ ना होगा, कुछ ना होगा बेटा। बस अब तो बस आखिरी समय आ गया है बेटा। तुम बस मेरे पास बैठ जा बेटा, अब बैठ कर भागवत पढ़ो। हाँ अंतिम समय है, अब ना बचूंगी। हाय राम, अब ना बचूंगी। पढ़ो पढ़ो बचो, भागवत पढ़ो बेटा, अंतिम समय है। बस तो जान लेकर ही जाएगी। हाँ कह देती हूँ।
1: तेतर तेतर बुरी चीज है, मैं समझता था कि ढकोसला ही ढकोसला है।
2: मुझे पता था, इसी से मैं उसे कभी मुंह नहीं लगाती थी।
0: अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो बेटा। नहीं, बच्चों को सब आराम से रखना। भगवान करे तुम सब सुखी रहो, तुम लोगों को भगवान सुखी रखे, बस यही आशीर्वाद देती हूँ। अच्छा हुआ मेरे ही सिर गई, तुम लोगों के सामने मेरा परलोक हो जाएगा, बस यही अच्छा है। राम करे, कहीं किसी दूसरे के सिर जाती तो क्या होता। राम राम, अरे बस अंतिम समय है, भगवान ने मेरी विनती सुन ली।

0: यही विनती है, तुम सब खुश रहो। हाय हाय, अब न बचूंगी, बस मैं तो चली दामोदर। खुश रहो तुम सब, बच्चों को ठीक से रखना। हाँ, कह देती हूँ, कष्ट ना हो किसी को।
1: दामोदर दत्त को निश्चय हो गया कि अब अम्मा न बचेंगी। बड़ा दुख हुआ। उनके मन की बात होती तो वो माँ के बदले तेतर को न स्वीकार करते। जिस जननी ने जन्म दिया, नाना प्रकार के कष्ट झेलकर उनका पालन पोषण किया, अकाल वैधव्य को प्राप्त करके भी उनकी शिक्षा का प्रबंध किया, उसके सामने एक दुदमुही बच्ची का क्या मूल्य था, जिसके हाथ का एक गिलास पानी भी वो न जानते थे। शोकातुर हो माँ के सिरहाने बैठकर भागवत की कथा सुनाने लगी। रात को बहू भोजन बनाने चली तो सास से बोली,
2: अब कैसा लग रहा है अम्मा जी? आप कहें तो आपके लिए थोड़ा सा साबुदाना बना दूं?
0: बड़ा दर्द होता है। अरे बेटी, अन्न के बिना न मारो है, भला साबुदाना मुझसे खाया जाएगा है? जाओ जाओ, थोड़ी सी पुड़िया छान लो। हाँ, अब पड़े पड़े जो इच्छा होगी खा लूंगी। और हाँ सुनो बहू, कचौरियां भी बना लेना। अब मरती हूं तो भोजन को तरस तरस के क्यों मरूं भला? बड़ा दर्द होता। सुन अब बेटी, थोड़ी मलाई भी मंगवा लेना। हाँ, वो भी चौक से। हाँ, अब फिर थोड़े ही खाने आऊंगी। अब गई तो गई, हम तो समझो कि अब बेटी अब ना बचूंगी। बेटा, थोड़े से केले मंगवा लेना, कलेजे में दर्द में केले खाने से आराम होता है। हाँ, बड़ा दर्द है भैया।
1: भोजन के समय पीड़ा शांत हो गई, लेकिन आधे घंटे के बाद फिर जोर से होने लगी। आधी रात के समय कहीं जाकर उनकी आंख लगी। एक सप्ताह तक उनकी यही दशा रही। दिन भर पड़ी कराहा करती, बस भोजन के समय जरा वेदना कम हो जाती। दामोदर दत्त सिरहाने बैठे पंखा झलते और मातृ वियोग के आगत शोक से रोते। घर की महरी ने महल्ले भर में ये खबर फैला दी। पड़ोसी ने देखने आई तो सारा इल्जाम बालिका के सिर गया। एक ने कहा,
3: ये तो कहो भैया कि बड़ी कुशल हुई जो बुढ़िया के सर गई, नहीं तो तैतर माँ बाप दो में से किसी एक को लेकर जाए तो ही शांत होती है। देव ना करे कि किसी के घर तैतर का जन्म हो।
4: हाँ हाँ, सही कहती हो। तैतर का नाम सुनते ही मेरे भी रोए खड़े हो जाते हैं। भगवान भले ही औलाद ना दे, पर तैतर ना दे।
1: एक सप्ताह बाद वृद्धा का कष्ट निवारण हुआ। मरने में कोई कसर ना थी, वो तो कहो पुरखों का पुण्य प्रताप था। ब्राह्मणों को गोदान दिया गया, दुर्गा पाठ हुआ, तब कहीं जाके संकट टला।
5: कथा सुधा में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तेतर। आज आपने सुना इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। कहानी में भूमिका सहित पात्रों का परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार जी श्याम, वृद्ध दादी रेणु चतुर्वेदी, दामोदर दीपक केसावलेकर, दामोदर की स्त्री स्वप्निल श्रीवास्तव, लक्ष्मी चंचल वर्मा, पड़ोसन मंजरी वर्मा, बाल कलाकार प्रज्वल सिंह, वेदांत सिंह और रुद्र सिंह, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, संकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
6: तो आपने सुनी कहानी तेतर, और हम तो बहुत मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। आशा है आप सभी को भी बहुत अच्छी लगी होगी ये कहानी।
7: और आज घर में क्या चल रहा है? आज घर में हो रहा है नाग पंचमी का त्यौहार मन रहा है।
6: बिल्कुल।
7: तो ये जो है ना, ये जो त्यौहार होता है ना, ये हमारा देश त्यौहारों और परंपराओं की विविधता वाला देश है। यहाँ मनाए जाने वाला प्रत्येक पर्व अपने साथ धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक और पर्यावरण की रक्षा के लिए एक संदेश भी लेकर आता है। नाग पंचमी हमारा एक महत्वपूर्ण पर्व है जो नाग देवताओं की पूजा और उनके प्रति सम्मान का प्रतीक माना जाता है।

0: ये पर्व सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है।
1: बिल्कुल। और सुना ली, नाग पंचमी के दिन श्रद्धालु सर्प की पूजा करते हैं। भगवान शिव के गले में नाग का स्थान होने के कारण नागों का संबंध भगवान शिव से भी माना गया है। और नाग पंचमी का महत्व ये केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा अधिक है। और सर्प हमारे पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो खेतों में चूहे और दूसरे हानिकारक जीवों की संख्या नियंत्रित करते हैं जिससे फसलों की रक्षा होती है। इसलिए नागों और अन्य जीव जंतुओं का संरक्षण प्रकृति के संतुलन के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: और इस दिन कई स्थानों पर जो है ना नाग देवता के चित्र और प्रतिमाओं की पूजा की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये पर्व विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। महिलाएं परिवार की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना करती है। अनेक स्थानों पर पूजा व्रत और धार्मिक कथाओं का आयोजन भी किया जाता है।
1: और आज जब हम ये पर्व मना रहे हैं तो इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए सोनाली कि सांपों को पकड़कर उन्हें परेशान करना या जबरदस्त ती उनको दूध उन्हें पिलाना ये सब उचित नहीं है। वन्य जीवों के प्रति प्रेम और सम्मान ही हमारी सच्ची पूजा और श्रद्धा मानी जानी चाहिए। यदि घर या आसपास कहीं सांप दिखाई दे तो उन्हें परेशान करने के बजाय प्रशिक्षित वन्य जीव बचाव दल की हमें सहायता लेनी चाहिए।
0: और ये दिन हमें एक संदेश भी देता है कि मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नाग देवता के प्रति श्रद्धा तभी सार्थक है जब हम उनके सहित सभी जीव जंतुओं की रक्षा करें और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखें। इस प्रकार नाग पंचमी हमारी धार्मिक आस्था और संस्कृति और प्रकृति प्रेम का एक सुंदर संगम है।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश भी आया है इसी के लिए कि ये जो पर्व है ये बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है हमारे देश में और बहुत ही सुंदर और धार्मिक मान्यता से जुड़ा हुआ ये पर्व है। इन दिनों नागों की पूजा की जाती है और कहीं कहीं नाग देवता को दूध पिलाने की भी विधि रखी गई है, देखा जाता है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने गले में सर्प को धारण किया था।
0: ये हमारे साथी ने कहा। और वक्त हो चुका है अंतराल का, तो हम हाजिर होते हैं अंतराल के बाद।
1: जी।

0: दीपा, हमारी एक सखी ने एक मैसेज लिखा है कि हमारे घर भी आज नागपंचमी की पूजा हुई है। नाग देवता को गोबर और मिट्टी से बनी हुई मूर्ति को धान का लावा, लैया, गुड़ और दूध चढ़ाया जाता है। वहीं सब साथ खाना खाते हैं और बहुत जगह पर, खासकर बिहार के कुछ प्रांत में, आज बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सभी के घरों में दाल की पूरी, खीर, आम, पका कटहल, भोग लगाया जाता है और प्रसाद बांटा जाता है। नीम की पत्तियों से घर के दरवाजे को सजाया जाता है। ये पूजा भी हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। सावन के महीने में खेतों में धान की फसलें लगाई जाती है और उन बारिश के दिनों में बहुत सारे कीड़े सांप रहते हैं, जो उन्हें भी देवता स्वरूप मान के साथ उनका भी पूजन किया जाता है और हर्ष और उल्लास के साथ इस दिन को मनाया जाता है।
1: और एक और संदेश आया, ये कहते हैं कि हमारे घर में कहा जाता है कि आप कहीं भी किसी भी देश में रहिए, वहां के परिवेश में अपने को ढाल लिए, पर अपना अपना कुल परंपरा का जो है परंपरा के निभा होनी चाहिए। तो कहती हैं कि बहू हमारी पुणे में रहती है, वो भी आज नागपंचमी की पूजा वहां करती है। यानी आप तो अपने गांव देश में रहते हैं, लेकिन बहू दूर रह रही है, लेकिन सारी परंपराओं को वो अपनाकर उसका
0: पालन कर रही है।
1: पालन कर रही है।
0: तो ऐसे ही होता है ना दीपा, की जो परंपराएं होती है या फिर पारंपरिक व्यंजन होते हैं, अगर वो बनेंगे घर में तभी तो उसका स्वाद बच्चों को पता चलेगा।
1: बिल्कुल।
0: अगर
1: और
0: वो
1: उसका
0: बनेंगे ही नहीं तो
1: जी,
0: बच्चों को पता ही नहीं चलेगा।
1: और उसका जो महत्व है, क्यों बनाया जाता है, हर एक चीज का महत्व है और हर एक चीज का कारण है। वो समझेंगे ही नहीं अगर उन्हें ना वो चखेंगे ना वो बनते हुए देखेंगे। वो सौंधी खुशबू जब घर में फैलती है उसका आनंद नहीं लेंगे, तब तक उसका महत्व उन्हें समझ नहीं आएगा।
0: और जब हम बताते हैं कि कितना पौष्टिक है, इसमें इतना सारा प्रोटीन है, इसमें विटामिन है, और इसमें यानी ये जो जो व्यंजन है, स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। जब
1: बिल्कुल
0: ये
1: सही
0: बात
1: कहा।
0: बच्चों को बताई जाती है ना, तो बच्चे जंक फूड के लिए जिद नहीं करते हैं।
1: बिल्कुल। लेकिन देखो ना, अभी आज का ये जो जमाना है, तेज रफ्तार भागती भागती सी जिंदगी हमारी हो गई है, और इस बदलते परिवेश का सबसे ज्यादा जो प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है वो खान पान पर हम देख ही रहे हैं। एक समय था सोनाली, जब बच्चों में घर का बना ये दाल चावल सब्जी रोटी, या यूं कहें खिचड़ी पोहा उपमा, कोई किसी भी प्रकार के पराठे फल, सब कुछ उनको बड़े चाव से खा लेते थे वो लोग, है ना।
0: पर आजकल बच्चे जो है ना, कलर और जो है ना रंगों के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, और उन्हें ना ये जो उसमें बहुत जो चटपटा बनाया जाता है जंक फूड, जैसे फिर पिज्जा है, बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज है, नूडल्स, पास्ता, चिप्स, चॉकलेट, केक, कोल्ड ड्रिंक और पैकेट बंद खाद्य पदार्थों ने ये जो जगह ले ली है बच्चों के जीवन में, और यही
1: बिल्कुल।
0: कारण है कि जंक फूड बच्चों के जीवन का हिस्सा बनता चला जा रहा है।
1: और उन्हें इस तरीके से रंग बिरंगी पैकेजिंग में परोसा जाता है ना, और बड़े लुभावने फिर विज्ञापन भी बना दिए जाते हैं। जब विज्ञापन बच्चे टीवी मोबाइल पर या अपने किसी सोशल मीडिया हैंडल पर देख लेते हैं, या कार्टून प्रोग्रामों के दौरान बीच में अगर देख लेते हैं, तो बस फिर उनका मन उस पर तो आ ही जाता है, और उसका बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है, वहां से शुरू हो जाती है जिद।
0: और छोटे बच्चे तो क्या बड़ों का भी मन आ जाता है। वे
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही
0: बच्चे
1: कहा।
0: हैं, और जब उनके पसंदीदा अभिनेता है या खिलाड़ी है या कार्टून पात्र किसी खाद्य पदार्थ का प्रचार करते हैं ना, तो बच्चे भी उसे खाने की जिद करने लगते हैं। और इसके अलावा फिर जन्मदिन है भाई, पार्टियां हैं मॉल में, मल्टीप्लेक्स में, स्कूल के आसपास की दुकानें, ऑनलाइन फूड

0: डिलीवरी ने भी जंक फूड को बच्चों की पहुंच में बहुत ही आसान बना दिया है कि इतना इजीली उन्हें सब मिलता है, तो वो तो उन्हें इजी है
1: बिल्कुल,
0: और चटपटा
1: और
0: स्वादिष्ट है।
1: चटपटा स्वाद है, और चलिए स्वाद भी अगर किसी को पसंद ना आए तो एक बच्चा तो खा रहा है, शायद दो तीन खा रहे हैं, तो वो जो एक नहीं खा रहा है तो उसका भी मन करेगा, या उसको बोला जाएगा कि देखो तुम ये खाकर देखो
0: कितना
1: कितना
0: अच्छा।
1: अच्छा है, तो
0: और फिर वो
1: बस
0: अपनी मम्मी से कहेगा कि सबकी मम्मियां तो लेकर देती है, आप ही हमारे साथ ऐसा क्यों करते हो।
1: ऐसा क्यों करते हो, बिल्कुल सही कहा। और जंक फूड स्वाद में भले ही लाजवाब लगे सोनाली, लेकिन स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है, यानी हानिकारक है, और इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में तेल होता है, सफेद चीनी, नमक, मैदा, फिर ये प्रिजर्वेटिव डले होते हैं, कई प्रकार के फ्लेवर उसमें मिलाए जाते हैं, और आर्टिफिशियल कलर्स उसके अंदर होते हैं, और ये वहीं पे देखो आप विटामिन, प्रोटीन, फाइबर और कई तरह के खनिज जैसे पोषक तत्व की तो बहुत कमी होती
0: या
1: है।
0: फिर ना के बराबर होते।
1: बिल्कुल सही कहा। अच्छा, बच्चे तो नहीं समझ पाएंगे ये सारी बातें, हमें उनको बताना पड़ता है। अगर उनको बताएं कंपोजिशन में क्या लिखा है, देखो ये सब चीजें इतनी ज्यादा है और तुम्हारे शरीर में इतनी ज्यादा ये चली जाएंगी, ये मात्रा हमारे शरीर में जरूरत नहीं है इतनी जितना ये एक पैकेज के
0: थ्रू
1: द्वारा जा
0: मिलता
1: रहा
0: है।
1: है, तो वो बच्चे समझेंगे, उनको बिठा के बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, समझते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त उन्हें देना होता है।
0: और परिणाम हमारे सामने है ना दीपा, कि जब हम छोटे थे या फिर हमारे साथी मोटे नहीं थे, है ना।
1: बिल्कुल सही
0: आजकल के
1: कहा,
0: बच्चे देखिए ना कितने मोटे होते जा रहे हैं, जंक फूड खाने से बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है, मधुमेह है छोटे छोटे बच्चों को,
1: बहुत छोटे।
0: डायबिटीज हमें मालूम ही नहीं था, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर मालूम नहीं था, दांतों की समस्या है। हम हार्डली बहुत कम डेंटिस्ट के पास जाते थे, पर आजकल तो हर बच्चा डेंटिस्ट के पास
1: बिल्कुल
0: जाते
1: सोनाली, पहले तो डेंटिस्ट इतने होते ही नहीं थे, अब तो पेडेटिक डेंटिस्ट भी होने लगे हैं,
0: हाँ
1: जहाँ
0: हाँ
1: छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर डेंटिस्ट है, क्योंकि छोटेपन से ही उनको दांतों की समस्याएं, यानी उनके दूध के दांत भी अभी गिरे नहीं है, उसके पहले ही उन्हें बहुत ज्यादा बिल्कुल एक सीरियस दांतों की प्रॉब्लम होने लग जाती है।
0: साथ ही उनकी ना रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी आने लग गई है, और कम उम्र में उन्हें अनेक स्वास्थ्य समस्याओं से का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए ना, हम यही चाहेंगे ना कि हमारा बच्चा स्वस्थ रहे, खुश रहे। अगर ये चाहते हैं तो हमें जंक फूड से बच्चों को दूर रखना चाहिए, और अभी हमें एक गाना सुनना चाहिए।
1: उसके तो पास रहना चाहिए, है ना।

0: सोनाली, हमारे सभी साथियों ने, सहेलियों ने अलग अलग संदेशों से के द्वारा बताया है कि जंक फूड के बारे में उनके क्या विचार हैं। बहुत सी बातें तो बताइए, हम ये चाहते हैं कि आप कोई सखी या किसी भी हमारे सुनने वाले, इस वक्त सुनने वाले श्रोता बताएं, उनके घर में छोटे बच्चे हैं, अगर हैं तो क्या वो बाहर के खाने के लिए जिद करते हैं तो आप उन्हें कैसे समझा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं, दोनों ही बातें बताएं।
1: इस विषय पर भी हमें लिखकर बताएं, क्योंकि जब है ना श्रोता अपने कमेंट्स लिखते हैं ना तो ज्यादा दिल के करीब होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और उससे एक ना बहुत अच्छा संदेश भी जाता
0: और
1: है,
0: और समझ में भी आता है कि क्या चल रहा है सबके घरों में, क्या एक सा चल रहा है, एक सा सही हो रहा है या एक सा गलत हो रहा है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं कि मेरी प्रोविजन की शॉप है और मेरी शॉप में 5-10 रुपए वाले पैकेट वाला नाश्ता मैं बेचता हूँ। आजकल स्कूल के बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे पैकेट लेना पसंद करते हैं। लंच बॉक्स में घर का हेल्दी फूड देने के बजाय घर से पेरेंट्स भी यही खरीद कर नाश्ता में दे देते हैं। इसमें ज्यादा शुगर और नमक होने के कारण बच्चे छोटी उम्र में मोटापे के शिकार हो जाते हैं, और घर पर भी पिज्जा जैसे जंक फूड आसानी से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं, जो हेल्थ के लिए अनुकूल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है।
0: बिल्कुल, वही एक और संदेश आया है कि आज के समय में खाने में जंक फूड बच्चों की पहली पसंद है, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, चिप्स, ये तरह तरह के पैकेट स्नैक्स। खुशबू और आकर्षक पैकिंग की वजह से बच्चों को ये बहुत लुभाते हैं। इसके अलावा माता पिता की व्यस्त दिनचर्या और आसानी से ये सब अवेलेबल हैं, उसके कारण भी ऐसे खाद्य पदार्थ बच्चों के आदत का हिस्सा बन गए हैं, जो उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए स्वाद के साथ बच्चों को संतुलित आहार का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए जंक फूड को पूरी तरह खाने पर पाबंदी लगाने के बजाय उन्हें एक संतुलित भोजन का महत्व समझाना बहुत जरूरी है, और इसके लिए जरूरी है कि घर में जो भी आप हेल्दी फूड, जो भी स्वस्थ खाना बना रहे हैं पौष्टिक, वो बनाए भी और खाएं, खुद भी खाएं और अपने बच्चों को खिलाएं, क्योंकि जब आप खुद करेंगे उस चीजों को, उन आदतों को अपनाएंगे, तो बच्चे बिल्कुल उन आदतों का अनुसरण करेंगे।
1: अब देखिए ना, अब जैसे पिज्जा जैसे ही हम अगर मोटी मोटी रोटी बना के उस पे सारी सब्जियां डाल के उसको अच्छे से उसके ऊपर पनीर कद्दूकस करके उसमें चाट मसाला डाल के दिया ना, तो बच्चों को बताएं कि देखिए होममेड पिज्जा है, ये खाएंगे ना तो ये ज्यादा हेल्दी है। इस तरह से बच्चों को, अगर डोसा का बैटर है उससे आपने ABCD बना के दिया बच्चों को, तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। फिर पराठे को कट करके ABCD का शेप बना दिया तो बच्चे शौक से खाएंगे।
0: और इसी तरह से पराठे में जैसे किसी दिन पालक की प्यूरी डाल के आप हरे कलर के पराठे दीजिए, कभी बीट रूट का पराठा जो कि बिल्कुल लाल कलर का हो जाता है, या एक दिन जिस दिन आपके पास थोड़ा समय हो, ये सब अलग अलग कलर के पराठे बना के दीजिए, तो उनको बहुत सुंदर लगता है और बहुत खुशी से और बहुत स्वाद लेकर के चाव से खाते हैं बच्चे।
1: और एक हमारे साथी ने लिखा है कि जंक फूड हमने भी बहुत खाया है, हमारी मजबूरी होती थी क्योंकि कॉलेज इतना दूर था, वहाँ आसपास कॉलेज कैंटीन के सिवा कुछ भी नहीं होता था। भूख लगने पर मजबूरी में जो कैंटीन में मिलता था वही खाना पड़ता था, लेकिन आज मैं कोई जंक फूड नहीं खाता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है,
0: बहुत अच्छी।
1: मजबूरी में हम खा सकते हैं, पर जहाँ पर हम कोशिश कि ना खाए वहां पे हम कोशिश कर सकते हैं।
0: अच्छा, एक संदेश ये कहता है कि भाई ये आकर्षक नहीं बल्कि घर में समय पर भोजन नहीं बना पाने का परिणाम है। अच्छा, इन्हें ऐसा लगता है, और वो भी वहां पर विशेष जहां दंपत्ति भी ऑनलाइन ऑर्डर करके मनपसंद भोजन मंगवा लेते हैं। अरे बच्चे तो अनुसरण करते हैं और जब कर लिए तो उसका दुष्प्रभाव से मोटे होने पर उन्हें रोकते भी हैं, मगर वे भी तो तभी रुकेंगे जब आप रुकेंगे। ऐसे में तो यही कहना होगा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यही बात हम पहले भी कर रहे थे कि हमें पहले अपने आप में सुधार भी लाना होगा और पहल भी करनी होगी।
1: एक साथी कहते हैं कि सिर्फ बच्चों में नहीं बड़ों को भी जंक फूड खाने की आदत होती है, चिप्स, पिज्जा और वो भी कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ, इन सभी का आकर्षण विज्ञापनों के

0: साथ बड़ा प्रचार किया जाता है। रंग बिरंगी पैकिंग और इंस्टेंट डिलीवरी सुविधा के कारण गृहिणियों को भी आराम मिल जाता है।
1: जी बिल्कुल। और एक और संदेश ये कह रहा है कि जो बच्चे देखते हैं जंक फूड, बस उसे देखते ही मचल जाते हैं, और ये है कि इनके लिए बहुत नुकसानदायक है सेहत के लिए। इनमें जो मसाले केमिकल का प्रयोग करते हैं बनाने वाले, वो स्वास्थ्य का कतई ख्याल नहीं रखते। उनका उद्देश्य अधिक से अधिक बिक्री पर जोर देना होता है। चटपटी मसालेदार चीजें बड़े आदमियों की तरह बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उनका पाचन तंत्र इतना

0: जल्दी आकर्षण करते हैं। कभी कभार पसंद की चीज खाना गलत नहीं है, लेकिन अगर यही रोज की आदत बन जाए तो पौष्टिक भोजन से दूरी बढ़ सकती है। अब तो जंक फूड 10 मिनट में घर पर आ जाता है, वही सुविधा हो गई है, इसलिए उस सुविधा का हमें दुरुपयोग नहीं करना है। कि हाँ भाई, कभी बीमार है या कभी जन्मदिन है या फिर कभी कोई खास अवसर है, 2-3 महीने में 4 महीने में एक आध बार ठीक है, पर अगर रोज रोज वही हम खाने लग गए तो उसकी आदत भी बन जाएगी
1: और हाँ आप
0: और
1: कुछ
0: बीमारियां भी करीब आ जाएगी।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक हम गर्मियों की छुट्टियों में जब सारी बहनें मिलती हैं तो एक हमारी सिस्टर ने बताया, कजिन सिस्टर ने, कि हम अपने बच्चों को बिठा लेते हैं और उनको बोलते हैं कि पूरे हफ्ते भर के में आप क्या खाना चाहते हो बताओ, एक दिन सिर्फ आपको मिलेगा, वो भी क्योंकि छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, एक दिन बाजार का, बाकी सब चीजें घर में बनेंगी और आप भी हमारे साथ मदद करेंगे। तब उन बच्चों को बहुत मजा आने लगा और अब वो बच्चे कहते हैं कि मम्मी आप हमें घर पर ही हर चीज बना के खिलाइए।
0: कितना सुंदर उदाहरण है। चलिए अब गीत सुन लेते हैं।
1: चलिए।

0: भाई दिल किसी पे भी आए, ये हानिकारक पदार्थों पे ना आए बस, है ना।
1: मिष्टी दोई पे आ जाए तो बात होगी।
0: हाँ, ये बिल्कुल सही है।
1: एक हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, सामग्री है 1 लीटर फुल क्रीम दूध, 3/4 कप चीनी या गुड़, 3 से 4 चम्मच गाढ़ा दही, हंकड़। बनाने का तरीका, दूध को उबालकर थोड़ा गाढ़ा कर ले, एक अलग पैन में चीनी को पिघलाकर कैरेमल बना ले, कैरेमल को गुनगुने दूध में अच्छी तरह मिला ले, दूध के मिश्रण को हल्का ठंडा होने दे, अब इसमें गाढ़ा दही मिलाकर अच्छी तरह से फेंट ले। इस मिश्रण को मिट्टी के बर्तन कूलर में डाले और बर्तन को ढककर 7 से 8 घंटे तक रात भर के लिए किसी गर्म जगह पर जमने के लिए रख दे। जमने के बाद इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा कर ले और फिर सर्व करे। मिष्टी दोई।
0: तो भाई देखियो सखियो, हमारे सोनाली ने तो मीठा आपको पहले बता दिया, लेकिन साथ में क्या खास व्यंजन बनेगा, तो वो बनेगा आलू और दम, यानी कि दम आलू फेमसली उसे कहते हैं। छोटे छोटे आलू लेने होते हैं इसमें, जो दम आलू के लिए जाते हैं। आप ले लीजिए आधा किलो यानी 500 ग्राम, प्याज ले लीजिए 2 बारीक कटे हुए, टमाटर 2 बारीक कटे हुए, दही 1/2 कप, लहसुन अदरक का पेस्ट आपके हिसाब से ले लीजिए, तेल 3 बड़े चम्मच, जीरा 1/2 चम्मच, हल्दी छोटी 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आपके हिसाब से, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, गरम मसाला जैसे आपके घर में चलता है वैसे लीजिए, नमक भी आप जैसे आपके घर में डाला जाता है वैसा, और हरा धनिया सजाने के लिए। तो अब आलू उबाल करके छील लें, उनमें हल्के छेद छेद छोटे छोटे से कर दीजिए। कढ़ाई में तेल गर्म करके

0: आलू को हल्का सुनहरा होने तक तल लें और निकाल लें। उसी कढ़ाई में जीरा डालें, फिर प्याज डालकर सुनहरा भुनें, अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ और सेकंड के लिए भुनें, फिर अब टमाटर, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर डालकर मसाले को तब तक भुनें जब तक तेल मसालों से अलग ना हो जाए। गैस धीमी करके फेंटा हुआ दही डालें और लगातार चलाते हुए पकाते रहिए। अब तेल तले हुए जो आलू आपने रखे थे अलग से, नमक और लगभग एक कप पानी उसमें डालना है। ढककर इसको आप धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकाएं ताकि आलू में मसाले खूब अच्छी तरह से घुल जाए और मिक्स हो जाए। आखिर में आप गरम मसाला डालिए, हरा धनिया डालकर थोड़ा सा और पकाइए।
1: और इसके साथ में लूची यानी बंगाल की बेहद लोकप्रिय पूरी है, जो सामान्य पूरियों से थोड़ी अलग होती है। आटे के बजाय मैदे से बनाई जाती है। स्वयं के लिए थोड़ा सा घी या तेल और हल्की सी चीनी मिलाई जाती है और इसका रंग सफेद और बनावट बाहर से हल्की खस्ता और अंदर से बेहद नरम होती है। और आलू और दम और ये लूची और साथ में मिष्टी दोई हो तो क्या कहने।

0: हमारे बहुत सारे साथियों ने भर भर के कमेंट्स लिखे हैं दीपा। एक साथी कहते हैं कि भाई है अपना दिल तो आवारा, बिल्कुल पहले अपने दिल पर मुंह पर कंट्रोल होगा जंक फूड के प्रति, तभी बच्चों को भी इसके लिए मना कर सकते
1: बिल्कुल सही
0: हैं।
1: कहा। और एक संदेश आया है कि बंगाल के व्यंजन में पूरी और दम आलू की बात ये हो रही है आज, लेकिन ये बिहार का भी लोकप्रिय व्यंजन है। जी हाँ बिल्कुल है, और जब भी कोई छोटा मोटा फंक्शन होता है ना तो खीर पूरी तो बनती ही है, साथ में दम आलू भी बनता है, लेकिन आजकल कहीं कहीं जगह पर इस पनीर की सब्जी ने जगह ले ली है।
0: और एक साथी ने लिखा है, एक सखी ने, कि लूची व्यंजन पहली बार सुन रही हूं,
1: जी
0: तो इनके घर में अब लूची बनने वाली है और हमारे घर में भी बनेगी। पर हम श्रोताओं को दिल से धन्यवाद कहेंगे कि आपके कमेंट्स के कारण, आपके इतने सुंदर सुंदर संदेश के कारण कार्यक्रम में चार चांद लग गए।
1: बिल्कुल सही
0: और अब
1: कहा।
0: इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। आप सभी को सोनाली पाठक
1: और दीपा माहेश्वरी का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: दोस्तों नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हर्षदा राज्याध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर हर्षदा राज्याध्यक्ष, जो एक जानी मानी फिजियोथेरेपिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में
2: और मुझे यहाँ बुलाने के लिए थैंक यू।
1: डॉक्टर, ये जो फिजियोथेरेपिस्ट है, इसकी जरूरत आजकल लोगों को बहुत पड़ती है। जब किसी को टेनिस एल्बो हो जाती है, किसी की गर्दन टेढ़ी हो जाती है, शोल्डर में प्रॉब्लम हो जाती है, पर फिजियोथेरेपिस्ट का काम कितना गंभीर है, सबसे पहले तो ये बताइए।
2: सो फिजियोथेरेपिस्ट का काम गंभीर नहीं बोलूंगी मैं, बट जरूरी है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसे बन गई है कि इसकी जरूरत पड़ती है।
1: जी जी।
2: अगर हम सोचे कि हम कितना टाइम बैठे रहते हैं एक जगह पे, काम भी ऐसे हो गए हैं कि लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे काम करना,
1: सारा दिन बैठे,
2: सारा दिन 8 घंटा, समटाइम्स 4 या 5 घंटा एक साथ बैठे हैं लगातार, तो हमारा बॉडी का टेंडेंसी है कि शोल्डर्स क्रंच हो जाते हैं, हेड फॉरवर्ड आ जाता है, तो गर्दन की प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी ये जो लोग हैं उनको एक्चुअली लाइफस्टाइल डे टू डे में कोई एक्सरसाइज मिलती ही नहीं है, तो एक्सरसाइज एक्चुअली ये आर्टिफिशियल हो जाती है, मतलब करनी पड़ती है। तो जब भी हम करते हैं एक्सरसाइज एक्सरसाइज के लिए, तो कभी कभी चॉइस भी गलत करते हैं या बहुत ज्यादा टाइम करते हैं। अगर टेनिस एल्बो टेनिस से रिलेटेड नहीं है, कोई भी चीज अगर हम बहुत ज्यादा करें या बहुत हैवी कुछ उठाएं और हमको आदत नहीं है उस चीज की और वो हम बार बार करें, या तो समझो अगर टेनिस ही खेल रहे हैं तो शॉट परफेक्ट करने के लिए बार बार वही शॉट मारते रहें, तो तभी होता है ये। तो अभी बिकॉज साइंस हैज गॉन अहेड एंड रिसर्च ने दिखाया है कि क्या करना चाहिए, तो इसके लिए ये सब चीजों के लिए फिजियोथेरेपिस्ट आर इसेंशियल।
1: बिल्कुल।
2: जब भी लाइफस्टाइल ही ऐसी थी जहां बहुत सारी एक्टिविटी जरूरी थी लाइफस्टाइल के लिए, तभी ये आर्टिफिशियल एक्सरसाइज या कुछ ऐसा नहीं था। और अभी स्पोर्ट्स में भी इतना पावर के साथ लोग खेलते हैं कि उनके लिए एक्सरसाइज करना, वो चीज मेंटेन करने के लिए, पावर बिल्ड करने के लिए जो एक्सरसाइज जरूरी है, उससे भी कभी कभी पेन बढ़ता है। तो इस चीजों के लिए हमारी जरूरत पड़ती है।
1: बिल्कुल। और एक और एरिया है जहां

0: हाँ, बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और वो है स्पोर्ट्स, जिसकी दिशा में आपका बहुत सारा काम है।
1: हाँ,
0: इस बारे में बताइए।
1: स्पोर्ट्स मतलब कि फिजिकल होता है, और स्पोर्ट्स के लिए ट्रेनिंग भी जरूरी होती है। स्पोर्ट्स में एक्टिविटी ऐसी होती है कि वो बहुत अपने मतलब यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट। इसके लिए जरूरी है कि उसका प्रेपरेशन भी ऐसा हो कि यू आर एट योर फिजिकल बेस्ट। फिजिकल ट्रेनिंग भी सख्त होती है, प्रैक्टिस ट्रेनिंग भी सख्त होती है, और फिर जब भी मैच में जाते हैं तो यू आर कॉम्पीटिंग विथ योर राइवल हु इज ऑल्सो बेस्ट। तो उन्होंने भी बेस्ट उनकी फिजिकल स्टेटस बनाई है, आपकी भी है, और आपको दोनों को जीतना है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ ये वॉर के जैसा है, जो
0: बिल्कुल सही कहा
1: दो
0: आपने।
1: सोल्जर्स वॉर पे जाते हैं बेस्ट देते हैं, क्योंकि जीतना तो है। तो इस कंडीशन में इंजुरीज आर गोइंग टू हैपन। तो इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प अ लिटिल बिट टुवर्ड्स प्रिवेंशन। मतलब जो प्रिवेंटेबल है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर उसी टाइम कुछ हो गया, गिर गया कोई या कुछ हो गया, तो वो प्रिवेंटेबल नहीं है। बट जो प्रिवेंटेबल है वो कंडीशंस प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और जब भी इंजरी हो भी जाती है तो उसके रिकवरी में हम हेल्प करते हैं। अगर सर्जरी है तो सर्जरी के बाद तो बहुत सारा काम होता है, सो व्हाट आई कॉल लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन। क्योंकि सपोज ACL सर्जरी है, या रोटेटर कफ जो शोल्डर की है, या कुछ भी, अगर टेनिस एल्बो की भी हो, उसका रिकवरी पीरियड बिटवीन 3 months टू 9 to 12 months बाय द टाइम यू कम बैक।
0: ये
1: तो
0: तो पूरा
1: वो
0: साल हो
1: हाँ
0: गया।
1: साल जाता है। ACL सर्जरी अगर हो तो स्पोर्ट में वापस आने के लिए 9 महीना जाता है। आई कॉल इट लाइक
0: ACL
1: अ
0: मतलब क्या होता है?
1: इट इज एंटीरियर क्रूशिएट लिगमेंट। ये नी वाली लिगमेंट है, बहुत फेमस है, बहुत एथलीट्स को होती है।
0: अखबारों में हम पढ़ते हैं
1: हाँ,
0: बाकायदा।
1: स्पेशली फुटबॉल या ऐसे जो है जहां बैलेंस और रोटेशन होता है, तो ये होती है इंजरी। 9 महीने लगते हैं, इट्स लाइक गिविंग बर्थ,
0: क्या बात है
1: जेस्टेशन पीरियड उतना तो
0: जी।
1: लगता है। तो वो पूरा 9 महीना हमारे अंडर होता है ट्रीटमेंट, और एंड वी कॉल इट ग्रेडेड। तो वो स्टार्ट होता है जैसे हम ABCD लिखते हैं, वैसे बहुत बेसिक से चालू होता है, और फिर हर 3 3 हफ्ते के बाद या 6 हफ्ते के बाद इंक्रीमेंट होता है, और इस तरह से पूरा 9 महीना चला जाता है। बाय द 7th month दे कैन गो बैक टू फील्ड एंड दे कैन स्टार्ट विथ फील्ड प्रैक्टिस एंड ऑल दैट। बट फिर भी टीम में आने के लिए 9 महीना लगता है।
0: बताइए ये कितनी
1: तो
0: महत्वपूर्ण बात है।
1: स्पोर्ट्समैन को बहुत ही जरूरत है फिजियोथेरेपिस्ट विद देम, अगर अफोर्ड होता है वो टीम के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में सब लेवल पे ये नहीं होता है, क्योंकि टीम्स के पास उतने पैसे ही नहीं होते हैं। या मेनी थेरेपिस्ट डू गो फ्री ऑफ चार्ज, बट फिर वो क्वालिटी नहीं मिलती है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा। आम जीवन में जब फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है तभी हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। आप
1: हाँ
0: हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, तो एक आपको हो सकता है कि अजीब सा सवाल लगे, पर क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो सावधानियां बरतें तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े?
1: जरूर है, जरूर है। पर हम ऐसे हैं सब, आई मीन इवन मी, कि जब तक एकदम जरूरत नहीं हो हम उसको एक्नॉलेज ही नहीं करते कि कुछ प्रॉब्लम है।
0: यानी जब आग लगती है तभी हम
1: तभी हाँ, जब भी थोड़ा सा कुछ पता लगता है तभी कोई नहीं उस पे केयर करता है। मतलब फर्स्ट साइन इज पेन।
0: जी।
1: पेन ऐसी एक इंडिकेशन है बॉडी की, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है, कि वो बता देता है आपको कि कुछ गलत हो रहा है। कभी कभी पेन थोड़े टाइम के लिए आता है, मतलब एक जब भी आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो तभी पेन आता है और इमीडिएटली जाता है। उसको भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि वो पेन कहाँ है, क्या वो जॉइंट में है, कितना है, एक्टिविटी के बाद चला जा रहा है। पर आप अगर वो एक्टिविटी वापस करो, समझो आप स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे हैं, तो अगर एक फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, एक 10 स्टेप्स आप चले ऊपर, घुटने में पेन हो, तो वो नॉर्मल नहीं है। अगर इमीडिएटली जाए तो ठीक है, एक दिन आप इग्नोर कर सकते हो। अगर 2 3 दिन लगातार आपको घुटने में पेन होता है 10 सीढ़ियां चलने में, तो आपको समझना चाहिए कि कुछ गलत हो रहा है, मे बी इट इज रॉन्ग। मैं एक स्टोरी बताती हूँ आपको।
0: जी
1: एक आदमी आया था शोल्डर इंजरी के साथ, तो मैंने पूछा क्या हुआ आपको, तो बोलता है कि 1 हफ्ते पहले मैं मेट्रो में जा रहा था, तो ऊपर पकड़ा हुआ था हाथ, तो थोड़ा जर्क लग गया, उसी टाइम समझा कि कुछ गलत है, पेन हो रहा है, तो मैंने एक हफ्ते के लिए नहीं किया, वो ऊपर नहीं लेके गया हाथ, और सब ठीक हो गया। मेरा

0: पेन चला गया। तो मैंने बोला फिर आप इधर क्यों हो, पेन तो चला गया। तो बोलता है नहीं, कल मैंने फिर से वही किया, मुझे लगा कि अगर मैंने नहीं किया तो शायद कभी नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने वही किया और फिर से पेन हो गया, तो मैं आपके पास आया हूं। तो ऐसा है कि हम सोचते हैं कि अगर हमने एक एक्टिविटी छोड़ दी तो वो पेन आएगा वापस या कुछ ठीक नहीं रहेगा। तो ये जो है बार बार पेन आना जाना, हम उसको टाइम देते हैं, जब तक हमें नहीं लगता है ये सीरियस है तो नहीं करते हैं। देखो, जो ओपन इंजरी होती है, अगर आपके हाथ में कोई कट आ जाए तो आप उसकी केयर लोगे, उसको ढक के रखोगे, ये देखोगे कि वो टच ना हो किधर, या आप उसको स्क्रैच नहीं करोगे, उसको केयर लोगे जब तक कि उसका कवरिंग ना आ जाए, वो भी गिर जाए, बहुत 15 दिन उसकी केयर लोगे। पर जो इनविजिबल इंजरीज होती है, जो अंदर होती है, उनको हम इग्नोर करते, हमें लगता है कि हमने अगर वो एक्टिविटी नहीं की तो ये अच्छा नहीं होगा, तो हम करते रहते हैं और उस वजह से वो बढ़ती है। वो एक है कि आपको रेस्ट उसी टाइम लेना चाहिए जब भी है, और अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग हैं जो केयर जो हम ले सकते हैं उसे बचाने के लिए। अगर आप बहुत स्पेसिफिक पूछोगे तो मैं बोलूंगी कि एक कॉमन है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी,
1: जी
0: अगर उस बारे में बात करनी है तो वो मैं बता सकती हूँ कि उसका केयर कैसा लेना है।
1: डॉक्टर साहब, यहां ये बात करेंगे लेकिन इस गाने की बात करेंगे तो यहां इस प्रोग्राम का पहला गाना मुझे लगता है कि बजाते हैं, और वो गाना है राही तू रुक नहीं जाना, मिलेगी तेरी मंजिल कहीं दूर गगन की छांव में। ये गाना इसलिए सुनते हैं क्योंकि जब भी कोई इंजरी होती है तो व्यक्ति रुक जाता है, अटक जाता है, उसके काम रुक जाते हैं। तो ये गाना सुनते हैं, फिर आगे की बातें करते हैं।

0: डॉक्टर, ये गाना सुना है हेमंत कुमार की बड़ी मीठी सी आवाज में, और ये गाना ये कहता है कि रुक मत जाना, लेकिन जब समस्याएं होती हैं, शारीरिक समस्याएं, तो इंसान को रुकना ही पड़ता है। आप कुछ बताने वाली थी।
1: मुझे बोलना है कि ये अभी सब दुनिया के 50 या

0: 60% लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी
1: जी
0: ये होता है, और फिर उसके लिए नी रिप्लेसमेंट भी होता है, बहुत कॉमन हो गया है।
1: महिलाओं में ज्यादा होता है?
0: महिलाओं में थोड़ा ज्यादा होता है, यस, उसके भी कारण हैं, बट ये एक्चुअली मैं प्रिवेंटेबल टोटली नहीं बोलूंगी, बट डिले तो जरूर हो सकता है, और अगर अर्ली केयर ले तो इसको शायद प्रिवेंट भी हो सकता है। मेनली ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो इधर डिसयूज के वजह से होता है, मतलब हम जॉइंट ज्यादा यूज नहीं करते, बहुत आराम की लाइफस्टाइल है, कुछ ज्यादा करना ही नहीं पड़ता है, वो एक है। दूसरा ये है कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, या तो बहुत सालों के लिए कुछ नहीं करके फिर इमीडिएटली एक्सरसाइज या कुछ बहुत ज्यादा कर लेते हैं। अभी देखो मैराथन भी अगर करना है तो फुल मैराथन करना है या हाफ मैराथन करना है, उसके लिए ट्रेनिंग ज्यादा करनी है, ये सब होता है, इसलिए नी पेन सेटल ही नहीं होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एज रिलेटेड बोला जाता है, बट उसका डाइट से बहुत ज्यादा संबंध है। ब्लड शुगर अगर बढ़े और बढ़ी रहे, सो डायबिटीज बेसिकली विल गिव यू अ कॉन्स्टेंट इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी विच विल अलाउ द जॉइंट टू डीजेनरेट, मतलब वो उसकी वेयर एंड टेयर हो सकता है। अर्ली साइंस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली ये जो वाटी होती है जो घुटने के आगे होती है,
1: कटोरी जैसा,
0: कटोरी, वो सबसे पहले उधर पेन होता है यूजुअली लोगों को। हमारे फ्रंट ऑफ द लेग बड़ा मसल है क्वाड्रिसेप्स करके, तो वो क्वाड्रिसेप्स नॉर्मल फंक्शन के लिए, मतलब ये जो कटोरी है सामने, पटेला जो हम बोलते हैं उसको, वो उसका स्मूथ फंक्शनिंग या स्मूथ मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम उसको थोड़ा सा मसाज करें या क्वाड्रिसेप्स को रिलैक्स करें, उसको स्ट्रेच करें, काफ मसल जो पीछे होता है लोअर लेग के पीछे, काफ मसल, उसको अगर हम स्ट्रेच करें रोज, तो सो क्वाड्रिसेप्स एंड पीछे का काफ मसल, ये दोनों अगर हम अच्छे से स्ट्रेच करें और उनको अगर हम लेंथ में अच्छा रखें, अगर आपको फ्लैट फुट है तो उसके लिए जब भी आप एक्सरसाइज करते हो या लॉन्ग वॉक्स करते हो, तो उसके लिए अगर आप अच्छे आर्च सपोर्ट वाले शूज वेयर करें, और वॉकिंग अगर आपको करना है तो आप थोड़ा उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। अभी ऐसा बोला जाता है कि वजन ज्यादा होने की वजह से घुटने पे दबाव आता है, पर वो ही एक कॉज नहीं है। फैट जो है बॉडी में वो भी अभी एक मेटाबॉलिक एंडोक्राइन ऑर्गन के जैसा फंक्शन करता है, तो उसके वजह से कोई ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो डिस्ट्रक्टिव हार्मोन्स होते हैं,
1: जो हड्डियों को तबाह करना शुरू करते हैं।
0: तो ये जो फैट बिल्डअप होता है वो भी कम रखना पड़ता है। सो शुगर, सॉल्ट, फैट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशनल फैट, बट जो बॉडी में फैट बढ़ता है वो अगर कम रखें, सब मसल्स लेग के स्ट्रेच रखें, एक्सरसाइज रोज का रोज सही मात्रा में करें, नॉट टू मच नॉट टू लेस, और कायम करें, मतलब ऑलमोस्ट एवरी डे आपका वॉकिंग, जो हमारी बॉडी एक्चुअली एक्सरसाइज के लिए ही बनी है, मूवमेंट के लिए बनी है, हम उसको मूवमेंट बंद कर देते हैं और फिर सडनली जब भी चालू करते हैं तो बहुत ज्यादा करते हैं। तो अगर ये सब आप करो तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस कैन बी प्रिवेंटेड और इट कैन बी डिलेड। अनफॉर्चुनेटली ये बात है कि जब तक हमें ये सब समझता है तभी ऑलरेडी लेट हो चुका होता है
1: जी।
0: ऑल प्रिवेंशन हैज टू बी स्टार्टेड इन चाइल्डहुड,
1: बिल्कुल
0: बचपन से ही आदतें डालनी चाहिए।
1: आपने ये जो पूरा ब्यौरा बताया है इससे एक बात ये समझ में आई कि रेगुलर सही एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब आप इन तमाम चीजों से बच सकते हैं। ये जो सही एक्सरसाइज वाला मुद्दा है, ये कितना इंपॉर्टेंट,
0: हिप्पोक्रेटस ने बोला था, जो हिप्पोक्रेटस इज द फादर ऑफ मेडिसिन, उन्होंने 400 BC में बोला है कि इफ वी कुड गिव एवरी इंडिविजुअल द करेक्ट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज एंड द करेक्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, That would be the safest way to ensure health.
1: कितनी बड़ी बात
0: और ये कितनी पुरानी बात है, हमारे भी संस्कृति में यही बात है
1: जी,
0: योगा में यही बात है,
1: संपूर्ण स्वास्थ्य की बात है। और उन्होंने क्या कहा कि सही मात्रा में एक्सरसाइज,
0: सही मात्रा
1: है ना, और
0: वही कैच फ्रेज है, नॉट टू लेस नॉट टू मच
1: जी। और आज आपने जब इस कार्यक्रम में बताया तो मुझे ये उम्मीद है कि लोग जो है वो अवेयर

0: ये इस बात के लिए कि एक्सरसाइज
1: एक्सरसाइज लाइफ में कभी बंद ही नहीं करनी चाहिए।
0: जी
1: जो हम चाइल्डहुड में जो थोड़ा रनिंग करते हैं या खेलते हैं वो कायम रखना चाहिए।
0: जी आपने एक बात कही थी कि महिलाओं में ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये ज्यादा,
1: ऑस्टियोआर्थराइटिस बोला था बट पोरोसिस भी,
0: हाँ दोनों चीजें
1: दो अलग हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज वेयर एंड टेयर जो घिस जाती है जॉइंट्स, और पोरोसिस है जो
0: हड्डियां
1: कमजोर होती हैं, पोरस हो जाती हैं।
0: तो महिलाओं पर अगर फोकस किया जाए तो आपकी क्या राय और सलाह होगी, क्योंकि अमूमन महिलाएं सारे परिवार का ख्याल रखने के चक्कर में खुद पर फोकस सबसे कम रखती आई हैं।
1: ऑस्टियोपोरोसिस एक्चुअली ज्यादा डेंजरस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का तो है आंसर, कर सकते हैं सर्जरी, ऑस्टियोपोरोसिस बहुत डेंजरस है क्योंकि वो रिवर्स होता है कभी कभी। अभी तो बहुत अच्छे इंजेक्शंस और सब आए हैं जो होता है रिवर्स, बट उसको टाइम लगता है, किसी में होता है किसी में नहीं। मेनली विमेन में क्या होता है, ईस्ट्रोजन जब भी कम हो जाता है मेनोपॉज के टाइम, तो उस वजह से कैल्शियम का डेफिशिएंसी होती है। विटामिन D3 एंड सम अदर मिनरल्स आर देयर, वो अगर नहीं हो तो फिर एब्जॉर्प्शन बोन में एब्जॉर्प्शन कैल्शियम का कम हो जाता है। हमारे नॉर्मल फूड में अगर हम केयरफुल नहीं हो तो एक्चुअली उतना कैल्शियम नहीं जाता है बॉडी में जो रिक्वायरमेंट होती है। मतलब पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन दे शुड हैव 1500 mg ऑफ कैल्शियम अ डे, वो नहीं होता है। एक्चुअली अगर दही खाएं या ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं ये सब, पर इतना हमारा बैलेंस न्यूट्रिशन अभी नहीं रहा है और इस वजह से भी होता है। दूसरा है कि बोन को ग्रो करने के लिए, वो एक तो है ना ये ऑस्टियोपोरोसिस, अगेन आई कॉल इट अ चाइल्डहुड प्रॉब्लम नॉट एडल्टहुड प्रॉब्लम,
0: उसका पता बड़े होने पर लगता है,
1: बट उसका अक्यूमुलेशन पहले 18 साल में ही होता है कैल्शियम, और वो बैंक के जैसा है, जितना भरो उतना बाद में घटा सकते हो आप। पहले भरना चाहिए, तो 18 तक भरना चाहिए, फिर उसको मेंटेन करना चाहिए 30-32 तक, और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा खर्चा कर सकते हैं पर उसको थोड़ा सा रिप्लेनिश भी करना चाहिए। तो अगर मेनोपॉज हो तो अभी हार्मोनल रिप्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। बोन स्ट्रांग रहने के लिए मसल की बहुत जरूरत है, मसल अगर बोन पे पुल नहीं करेगा तो बोन को स्टिमुलेट ही नहीं होगा वो कैल्शियम उठाने के लिए। तो एक्सरसाइज एक्सरसाइज न्यूट्रिशन मतलब कैल्शियम डाइट में, और फिर जो कमतरता है वो सप्लीमेंट से, मेंटेनिंग ऑल अदर मिनरल्स ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट एब्जॉर्प्शन के लिए, और एक्सरसाइज सो मसल्स का पुल रहे बोन्स पे, यही सब है। अगेन वेट मैटर्स, वेट ऑल्सो शुड बी अंडर कंट्रोल, बट मेनली एक्सरसाइज एंड फूड हैबिट्स एंड हार्मोन रिप्लेसमेंट व्हेनेवर रिक्वायर्ड। और अगर अर्ली डायग्नोसिस भी अभी बहुत है, मतलब आप BMD बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट रेगुलरली करो, 2-3 साल में जरूर करो, मेनोपॉज के बाद तो हमेशा करो 2-3 साल में। अगर अर्ली ऑस्टियोपीनिया मतलब एकदम थोड़ी सी पहली वाली कमजोरी अगर दिखे तो फिर बहुत अच्छे मेडिसिन हैं अभी रिवर्स करने के लिए, क्योंकि बेसिकली हमें ये चाहिए कि हम जब एज में बढ़ जाए तो गिर के फ्रैक्चर ना हो, या कभी कभी स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर्स भी होते हैं, अपने आप से ही फ्रैक्चर हो जाता है।
0: शरीर इतना मजबूत रहना चाहिए
1: चाहिए क्योंकि अभी एज एक्सपेक्टेंसी बहुत है, मोस्ट पीपल आर लिविंग,
0: हाँ लंबा स्वस्थ जीना,
1: लंबा जीना चाहिए और स्वस्थ भी जीना चाहिए, सिर्फ लंबा नहीं अच्छा जीवन चाहिए।
0: बिल्कुल सही है। आगे की बातें करते हैं, यहाँ एक गाना सुनते हैं, तो बताइए कि किस गाने की गुजारिश करना चाहती हैं आप?
1: गुजारिश की गुजारिश करूंगी।
0: क्या बात है, तो चलिए ये गाना सुना जाए यहाँ पर, तेरा जिक्र है,
1: तेरा जिक्र है, करेक्ट,
0: क्या गाना है,
1: बहुत ही सुंदर।

0: देखिए, गाना हमने सुना और ये गाना सुन के मन थोड़ा रिलैक्स हो गया। ये जो जीवन की भागदौड़ है, इस भागदौड़ में हम सामान्य इंसान और स्पोर्ट्समैन अपने शरीर को कितना ज्यादा ओवरलोड करते हैं, कितना ज्यादा स्ट्रेस करते हैं कि उनको फिजियोथेरेपिस्ट की शरण में जाना पड़ता है।
1: बाकी फिर सेम हो गया कि हम बहुत बॉडी को अब्यूज ही करते हैं,
0: जी
1: एक तरफ से उसे बहुत आराम देते हैं, जैसे कि बॉडी हमारा बना है एक्टिविटी के लिए, मूवमेंट इज द नेसेसिटी फॉर लाइफ। एक्चुअली ऐसा है कि हमारा ये जो फिजिकल बॉडी है वो समझो हार्डवेयर है अपना, और उसके पीछे एक फिजियोलॉजी है, मतलब जो यू कैन से ब्यूरोक्रेसी है कि उसको चलाना कैसे है, और उसके ऊपर बैठा है सॉफ्टवेयर विच इज आर ब्रेन। तो ये तीनों मिलके बॉडी चलती है पूरे लाइफ, और उसको चलाने के लिए एक तरीका है जो इनबिल्ट है। ये सब बोलते हैं कि बॉडी इज अ मशीन, आई मीन ये मशीन से भी बेहतर है, बट ये है ऑल सेड एंड डन समथिंग लाइक अ मशीन। उसको चलाने का एक तरीका है, और उस तरीके का अंडरलाइंग करंट पूरा एक्टिविटी है।
0: बिल्कुल,
1: अगर
0: जिस
1: वो
0: पर आप सबसे ज्यादा जोर दे रही
1: वो
0: हैं।
1: ही है जो सब चलाता है,
0: जी
1: अगर एक्टिविटी नहीं है तो सब जो हार्मोन सिस्टम है या नर्वस सिस्टम है या मस्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो भी सब सिस्टम्स इवन कार्डियक, सब कुछ अलग तरह से चलता है, और उसमें थोड़ी सी खराबियां आती हैं धीरे धीरे। देयर इज अनदर प्रिंसिपल कि जो बॉडी है अपनी वो एक इक्विलिब्रियम रखती है हमेशा, और जब भी हम एक्स्ट्रा कुछ करते हैं, अगर एक्सरसाइज करते हैं, आपको मालूम है हार्ट रेट बढ़ेगी, थोड़ा स्वेटिंग होगा, बॉडी हीट बढ़ेगी, दैट मीन्स वो इक्विलिब्रियम बिगड़ गया। फिर उसको वापस लाना है, वो होम्योस्टेसिस होता है, मतलब जो नॉर्मल स्टेट है उस पे वापस लाना उसको, वो बॉडी के इनबिल्ट ही है, वो
0: इसीलिए
1: मैकेनिज्म
0: एक्सरसाइज के
1: भी,
0: बाद रिलैक्सेशन।
1: रिलैक्सेशन की जरूरत है, तभी सब चलता है।
0: जी
1: एक ये करना है, एक वो करना है, उसके लिए हॉर्मोन्स की जरूरत होती है। थोड़े हॉर्मोन्स ऐसे हैं जो एक्सरसाइज को अलाउ करते हैं, और थोड़े

0: हार्मोन्स ऐसे हैं जो रिजुविनेशन को अलाउ करते हैं, वो वापस लाने का. तो ये दोनों चीजें जरूरी है कि आप सही तरह से एक्टिव रहो, सही तरह से रिलैक्स करो, इनफ आराम करो, स्लीप. एंड ये भी हमें याद रखना है कि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वो होम्योस्टेसिस एक जगह से हिलते रहता है दूसरी जगह पे. मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा आप वही स्थिति पे वापस आओगे. अगर आप 5 साल एज में बढ़ गए तो आपका होम्योस्टेसिस अलग जगह पे रहेगा.
1: तो वो एक्टिविटी चेंज हो जाएगी.
0: अभी हम ऐसे हो गया है कि सब सोचते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर. एक्चुअली है नहीं, फिजियोलॉजिकली एज इज समथिंग. उसको थोड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमारी एक्टिविटी थोड़ी चेंज करनी चाहिए. एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट, बट हाउ मच यू डू इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. तो अगर ये हम सब मेंटेन करें तो हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी फिजियोथेरेपिस्ट की.
1: तो
0: अगर हम नियम से चले कि क्या खाना है, कितना एक्टिव रहना है और कितना आराम करना है.
1: ये बड़ा मुश्किल लगता है कि फिजियोथेरेपिस्ट
0: मुश्किल है
1: ना पड़े.
0: नहीं, मुश्किल ही है, इसीलिए हमारी जरूरत पड़ती है. और कोई पूछेगा अगर ये इतना सिंपल है तो फिर आपकी जरूरत क्यों है
1: जी,
0: तो ये बताने के लिए हमारी जरूरत है.
1: क्या बात.
0: क्योंकि अदरवाइज ये समझाने के लिए मुझे तो कंसल्टेशन में आधा टाइम मैं आई थिंक काउंसलिंग ही करती हूँ.
1: जी जी बिल्कुल.
0: बाकी के सेशन में हम लोग जो करना है ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज वो करते हैं. स्पेशली जो कंसल्टेशन सेशन है फर्स्ट वाला, उसमें तो ऑलमोस्ट फुल सेशन, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन ही होता है.
1: लोग बहुत सारे सवाल लेकर आते हैं.
0: एक्चुअली जरूरत इसलिए है क्योंकि हम नहीं देखभाल कर रहे हैं बॉडी की. या तो रेस्ट ही करते रहते हैं, कभी फिर डॉक्टर बोलता है कि ब्लड शुगर बढ़ गया है, ये बढ़ गया है, अभी एक्सरसाइज करो, तो सीधा जाके मैराथन के लिए एनरोल करते हैं या टेनिस क्लास चालू करते हैं.
1: जो दोनों एक्सट्रीम है.
0: एक्सट्रीम है.
1: एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आप क्या क्या करती हैं लोगों को समझाने के बाद वाली जो प्रोसेस है, उसमें कितनी एक्सरसाइज है, कितनी मशीनों की मदद है?
0: मेरा थोड़ा अलग से सिस्टम है मेरे क्लिनिक में. मतलब जो अभी आई थिंक मेनी पीपल आर डूइंग, बट मेरा ग्रेजुएशन ही बहुत पहले, लाइक आई हैव ग्रेजुएट 1989 और तभी तो. लेट मी टेक यू टू हिस्ट्री ऑफ फिजियोथेरेपी. फिजियोथेरेपी इंडिया में आई है 100 साल अभी हुए नहीं है. इट इज अबाउट 75-76 years. सो वेन आई ज्वाइंट 84 में मैंने ज्वाइन किया, 89 में मेरा खत्म हुआ. तभी फिजियोथेरेपी बहुत नई थी और ये जो अभी सर्जरीज हैं वो भी तभी नहीं थे. मतलब जो अभी आर्थ्रोस्कोपिक, जैसे मैंने ACL बोला, रोटेटर क्रफ, जो छोटी इंसिजन से सर्जरी होती है, वो 1985 या कुछ से चालू हुई है. मतलब मैं तभी थी कॉलेज में, सर्जरीज उतने तभी नहीं थे. रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, ये भी 1980s में आई है, वो भी एकदम नई नई थी तभी. अभी जो जितनी सर्जरीज होते हैं और जितने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन होता है, मतलब जब भी मैं कॉलेज में थी तभी अगर कोई साइक्लिस्ट रास्ते पे दिखा, मतलब दिखते थे तभी बहुत, तो वो एक्सरसाइज के लिए साइकिलिंग नहीं कर रहा था,
1: वो
0: एक्चुअली जरूरत के लिए कर रहा था. जो अभी बढ़ गया है ये सब, इसके लिए ये सब यू नो आए हैं. तो बट मेरा थॉट प्रोसेस तभी से ऐसे ही था कि जो इंजरी और पेन और सब है, और दूसरी साइड है एक्सरसाइज और सब, तो उसके बीच वाला ब्रिज हम लोग बन सकते हैं. तो उसी तरह से मेरा क्लिनिक चलता है. पहले पेन मैनेजमेंट होता है. अगर आप आए, समझो आपको पीठ में पेन है, तो फर्स्ट स्टार्ट होता है पेन मैनेजमेंट से. मेरे ख्याल से पेन बहुत जल्दी मैनेज हो जाना चाहिए
1: जी.
0: अगर वो अक्यूट पेन है, अभी आया है, तो उसको मैनेज कर सकते हैं बहुत जल्दी से. अगर पेन मैनेज जब भी होता है तो पहले 2-3 दिनों के अंदर ही हम थोड़े एक्सरसाइज चालू करते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए. और जैसे समझो 1 घंटे का सेशन है, तो पहले मे बी 45 मिनट्स उसमें से पेन मैनेजमेंट में जाएंगे. फिर धीरे धीरे वो कम होके पेन का, समझो लास्ट 10 मिनट ही पेन मैनेजमेंट करेंगे, ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे. क्योंकि एक्सरसाइज, वी कॉल इट रिहैबिलिटेशन, मतलब मेकिंग दैट पर्सन फंक्शनल अगेन, जो भी फंक्शन
1: जी.
0: और वो जो हमारे एक्सरसाइज है वो ऐसे डिजाइन होते हैं, एज अप्रोप्रिएट, फंक्शन अप्रोप्रिएट. मतलब आप कुर्सी में बैठ के कंप्यूटर का काम करने वाले हो, या आप कोई मेडिकल रेप, या आप कोई सेल्स के डिपार्टमेंट हो जहां आपको ज्यादा चलना पड़ता है, या आप हाउसवाइफ हो जहां आप क्लीनिंग करोगे या कुछ भी करोगे, या आप स्पोर्ट्समैन हो, या इवन वीकेंड स्पोर्ट्समैन हो. अगर आप ऑफिस में काम करते हो बट वीकेंड में आप स्पोर्ट्स खेलते हो, तो आपको उस तरह से एक्सरसाइज कराना चाहिए जो एज अप्रोप्रिएट, फंक्शन अप्रोप्रिएट एंड स्यूटिंग टू योर नीड्स. सो इंडिविजुअलाइज्ड होता है.
1: बिल्कुल,

0: तो ये प्रोसेस होती है, अगर सर्जिकल है, पोस्ट सर्जिकल है, तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, फिर वो प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है।
1: जी, तो मरीजों को ये बताइए कि कितना ज्यादा मायने रखती है फिजियोथेरेपी, क्योंकि एक चलन जो अमूमन हमारे आसपास देखा जाता है कि जब तक आराम मिला, तकलीफ थोड़ी कम हुई, तो छुट्टी मारो, कौन जाएगा फिजियोथेरेपिस्ट
0: हाँ,
1: के
0: बट
1: पास।
0: अगर मैंने देखा है कि आप जितना बात करते हो ना, जितना समझाते हो और एक्सप्लेन करते हो पेशेंट को, उतना उनका इंटरेस्ट बढ़ता है।
1: जी
0: जरूरी तो है, जैसे मैं बोलती हूँ, पेन मैनेज हो जाता है, पेन के लिए इतनी तकलीफ नहीं करनी पड़ती है। एंड लाइक यू करेक्टली सेड, थोड़े दिनों में पेन चला जाता है, फिजियोथेरेपी का वर्क इज ओवर एक्चुअली। बट जो प्रिवेंटिव है कि नेक्स्ट एपिसोड नहीं होना चाहिए, या ये बार बार नहीं होना चाहिए, या आपको समझना चाहिए कि आपकी बॉडी क्या कर सकती है, क्या नहीं करना चाहिए। एंड अगेन लाइक आई सेड, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप एक्सरसाइज करो फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग। जो बॉडी का नॉर्मल फंक्शन है वो मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट। तो वो कैसे करना है वो सीखने के लिए हम ज्यादा काम करते हैं, सिखाने के लिए, एंड टू क्रिएट इंटरेस्ट इन यू फॉर एक्सरसाइज। उसके लिए बात करना बहुत जरूरी है। उसका जितना आप इंपॉर्टेंस समझाओगे, पेशेंट का इंटरेस्ट उतना ही बढ़ेगा, और उनके लैंग्वेज में उन्हें जैसे समझे वैसे एक्सप्लेन करना चाहिए।
1: जी
0: जैसे मैंने बोला, इंजरी कहाँ है, वो आपको कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है, क्यों करना है प्रोटेक्ट। सो आई कॉल इट एम्पावरिंग द पेशेंट। अगर आप एम्पावर करोगे तो वो खुद से जान जाएंगे।
1: और
0: और मेरा अदर थिंग इज कि उनको एम्पावर इस तरह से करो कि वो अपने आप से एक्सरसाइज कर सके। हमारे पास आने की जरूरत नहीं है ज्यादा,
1: जी,
0: बट ऑफकोर्स लर्निंग प्रोसेस के लिए 1 महीना या 2 महीना जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज ऐसी चीज है कि आपने अगर थोड़े अलग तरह से की तो वो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकती है। सो वो सिखाने में थोड़ा टाइम जाता है, पर उसके बाद बार बार आने की जरूरत नहीं है।
1: इसका मतलब यह है कि अगर आपको जरूरत है फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की, तो पूरी शिद्दत के साथ जाएं और जो कुछ सिखाया जा रहा है उसको सीख के प्रिस्क्राइब टाइम तक पूरा करें।
0: करें और करते रहे उसके बाद,
1: हाँ,
0: ये
1: करते
0: लाइफ
1: रहें
0: लॉन्ग
1: ये
0: है,
1: भी।
0: लाइफ लॉन्ग है। जैसे मैं
1: हाँ
0: बोलती हूँ डाइट एंड एक्सरसाइज, उसको टाइम मत रखो। ऐसा
1: जी
0: मत बोलो कि मैं 2 महीने डाइट पे हूँ, मैं 2 महीने एक्सरसाइज के लिए, फिजियोथेरेपी के लिए जाती हूँ या जाता हूँ। लाइफ लॉन्ग है, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, बट एक्सरसाइज लाइफ लॉन्ग है।
1: जी अब हम उन बातों पर आते हैं जहां आपने कुछ बहुत ही मशहूर हस्तियों का इलाज किया है, बीमारियों से, चोटों से, तो उससे जुड़े कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए।
0: मैंने फिजियोथेरेपी क्यों ज्वाइन किया, तभी तो कुछ उसका यही नहीं था, मतलब नोबडी न्यू कि फिजियोथेरेपी क्या है।
1: जी
0: मुझे मेडिसिन करना था, MBBS, और उसके बाद MD या MS नहीं मिला, 1-2 मार्क्स से छूट गया।
1: अरे रे,
0: तो फिर मैं फिजियोथेरेपी में आई, और मुझे तभी कुछ मालूम नहीं था क्या है ये।
1: हाँ
0: जैसे मैंने बोला, मैंने ज्वाइन किया KEM हॉस्पिटल, इट वॉज द फर्स्ट हॉस्पिटल इन मुंबई विच ऑफर्ड, एंड इन 84, जैसे मैंने अभी बोला, मैंने ये डिसाइड किया 1-2 साल के बाद, समझने के बाद कि ये क्या है, मैंने ये डिसाइड किया कि ये जो गैप है, तभी स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी करके कुछ नहीं था, स्पोर्ट्स साइंस ही नहीं था, 84-85 में कुछ नहीं था। फिर भी मैंने ऐसे सोचा कि ये जो सब्जेक्ट्स है वो इतने अलाइंड हैं इस चीज के लिए कि जो लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं या स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, तो उन्हें हम ब्रिज बन सकते हैं उनके पेन और इंजरी और परफॉर्मेंस के बीच में। तो उस तरह से मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, क्योंकि था नहीं एक कोर्स, तो मैंने योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया, टेपिंग, स्पोर्ट्स टेपिंग, बहुत सारे कोर्सेज किए मैंने, एक्चुअली एक्सरसाइज के बहुत सारे किए, एडवांस्ड वेट ट्रेनिंग, कोर स्टेबिलिटी ऑन रीबॉक बॉल, एंड बहुत सारे किए। तो मैं प्रिपेयर्ड थी कि कभी ऐसी जरूरत पड़े, और मैंने मेरा क्लिनिक भी वैसे ही डिजाइन किया कि ज्यादा एक्सरसाइज बेस्ड एंड लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन। और आई डोंट नो हाउ लक के वजह से, मेरे आसपास के लोगों के और ऑफकोर्स मेरे काम के वजह से भी, थोड़े लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली एक्टर्स जिनको ऐसे बॉडी बनानी है किसी रोल के लिए, और जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो अचीव करने के लिए, वो लोग और स्पोर्ट्समैन थोड़े थोड़े मेरे पास आने लगे। मैं ये बोलना चाहूंगी कि रेसलर्स, जो बहुत पुअर रेसलर्स हैं, उनके साथ मैंने बहुत पहले से काम किया है।
1: अरे गजब।
0: दंगल बहुत बाद में आई, उसके मच बिफोर दैट मैं 2002 से लोकल महाराष्ट्र के और नेशनल लेवल रेसलर्स के साथ मैंने फ्री में काम किया है। मेरे क्लिनिक में आते थे,

0: एक्चुअली नाम आपने पूछा है, मैं नाम थोड़े बड़े वाले बोल सकती हूँ, बट ये लोग जो हैं उनके साथ मैंने इतना काम किया है, और इवन क्रिकेटर्स जो लोअर लेवल के अभी भी आते हैं, अभी भी एक था जो रोटेटर कफ इंजुरी था उसको, ही इज ओनली 20-21, अभी कोई टीम में नहीं है, जिसे एक जरूरत है उनको मैं देती हूँ ट्रीटमेंट. तो बड़े नाम बोलो तो एक तो सचिन तेंदुलकर,
1: बापरे.
0: हाँ, आई हैव बीन ट्रीटिंग हिम फ्रॉम 2002 टू 2012, मतलब क्वाइट अ लॉट, टेन ईयर्स. जब भी, बिकॉज स्पोर्ट्समैन का ये है कि वो टीम के साथ ट्रैवल करते हैं तो उनका थेरेपिस्ट उधर होता है
1: जी.
0: मैं कभी उसमें नहीं थी, बट जब भी इंजोर होते हैं तो घर पे होते हैं, तो फिर उन्हें कोई और लगता है. और अगर एक पे भरोसा आ जाए तो फिर वही होता है. तो अनऑफिशियली आई वॉज नॉट विद बीसीसीआई, बट बीसीसीआई ऑलवेज पेड मी फॉर सचिन्स ट्रीटमेंट्स. आई हैव ट्रीटेड सचिन फ्रॉम बैक इंजुरीज, मेनली द टेनिस एल्बो,
1: जो बहुत ही मशहूर
0: टेनिस एल्बो एंड शोल्डर. या सो या ही इज बीन अ प्लेजर, और इतना हम्बल कोई वो लेवल पे हो ही नहीं सकता है.
1: क्या
0: हो ही नहीं सकता है कोई भी नहीं. मतलब एक बार जब भी मैं बहुत, मतलब आई थिंक नाउ आई एम प्रिटी एडवांस्ड इन माई फील्ड, बट एट दैट टाइम आई वॉज अ नो बडी एंड ही वॉज एट द टॉप. तभी भी एक बार मुझे याद है, मैं उसके घर में रुकी हुई थी, कोई अपॉइंटमेंट था उसके साथ, और उसका मुझे मैसेज आया कि मैं 5 मिनट लेट होने वाला हूं, आई एम वेरी सॉरी, और एक्चुअली इट वुडंट हैव मैटर्ड टू मी. बट वो इतना टाइम का पंक्चुअल दैट इवन ही थॉट कि आई शुड मैसेज.
1: वाह,
0: बहुत ही सहम्बल आदमी है. एंड प्रूफ इज दैट ही प्लेड फॉर दोज 10 ईयर्स दैट वॉज ट्रेनिंग, ही प्लेड वेरी वेल.
1: क्या बात है.
0: no, मुझे ये बोलना था कि ये प्रोफेशन मैंने चुना नॉट बाय चॉइस बट बाय चांस, बट इसमें से प्लेजर मुझे बहुत मिला है. ऋतिक रोशन, आमिर खान, सचिन तेंदुलकर, शिल्पा शेट्टी, बहुत बहुत नाम है, बड़े वाले भी और छोटे विक्ट्रीज भी बहुत हैं.
1: क्या बात है. तो जब बड़े स्टार्स को ट्रीट करती हैं तो कैसा वो क्या फीलिंग
0: मुझे
1: होती
0: कुछ
1: है?
0: अलग नहीं लगता है. नहीं, सच नहीं लगता है. इट्स अ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स अ सेम. आई रियली डोंट फील, बट इट फील्स गुड. कभी शिल्पा शेट्टी डांस करके बताएं कि मुझे ये मूव करना है, इधर दुख रहा है. कभी सचिन तेंदुलकर 10 स्ट्रोक मार के दिखाएं कि ये बैटिंग में इधर दुखता है, ये ऐसा दुखता है. कभी ऋतिक रोशन पुशअप्स करके दिखाएं
1: कि ये प्रॉब्लम हो रही है.
0: तो अच्छा लगता है. दीज आर द पर्क्स, साइड पर्क्स.
1: ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स.
0: बट नो, इन रियलिटी नथिंग इज डिफरेंट.
1: जी, एवरीबॉडी is... चूंकि इन तमाम लोगों की हो रही है जो मशहूर लोग हैं जिन्होंने आपसे सलाह.
0: पर मशहूर लोगों से बहुत ज्यादा मैंने रेगुलर लोगों से और मुझे तो प्लेजर उधर से ही मिलता है. बिकॉज वो उनके प्रॉब्लम्स कोई सॉल्व नहीं कर सकता है. यू नो, लाइक दीज पीपल आई नो, मैंने नहीं किया तो कोई और करता था. मुझे, आई एम एक्चुअली लकी दैट आई केम इन कॉन्टेक्ट विद देम. बट ऑल दी अदर्स, सो मेनी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ओवर 37-38 ईयर्स, वही प्लेजर देता है.
1: क्या बात है. क्योंकि जिक्र हुआ है ऋतिक रोशन और आमिर खान का, तो इन दोनों में से किसका गाना सुनवाया जाए?
0: अभी आमिर खान का सुनाइए.
1: ठीक है, क्योंकि बात दंगल की हो रही है,
0: दंगल,
1: तो दंगल का,
0: ये का
1: गाना सुनवाते हैं. नैना.

0: डॉक्टर साहब, इतनी सारी बातें स्पोर्ट्स इंजरी की और नॉर्मल इंजरी की हुई, और आपने एक बात पर बहुत जोर दिया कि एक बहुत लंबा समय ऐसा था जब फिजियोथेरेपी पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। आज ऐसा समय है जब फिजियोथेरेपी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गई है, पर फिर भी क्या आपको लगता है कि एक आम इंसान फिजियोथेरेपी को लेके थोड़ा कम सीरियस है? इस तरह की चीजें आपने देखी हैं?
1: मैं ये कहूंगी कि बहुत लोगों को ये एक्सपेंसिव हॉबी लगती है।
0: एक्सपेंसिव हॉबी?
1: क्योंकि पेन इज अ रियल थिंग
0: जी,
1: बट उसके बाद मुंबई जैसे शहर में रह के कम्यूटिंग इज सो डिफिकल्ट, टाइमिंग्स आर डिफिकल्ट, उसमें आना है, रोज आना है या हफ्ते में 3 दिन आना है, फीस भरनी है, ये सब थोड़ा मुश्किल लगता है आम आदमी के लिए, इसलिए बोलूंगी मैं। अदरवाइज मुझे तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि जो हमारे पास आते हैं वो क्वाइट अ फ्यू टाइम्स आते ही रहते हैं
0: जी।
1: महत्व अगर ठीक से समझे तो वो आते हैं, बट फिर भी ये मैं बड़े शहर की बात कर रही हूँ
0: जी,
1: मुंबई की बात कर रही हूँ, मे बी मुंबई, बैंगलोर, कैलकटा, पुणे, ये सब, और इवन मिड लेवल सिटीज, ये सब आई थिंक फिजियोथेरेपी, आई थिंक पीपल डू अंडरस्टैंड, आते हैं, करते हैं, पर छोटे गांवों में और अभी तक नहीं है उतना, आई थिंक उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं मालूम है लोगों को
0: जी।
1: फिजियोथेरेपिस्ट का पॉपुलेशन भी वो जगहों पे कम होगा
0: जी, तो
1: सब इधर ही बड़े शहरों में भरे पड़े हैं।
0: ऐसे शहरों में जहां लोग हमें सुन रहे हैं, छोटे छोटे शहर, लोगों को छोटी छोटी फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, और जो जिनको फिजियोथेरेपी कहा जाता है और जो इस बात को सीरियसली नहीं लेते हैं, एज एन एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट आप क्या सलाह देना चाहेंगी जो बहुत ही कॉमन लोग हैं, छोटे शहरों के लोग हैं, और बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, डॉक्टर ने कहा कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, ये प्रोटोकॉल आपको करना है।
1: मैं उसको सलाह दे कि अगर उनके पास कोई हो उधर तो ही तो फायदा है, बिकॉज नहीं तो, और आप बोल रहे हैं छोटे छोटी चीजें, वो है एक छोटी चीजों की थोड़ी बातें करी अभी, बट बड़ी चीजें भी होती है, लाइक पैरालिसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स
0: जी,
1: हेमिप्लीजिया,
0: बल्कि सर्जरी के बाद भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत सीरियस मैटर है,
1: बहुत है, अगर टाइमली फिजियोथेरेपी नहीं किया तो फिर वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिफॉर्मिटीज आती हैं पैरों में या हाथों में, तो फिजियोथेरेपी एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं लोगों को कुछ सलाह दे नहीं सकती अगर उनके पास नहीं है फिजियोथेरेपिस्ट, बट अगर है तो सच में लाइफ बदल जाती है, बिकॉज ये जो सर्जरीज हैं वो काफी नहीं है, सर्जरी इज इंपॉर्टेंट समटाइम्स, बट उसके बाद वाला फिजियोथेरेपी नहीं किया तो फंक्शन नहीं आता है, मतलब जो हमें चाहिए वो एंड रिजल्ट फंक्शन वो ही नहीं आता,
0: इसीलिए इसको रिहैबिलिटेशन कहते हैं।
1: यस, इट इज रिहैबिलिटेशन एंड इट इज एक्सट्रीम।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। आरंभ होती है आज की हमारी दूसरी यानी सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी।

स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी में। आज मैं हूं आपका रेडियो मित्र भवेश। स्वीकार करें मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम में हम आपको सबसे पहले सुनवाते हैं अनुपमा मिश्रा के स्वर में ये महेश वाणी।

ये महेशवाणी अभी आप सुन रहे थे अनुपमा मिश्रा के स्वर में। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति पार्वती मिश्रा के स्वर में ये नचाड़ी।

ये प्रस्तुति अभी श्रोता सुन रहे थे अरविंद कुमार झा के स्वर में। आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी।

शारदा सिन्हा के गाए इस विद्यापति गीत के बाद कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति प्रेरणा कुमारी के स्वर में ये नचारी।

श्रोता अभी सुन रहे थे बोध नारायण सिंह के स्वर में ये नचारी। इसी के साथ घड़ी की सुई अब इशारा करते हुए कि कार्यक्रम युवावाणी के आज के इस अंक से आप श्रोताओं से विदा लेने का वक्त हो चुका है, तो दीजिए अनुमति अपने रेडियो मित्र भवेश को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: विज्ञापन से पहले आप सुन रहे थे विक्की विद्या का।

0: वो वाला वीडियो, फिल्म का ये गाना सुनिधि चौहान की आवाज में। इरशाद कामिल के लिखे इस गाने को संगीत दिया था संदेश सांडिल्य ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: विज्ञापन से पूर्व आप सुन रहे थे शहजादा फिल्म का गाना नीरज श्रीधर की आवाज में। आशीष पंडित के लिखे इस गाने को संगीत दिया था अभिजीत वैगानी ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। हमारे कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: विज्ञापन से पहले आप सुन रहे थे अल्तमश फरीदी को फिल्म मिशन मजनू में। शब्बीर अहमद के लिखे इस गाने को संगीत दिया था तनिष्क बागची ने। आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।
0: फाइनेंशियल कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

सुनिधि चौहान और देवनागी को अभी आपने सुना फिल्म छत्रपति में। फिल्म संगीत आप पुनः सुनेंगे शाम 7:50 पर। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: की सप्तधारा से कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में योजनाएं बनाकर उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके इस लक्ष्य को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के भी निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा गया है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लब कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि वे पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वे विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पुणे और उसके आसपास लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़क नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इससे शहर को भीड़भाड़ और प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकेगा। लावले स्थित सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आयोजित बुनियादी ढांचा विकास विकसित भारत की राह विषय पर श्री गडकरी ने कहा कि पुणे शिरूर हडपसर यावत तलेगांव चाकन शिकरापुर और शिरूर संभाजीनगर सहित कई प्रमुख परियोजनाएं चल रही हैं। यूपीआई से संचालित पोस ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सेवा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोगों को कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजी जा सकती है। ईरान ने कहा है कि उसने ओमान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही को व्यवस्थित करने की योजना पर सहमति बना ली है। दोनों देश अब इससे संबंधित अंतिम संयुक्त बयान की तैयारी कर रहे हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य को वाणिज्यिक जहाजों के लिए पूरी तरह फिर से खोलना अमरीका की प्रमुख मांग रही है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो गई। पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु आयरलैंड की सोफिया नोबल को 21-7, 21-11 से हराकर दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। गॉल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। अब श्रोताओं, आपको जानकारी देते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

अब से कुछ देर बाद यानी संध्या 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीत। इसके तुरंत बाद संध्या 6:25 पर समय होगा मैथिली संवाद का।

सांध्यकालीन दैनिक कार्यक्रम गाम घर, इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे अनुभव के चश्मा सॉन्ग। प्रसारण समय होगा संध्या 6:30 पर। खेती गृहस्थी, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:00।

कुछ फिल्मी गाने हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:50 पर। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

रात 8:15 पर आप सुनेंगे मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार पब्लिक स्पीक। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 से, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी आप सुनेंगे आज रात 10 बजे से। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे विद्यापति गीत राम कुमार मल्लिक, प्रेम कुमार मल्लिक और समित कुमार मल्लिक के स्वर में। आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं विद्यापति गीतों का हमारा कार्यक्रम।

ये विद्यापति गीत अभी आप सुन रहे थे कुंज बिहारी मिश्र के स्वर में। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आप सुन रहे हैं हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम। कुछ ही देर में आप सुनेंगे मैथिली संवाद।

आकाशवाणी दरभंगा आ एफएम रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी रजनीकांत चौधरी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आइ नालंदा विश्वविद्यालयक भ्रमण कयलनि। ओ विश्वविद्यालयक सभागार मे आयोजित एक कार्यक्रम मे राज्यभर सँ आयल करीब 500 बूथ स्तरक अधिकारी लोकनि संग संवाद सेहो कयलनि। एहि क्रम मे श्री कुमार निर्वाचन प्रक्रिया के आओर बेसी प्रभावी, पारदर्शी, सुगम आ नागरिक केन्द्रित बनाबय सँ संबंधित विषय सभ पर चर्चा कयलनि। एहि सँ पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त विश्वविद्यालय परिसर भ्रमण कयलनि। ओ विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी आ संकाय सदस्य लोकनि सँ सेहो संवाद कयलनि। हमर संवाददाता जनौलनि अछि जे मुख्य चुनाव आयुक्त नालंदाक खंडहरक भ्रमण कऽ पुरातात्विक अवशेषक अवलोकन सेहो कयलनि। मुख्य चुनाव आयुक्त आइ पटना के ज्ञान भवन मे आयोजित कार्यक्रम मे निर्वाचन साक्षरता क्लब ELC 2.0 के शुरूआत कयलनि। ई पहल निर्वाचन साक्षरता, डिजिटल सहभागिता आ लोकतंत्र मे नागरिकक सार्थक भागीदारी के नव गति देबाक दिस एक महत्वपूर्ण डेग मानल जा रहल अछि। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणीक नव सूची जारी कऽ देलक अछि। एहि सूची मे वसुंधरा राजे सिंधिया समेत 13 उपाध्यक्ष बनाओल गेल छथि। पार्टी 8 महासचिव, 16 राष्ट्रीय सचिव आ 7 गोटे के पार्टीक विभिन्न मोर्चाक नव जिम्मेदारी देलक अछि। राष्ट्रीय कार्यकारिणी मे बिहार सँ सिद्धार्थ शंभू के राष्ट्रीय सचिव, ऋतुराज सिन्हा के पार्टीक विभिन्न इकाईक सह समन्वयक आ शिवेश कुमार राम के अनुसूचित जाति मोर्चाक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओल गेल अछि। पटनाक बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र सँ नवनिर्वाचित विधायक जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर आइ विधानसभाक सदस्यताक शपथ लेलनि। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार अपन कार्यालय कक्ष मे हुनका सदनक सदस्यताक शपथ दियौलनि। एहि अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव, जनसुराजक प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती आ आनो लोक उपस्थित छलाह। आइ सावनक तेसर सोमवारीक अवसर पर मिथिलांचल समेत प्रदेशक विभिन्न शिवालय आ प्रमुख मंदिर सभ मे भोरे सँ श्रद्धालु लोकनिक पाँती लागल रहल। सुल्तानगंजक अजगैबीनाथ, सोनपुरक हरिहरनाथ, मुजफ्फरपुरक गरीबनाथ, रोहतासक गुप्ताधाम आ पटनाक बैकटपुर सहित प्रमुख शिव मंदिर सभ मे जलाभिषेक करबाक लेल लोकक भीड़ उमरि पड़ल। मिथिलांचलक प्रसिद्ध कुशेश्वर स्थान, कपिलेश्वर स्थान, हलेश्वर स्थान, सिंहेश्वर स्थान, खुदनेश्वर स्थान, थानेश्वर स्थान तथा पीताम्बरनाथ महादेव स्थान समेत आनो आन मंदिर आ शिवालय मे मंत्रोच्चारक संग देवाधिदेव के पूजन कयल गेल। आइ नागपंचमी सेहो अछि, जाहि कारणे आइ महादेव पूजाक विशेष महत्व मानल गेल अछि। कतेको श्रद्धालु अपन घर मे सेहो रुद्राभिषेक आ महादेव पूजाक अनुष्ठान करबौलनि। तेसर सोमवारी पर लखीसराय जिलाक अशोकधाम मंदिर पहुंचबाक क्रम मे भक्तर मचला सँ 7 महिला श्रद्धालुक मृत्यु भऽ गेलनि, जखनकि 25 श्रद्धालु घायल छथि। हमर संवाददाता जनौलनि अछि जे ई घटना अशोकधाम स्टेशन सँ मंदिर जायवला बाट मे भेल। प्राप्त जनतबक अनुसार बिजलीक खाम खसबाक आ ओहि मे करंट पसरबाक अफवाह सँ श्रद्धालु लोकनिक मध्य भगदड़ मचि गेल, जाहि सँ ई घटना भेल। गंभीर रूप सँ घायल लोकनि के नीक इलाज लेल पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कयल गेल अछि। ओतहि आन घायलक इलाज सदर अस्पताल मे चलि रहल अछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एहि दुर्घटना मे मृतक सभक प्रति गंभीर शोक संवेदना व्यक्त कयलनि। श्री मोदी सोशल मीडिया पोस्ट मे घायल लोकनि के शीघ्र स्वस्थ हेबाक कामना कयलनि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सेहो अशोकधाम मंदिर मे भेल भक्तरक घटना पर दुख व्यक्त करैत मृतकक निकटतम वर्जन लोकनि के 4-4 लाख टाका देबाक निर्देश देलनि। केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा आ आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा एहि घटना पर दुख व्यक्त कयलनि अछि। दोसर दिस धार्मिक न्यास बोर्डक अध्यक्ष रणवीर नंदन कहलनि अछि जे मामिलाक जांच लेल न्यासक एक दल लखीसराय जाओत। मुख्यमंत्री सम्राट

0: उतरी आई विद्यार्थी सभक शैक्षणिक आ छात्रावास संबंधी समस्याक समाधान लेल आई विद्यार्थी सहयोग पोर्टल लोकार्पण कयलनि। पटनाक जेडी विमेंस कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में ओ पोर्टलक शुभारंभ कयलनि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ एफएम रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है सांध्यकालीन दैनिक कार्यक्रम गाम घर।

0: आजो गाम घरक दलान पर सब श्रोता लोकन के स्वागत संगे सब गोटे के नमस्कार संगे नमस्कार उगना भाई
1: नमस्कार अनिल भाई अनिल भाई आज सोम दिन है आ आजुक दिन हमरा लोकन स्नेही बुजुर्ग श्रोता लोकनिक लेल लोक अबैन हुनक साप्ताहिक कार्यक्रम अनुभव के चश्मा से अय अंतर्गत आई एक गोट हमरा लोकन प्रायोजित कार्यक्रम सुनब बुनियाद एकर संगे एक गोट बाह्य ध्वनांकन पर आधारित गपशप सुनब एकर संगे किस संदेश बिल हब मुदा आई सबसे पहिने किस दू टप्पी कल
0: देखिए ओगना भाई आई जे एक विशेष पावन नागपंचमी
1: आ संग संग अनिल भाई आई सावन मासक सोमवारी से हो तो एकरो बड़ महत्व है आई ठाम ठाम मंदिर में पूजा पाठ भ रहल आ नागपंचमी तो अच्छे
0: तो नागपंचमी हिंदू लोकन के एक प्रमुख पावन हिंदू पंचांग के हिसाब से सावन मासक शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के दिन नागपंचमी पावन मनाओल जाइए आजुक दिन नाग देवता व सांप के पूजा अर्चना कैल जाइए नाग देवता के दूध से स्नान कराओल जाइए संगे अंधविश्वास व भ्रम के कारण दूध पियेबाक परंपरा चल रहा है सर्प के पाचन शक्ति एकरा सहन नहीं करे तें दूध के वो पचा नहीं सकैए अकारण भ सकैए कि मृत्यु भ जाए तें ऐसे परहेज करब आवश्यक
1: ठीक है कहलूँ तो हमरा लोकन आई नाग के देवता मान के पूजा करी छन बेर रह तो फिर गपशप करब मुदा आप पहले किस संदेश में ले
2: नमस्कार मैं हूँ अमिताभ बच्चन आप सभी से निवेदन में करना चाहता हूँ कि देखिए सांप के काटने को हल्के में आप ना लें क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं याद रखें सांप का वार अस्पताल में ही उपचार धन्यवाद
3: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
4: घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आब रहल छी एक क्लिक पर हमर स्टेशन लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी
2: नमस्कार मैं हूं अमिताभ बच्चन आप सभी से निवेदन में करना चाहता हूं कि देखिए सांप के काटने को हल्के में आप ना लें क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं याद रखें सांप का वार

0: अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
1: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: उगना भाई, अब हम सब बाह्य ध्वनांकन पर आधारित एकटा भेंट वार्ता सुनै छी, जे खास कऽ बुजुर्ग लोकनिक लेल अछि। भेंटवार्ताक विषय अछि बुजुर्ग आ योग। भेंटवार्ताकार छथि प्रमोद कुमार श्रीवास्तव। हिनका संग गप कऽ रहल छथि शंकर कुमार चौधरी। तऽ दुनू गोटेक बीच जे गप भऽ रहल अछि से हमहूँ सब ध्यानसँ सुनी।
3: तऽ सुनल जाय।
4: आइ मोहल्ला मदारपुर दरभंगामे आयल छी। नेचुरो होमियो चिकित्सक छथि, हिनक नाम भेलनि डॉक्टर प्रमोद कुमार श्रीवास्तव। हिनकासँ स्नेही वृद्ध श्रोता लोकनिक लेल बुजुर्गावस्थामे कोन तरहक योग प्राणायाम, एकर संग संग आसन, एहि सब पर ध्यान देबाक चाही जाहिसँ कि स्वस्थ रहब। डॉक्टर प्रमोद कुमार श्रीवास्तव जी, अहाँ वृद्ध लोकनिके ई जनतब दियौन जे कोना स्वस्थ रहबाक लेल एहि सबके जीवनमे आवश्यकता अछि तऽ अपने जनतब देल जाउ।
5: जे लोग 60 ऊपर चलि गेला, जिनकर उम्र भऽ गेलनि 60 से ऊपर, हुनका सबसे पहिले 6 बजे साँझके बाद हुनका आहार ग्रहण नहि करऽके चाही। केवल गरम पानि पी सकै छथि, सुसुम पानि पी सकै छथि, अन्न ग्रहण नहि करता। दोसर, ओकर बाद 6 बजेके बाद भोजन नहि करथिन, और ओकर बाद केवल रातिमे पानि पी कऽ सुतथिन। 4 बजे भोरके बाद बिछावन पर नहि रहबाक चाही। ई करता नित्य क्रिया से निवृत्त भऽ कऽ निश्चित रूप से बूढ़ा के लेल तारासन। योग में तारासन सबसे उपयुक्त छै। शरीर के संतुलन बनल रहतन, शरीर सीधा रहतन, पैर के मांसपेशियो सेहो मजबूत रहतन। ओकर बाद जो दोसर छै वृक्षासन। वृक्षासन करू, अहाँ के माइंड के संतुलन बनल रहत, शरीर के संतुलन बनल रहत। ओकर बाद तेसर अइ वज्रासन, जे 5 मिनट से लऽ कऽ 10 मिनट तक वज्रासन पर बैठू। वज्रासन केना कयल जाइ छै नेट पर अखनी कतौ देख सकै छी अहाँ वज्रासन, ओहिपर विशेष हम नहि चाहै छी। ओकर बाद भुजंगासन, सर्पासन भी सेहो कहल जाइ छै, भुजंगासन कहल जाइ छै। भुजंगासन करू, जैसे शरीर में स्ट्रेच आयत। पवन मुक्तासन, शशकासन, सवासन। सवासन भेलै माने सब जेहन आकार भऽ के सब जैसा सो जाना है, सब जे सब जैसन मतलब मुर्दा जैसन। सवासन के मतलब भेल जे मुर्दा जैसन अहाँ सुति जाओ आ एकदम शरीर के स्थिर कऽ लिया सवासन। प्राणायाम में जे छै से बुजुर्ग के अनुलोम विलोम करू, ब्राह्मरी प्राणायाम करू, दीर्घ श्वास लंबा ओंकार, लंबा श्वास लिया आ ओम ओम करैत ओकरा अंत करू, लंबा सांस लिया और लंबा ओकरा छोड़ू। इएह भेल जे अहाँके मुख्य रूप से जे अहाँ जे छै से प्राणायाम अनुलोम विलोम करू, माइंड शांत होत। अहाँके यदि उच्च रक्तचाप अइ, शुगर अइ, ईसब सब कंट्रोल भऽ जाएत। लेकिन 6 बजे शाम के बाद भोजन नहीं करना है और रात में पानी पी कर के सोना है। जो खाना है दिन में ही खाना है, और चूल्हा पर चढ़ा हुआ अनाज 24 घंटा में एक ही बार खाना है। शाम में यदि खाना है, दिन में यदि आपने खा लिया तो शाम में 6 बजे खाना है, फल खाइए, खीरा खाइए, ककड़ी खाइए, अंकुरित अनाज खाइए, चिनिया बादाम का ओकरा खाइए, मूंग का ओकरा खाइए, चना का ओकरा खाइए, बहुत से बहुत 25 ग्राम, 20 से 25 ग्राम, उससे ज़्यादा।
4: यानी मात्रा पर आहार के सेहो ध्यान देना चाहिए।
5: हाँ, एकदम एकदम। ये नहीं जब अंकुरित अनाज कहलूँ तो सीधे अहाँ आधा किलो लो लेबे खा लेबे, नहीं, 20 से 25 ग्राम आ खूब चबा कर। खनाई के बारे में कहल गया अंग्रेजी में ईट यू सॉलिड एज लिक्विड आ ईट यू लिक्विड एज सॉलिड। कह के माने ही, जब अहाँ ठोस आहार खाइ छी तो ओकरा एते चबैयो मुँह में जो पानि भऽ जाए तब निगलू, आ जब अहाँ लिक्विड खाइ छी, लिक्विड ईट यू लिक्विड, जहाँ जब अहाँ दूध पियै छी, लस्सी पियै छी, पानि पियै छी, तो ठोस के

0: तरह ओकरा मुँह में चलैयौ तखने ओ पचत। एक लोटा दूध पी लेलहुँ तो ओ हासिल नहीं है, सीधे एनस से निकल जात ओ हासिल नहीं, जब तक ओकरा में लार शामिल नहीं है।
1: इहो बड़ नीक अहाँ कहलिए जे हमरा लोकन आहार जे लै छी ओकर लेबाक ढंग की हेबाक चाही।
0: अगर ढंग नहीं जनै छी
1: प्रायः लोग देखबा में अबैत अछि जे वृद्धावस्था में एहि पर ध्यान नहीं दऽ पबैत छथिन, लेलहुँ खा लेलहुँ बुझलिए हम आहार लऽ लेलहुँ, तऽ इहो नहीं हेबाक
0: नहीं एकदम नहीं। अगर आहार लेलिए आ जैसे कि सबसे अखनी समस्या समाज में छै कंस्टिपेशन कब्ज। कब्ज का मतलब है कि अनपचा नहीं, अनपच उसका मेन कारण है, आपने जो ग्रहण किया वो पचा नहीं, आंत उसको पकड़ लेता है इसमें माल है इसको जाने नहीं दे।
1: कारण गैस से हो
0: जब माल सरेगा तो गैस बनेगा, जब माल अंदर में सरा लागत तो गैस गोबर के रख दियो झाँप दियो देखियो सरते गैस बने से। वही तरह अहाँ के अंदर में जो पैखाना है वो अगर सरते तो गैस बनते।
1: कहवा का अर्थ जो खून पैखाना और पेशाब जो तीनों ठीक है तो अहाँ बुझू जो स्वस्थ
0: स्वस्थ, यही उसका मेन कुंजी है।
1: ठीक है कहलो
0: आहार लेना
1: कुमार श्रीवास्तव जी अहाँ ठीक है कहलो जे वृद्धावस्था में हमरा लोकन के योग के अपने बात चाहिए
0: निश्चित
1: आ स्वस्थ रहबाक ई एकटा कुंजी है।
0: आ ब्रह्म मुहूर्त में उठनाई इहो एगो कुंजी है, कोनो हालत में ब्रह्म मुहूर्त में बिछावन पर जे लेटल रह तो स्वस्थो छी तो अस्वस्थ भ जाए, आ अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अहाँ बीमारो छी बैठ जाओ तो बीमारी अहाँ के भागल।
1: अपने स्नेही श्रोता लोकन के बड़ नीक जनतब दिलियन, एहि लेल अपने के धन्यवाद।
2: ओगना भाई एखन हमसब वैधानंकन पर आधारित भेंटवार्ता सुनै छलहुँ, बिखै छल बुजुर्ग एवं योग। भेंटवार्ताकार छला प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, हिनका संग गप कर रहल छला शंकर कुमार चौधरी। नीक जानकारी भेटल। आइ सोम दिन अछि, सबटा मंदिर में महादेवक भोला बाबाक मंदिर में पूजा अर्चना भिनसरे से भ रहल अछि, साँझक समय में सेहो भ रहल अछि, तऽ सुनी एकटा सुंदर भोला बाबा के गीत
3: तो सुनल जाए।

0: नचारी सुन लो आ आब सुनैत छी प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद तो सुनल जा।
1: सुनी हम सब एक कार्यक्रम
2: के प्रायोजक है गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

0: बिहार और झारखंड के युवा साथियों कैसे हैं? आ गईनी एक बार फिर से ये कार्यक्रम लेके आ हम बानी राजेश। हाँ, समझ आ गई, बात हुई, जम के बात हुई और कोना पर बात हुई, ये थोड़ा देर में पता चली। आप सब युवाओं के करियर के लिए, करियर की बातें हुई बुनियाद कार्यक्रम में।
1: जी हाँ, बुनियाद एक ऐसा कार्यक्रम जो आप युवाओं के लिए एकदम हिट साबित हो रहा है। हम आपकी बुनियाद को मजबूत करना चाहते हैं और जिस पर जो पूरी इमारत लिखी जाए ना, वो एकदम मुकम्मल हो। अच्छा रोजगार, अच्छा पैसा, अच्छी जिंदगी, सब कुछ आपको मिल सके। और इस बुनियाद कार्यक्रम में हम बातें करते हैं रोजगार, जी हाँ, रोजगार की। और रोजगार मिलती है ज्यादातर, हाँ, आसानी से प्रोफेशनल पढ़ाई करके, विशेषज्ञता हासिल करके, टेक्निकल पढ़ाई करके। और एक मेरा ये जो सेंटेंस है ना, ये जो लाइन है ना, बहुत पॉपुलर हो रहा है कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है। अगर जो आपने की टेक्निकल पढ़ाई, तो आपके जीवन में सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जी हाँ, और ये बुनियाद कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं एक वैसे संस्थान, एक वैसे यूनिवर्सिटी की तरफ से जो टेक्निकल पढ़ाई का हब है, और ये अपने बिहार के जमुआर में है, रोहतास में है, सासाराम में है, और जिसका नाम है गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय से आप टेक्निकल पढ़ाई कर सकते हैं। इसके वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं, और वेबसाइट का पता है www.gnsu.ac.in। और जो अगर फोन करना चाहें, तो सबसे पहले हम एक टोल फ्री नंबर है वो बता रहे हैं। नंबर नोट करें, 1800-121-0051, 1800-121-0051। और दूसरा जो नंबर है मोबाइल का, वो नंबर है 9431899002। पिछले सप्ताह अवनीश रंजन थे हमारे साथ और हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स की चर्चा की थी, बीएड स्पेशल एडुकेशन। हमने कहा बीएड स्पेशल एडुकेशन, बीएड सब कोई करना चाहता है ना, करना चाहता है और शिक्षक बनना चाहता है या फिर आगे निकलना चाहता है, लेकिन बीएड स्पेशल एडुकेशन की बातें हमने की थी जो गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में होता है। पूरे बिहार और झारखंड से रिस्पांस आए हैं। एक साथी ने जंदाहा वैशाली से हमें लिखा है, जिनका नाम है देवेंद्र प्रसाद। जी हाँ, अभी अभी इन्होंने इंटरमीडिएट पास आउट किया है बायोलॉजी के साथ और अपने लिए एक अच्छे कोर्स की तलाश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जब तक आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारियां देते, मैं फॉलो नहीं कर पाया, कृपया उसे एक बार फिर से बता दिया जाए। इसके अलावे भागलपुर से, पूर्णिया से, बक्सर से और भी बहुत जगह से फोन कॉल आए हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपके डिमांड पर हम एक बार फिर से अवनीश रंजन, जो हमारे साथ बने हुए हैं कार्यक्रम में, हम उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि बीएड और बीएड स्पेशल एडुकेशन के बारे में हमें जानकारियां दें एक बार फिर से, जिससे हम आपकी मदद कर सकें।
2: अब जो स्टूडेंट्स बीएड कोर्स करना चाहते हैं, उनके मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि दो अलग अलग ये कोर्स क्या है, तो मैं बताना चाहूंगा कि एक समय ऐसा था जब दो अलग अलग बीएड कोर्स चलते थे, और जिसमें था कि एक वैसे बीएड जो सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों को पढ़ाने के टीचर के रूप में ट्रेंड होते थे, और दूसरा बीएड जिसमें कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, जिन्हें जो कोई मानसिक रूप से कमजोर है या देखने में उनको दिक्कत हो रही है या सुनने बोलने में दिक्कत है, उन बच्चों के जो विशेष शिक्षक होते थे, उनकी ट्रेनिंग होती थी। ये आज से करीब 4 साल

पांच साल आठ साल पहले ये कॉन्सेप्ट था। अभी सरकार ने ये निर्णय लिया कि चूंकि हमारे सारे जब से सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान पूरे भारत में लागू हुआ, तो उसके बाद सरकार का ये निर्णय हुआ कि जो टीचर होंगे स्कूल के, जो भी टीचर होंगे, वो सारे इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के ट्रेंड होने चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम का मतलब ये हुआ कि वैसा विद्यालय जहां पे सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चे भी पढ़ेंगे जो स्कूल के फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में शामिल होने के लायक हैं। तो अब जो स्पेशल एजुकेशन वाले जो बीएड हैं, जो जिन्होंने किया

0: सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चे भी पढ़ेंगे जो स्कूल के फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में शामिल होने के लायक हैं। तो अब जो स्पेशल एजुकेशन वाले जो बीएड हैं, जो जिन्होंने किया है कोर्स को, वो सामान्य विद्यालयों में भी सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेंड होते हैं और वो टीचर दोनों बच्चों को एक समान रूप से पढ़ा सकते हैं।
1: बहुत खूब, आपने सारी चीजें एक बार फिर से अच्छे से बता दी और हमें उम्मीद है कि पूरा बिहार और झारखंड जो सुन रहा है और बीएड करना चाहता है एक बार जरूर बीएड स्पेशल एजुकेशन की तरफ देखेगा। अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं बीएड स्पेशल एजुकेशन में। आप जो कॉमन आदमी है उसके लिए, कॉमन बच्चे हैं उसके लिए तो काम कर सकते हैं, चैलेंज बच्चों या डिजेबल बच्चों के लिए भी आप काम कर सकते हैं। सर्विस की भावना ज्यादा है, सारा कुछ इसके अंदर है। जी हाँ, ये गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में ये कोर्स होता है। हम नंबर बता दे रहे हैं, आप चाहें तो बात कर सकते हैं। नंबर जो टोल फ्री नंबर है हमारा 1800121051 1800121051, और दूसरा जो नंबर है 9431899002, ये नंबर है। आगे बढ़ें बीएड स्पेशल एजुकेशन के बारे में, आगे बढ़ें उससे पहले आपको याद दिला दें युवा साथियों कि हमने तीन नए कोर्सेज की चर्चा की थी जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया था, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, दूसरा कोर्स था परफ्यूजन टेक्नोलॉजी और तीसरा कोर्स था बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। इसकी चर्चा हमने इस बुनियाद कार्यक्रम में की थी, आपके रिस्पॉन्सेस आए हैं लेकिन सच बताऊं तो जितना आना चाहिए उस हिसाब से नहीं आए, शायद आप ये कोर्स को समझ नहीं पाए, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन ये हॉट केक है, एक बार फिर से बता देते हैं, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में ये इसके प्लेसमेंट होती है। इसी तरीके से परफ्यूजन टेक्नोलॉजी है और बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज है, सीट बहुत कम है। इसी नंबर 1800121051 या 9431899002 इस नंबर पर आप बात करके जानकारियां ले सकते हैं। बहरहाल अवनीश जी, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के बारे में जरा लोगों को बताइए, वहां ये कोर्स होता है, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें जितनी जानकारी हम दे सकते हैं गागर में सागर भर दीजिए।
0: मैं बताना चाहूंगा कि गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी रोहतास जिले, बिहार के रोहतास जिले के जमुआर में स्थित है और ये करीब 100 एकड़ में फैला हमारा यूनिवर्सिटी है, जिसमें कि बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज संचालित होते हैं, जिसमें हमारा ये फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस भी है। फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस के ही अंतर्गत ये 4 साल के इंटीग्रेटेड बीएड स्पेशल एजुकेशन के 2 स्पेशलाइजेशन के साथ, 2 विशेषज्ञता के साथ बीएड की पढ़ाई होती है। एक इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी जिसे हम बौद्धिक अक्षमता बोलते हैं और दूसरा हियरिंग इंपेयरमेंट, मतलब जिनको सुनने या बोलने में समस्या है बच्चों की, उनके शिक्षक की ट्रेनिंग हमारे यहाँ होती है। हमारे यहाँ भारतीय पुनर्वास परिषद जो भारत सरकार की वैधानिक संस्था है वहां से मान्यता प्राप्त है हम लोगों का यहाँ। और इसके अलावा हमारे जो फैकल्टी हैं, जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स को, टीचर ट्रेनीज को पढ़ाते हैं, वो वेल क्वालिफाइड हैं, उनके पास अच्छी डिग्री है और इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। साथ साथ हमारे हमारे ही कैंपस में नारायण वर्ल्ड स्कूल है, जो चूंकि टीचिंग प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है टीचर्स को अपने ट्रेनिंग के दौरान, तो उनको प्रैक्टिस के लिए भी हमारे कैंपस में स्कूल है, जो इंक्लूसिव स्कूल है, जिसमें कि सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चे भी पढ़ते हैं। हमारे कैंपस में नारायण केयर बाल पुनर्वास केंद्र भी स्थापित है, जहाँ पे इस तरह के बच्चे थेरेपी के लिए आते हैं और स्पेशल एजुकेशन के लिए आते हैं। जब ऐसे सेटअप में, स्पेशल सेटअप में, जहां इन बच्चों को अलग से स्कूल के अलावे भी अगर उनको सपोर्ट की जरूरत है तो उस तरह के सेंटर्स हैं। तो जो स्टूडेंट यहां एडमिशन लेंगे बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले कोर्स में, उनको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए भी व्यवस्था हमारे यहां है, थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन के लिए लैब उन हमारे पास अवेलेबल है, हमारे यहाँ बच्चे अवेलेबल हैं जिनके ऊपर बच्चे उनको ट्रेनिंग के दौरान उनको ऑब्जर्वेशन करने के लिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन असेसमेंट करने के लिए भी व्यवस्था हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैंपस में ही हॉस्टल अवेलेबल है, लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल है, बॉयज के लिए अलग हॉस्टल है। हमारे यहाँ अच्छी क्वालिटी के भोजन उपलब्ध कराने वाली मेस है, जिसमें कि जो भी बच्चे रहते हैं हॉस्टल में उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट, ग्रीन इन्वायरमेंट मिलता है, एक सेफ्टी और सिक्योरिटी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो मैं ये अपील करना चाहूंगा वैसे लोगों से

0: जिन्होंने प्लस टू किया है इस बार साइंस या आर्ट्स में, वो एक बार हमारी यूनिवर्सिटी को विजिट करें, हमारे वेबसाइट पे भी जाएं और फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस को के साइट को देखें और हमारे प्रोग्राम्स को समझें, हमारे पूरे फैसिलिटी को एक बार देखें। और मैं अपील करूंगा कि वो एडमिशन अगर लेते हैं तो मैं अपनी तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि वो एक अच्छे इंस्टीट्यूशन के अच्छी यूनिवर्सिटी को में एडमिशन लेंगे और उनकी अच्छी पढ़ाई के साथ एक अच्छे मार्क्स के साथ डिग्री लेकर निकलेंगे, जब वो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों पार्ट उनका बहुत स्ट्रांग होगा और जहां चाहे वो जॉब कर सकते हैं या प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं।
1: मजा आ गई लवनीश जी, वाह, बहुत पूरी तरीके से आपने खोल के बता दिया। लेकिन आपने बाद में रोजगार की बात कही, यहाँ एक सहज जिज्ञासा है, पढ़ाई करने के बाद एक अच्छा रोजगार सारे यूथ चाहते हैं, गार्जियन भी चाहते हैं, अगर हमारा बेटा भी हो तो हम चाहेंगे पढ़ने के बाद रोजगार लगे, यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या व्यवस्था है?
0: जी, हमारे यहाँ अलग से एक प्लेसमेंट सेल है जिसमें कि हमारे वैसे लोग जो हमारे यहाँ से पढ़ के निकलते हैं उनके लिए हम लोग प्लेसमेंट के लिए ड्राइव चलाते हैं। बहुत सारी एजेंसीज हैं खासकर जो इस फील्ड में काम कर रही है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की एजेंसीज है जो हमारे यहाँ आती है और इन लोगों के का इंटरव्यू लेके और उनके को सेलेक्ट करके और अपने यहाँ ले जाती है और अच्छे पैकेज पे उनको जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाती है।
1: अच्छा, एक बात बताइए, आपके यहाँ कैंपस में नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी है, तो क्या आप अपने बच्चों को या आपके यहाँ से जो पढ़ के निकले आप अपने यहाँ भी प्लेसमेंट देते हैं उनको?
0: जी, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि जो हमारे बच्चे हमारे कैंपस में काम करना चाहते हैं तो हम उनको चांस देते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब हमने अपने बच्चों को एक हाई एजुकेशन दिया है, एक अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन दिया, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी, तो मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे हम लोगों के यहाँ पहले ऑब्जर्व हों। अगर वो अपने एरिया में काम करना चाहते हैं तो हम लोग उनको वो भी मदद करते हैं कि आप जिस राज्य में या जिस शहर में काम करना चाहते हैं तो हमारे लिंक्स हैं, हम लोग उनको वहां भी रेफर करते हैं और वहां जाके वो जॉब करते हैं।
1: अवनी जी, रोजगार से संबंधित एक और हम जानकारी चाहते हैं कि स्कूलों में सब बच्चे एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ भी अपॉर्चुनिटी बीएड स्पेशल एडुकेशन वालों की बढ़ी है क्या?
0: सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान के आने के बाद जितने भी सरकारी विद्यालय हैं वो सबको सरकार की मैंडेटरी है कि वो इंक्लूसिव सेटअप में उस स्कूल को रखना है, मतलब कि ऐसा स्कूल जहाँ पे सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चे भी पढ़ेंगे, तो उस विद्यालयों में इन शिक्षकों की भारी मांग है। प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं, चाहे वो सीबीएसई के स्कूल हो, नवोदय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय हो या और दूसरे प्राइवेट विद्यालय हो जैसे आईसीएसई और सीबीएसई के स्कूल हैं, वो सारे जगह पे मैंडेटरी है कि इन तरह के टीचर्स को उनकी बहाली कंपलसरी है, रखनी है उनको और उनका वहाँ स्कोप है जहाँ वो एज ए टीचर काम कर सकते हैं।
1: वाह, बहुत खूब, थैंक यू अवनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल आए तो आपसे जरूर पूछेंगे, आपको बुलाएंगे इस कार्यक्रम में। तो साथियों, पूरा बिहार और झारखंड आपने सुना, पहले कोर्स के बारे में, बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन के बारे में, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के बारे में और लंबी बातचीत हुई जॉब को लेकर, हर तरफ जॉब ही जॉब है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बात कर सकते हैं इस नंबर पर 1800 121 0051 1800 121 0051 और दूसरा नंबर 9431899002, ये नंबर है और इंटरेस्टेड होना भी चाहिए बीएड स्पेशल एडुकेशन के लिए। और इसके अलावे आज ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आ गई है युवा साथियों, बस गौर करने की जरूरत है, आपका इंटरेस्ट किस तरफ है ये जानने की जरूरत है। अपने बिहार में टेक्निकल पढ़ाई वाला यूनिवर्सिटी है जहां 13-14 अपॉर्चुनिटी है, जैसे अगर आपने बायोलॉजी के साथ किया है तो मेडिकल है, नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, इसके अलावा फार्मेसी है, पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, नर्सिंग के कोर्सेज हैं, इसके अलावा एग्रीकल्चर है, आप जा सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान देने की। और नंबर वही 1800 121 0051 और 9431899002। थैंक यू गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम बुनियाद पूरे बिहार और झारखंड के बच्चों के लिए राजेश को लेकर आने का मौका दिया। चलते हैं, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
3: हाँ उगना भाई, एखन हम सब प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहल छलौं बुनियाद, एहि संग आब आजुक के जे गाम घर कार्यक्रम छल अनुभव के चश्मा, ओकर समय समाप्त हेबा पर खेती गृहस्थी में सब किसान

0: भूषण मिश्रा इस सेवानिवृत्त उप निदेशक पशुपालन विभाग दरभंगा में कार्यरत छला। इनका संग गप कर रहा छ अनिल कुमार कर
1: तो सुनल जाए दोनों गोटा के बीच भेल गप सब जे पशु के सामान्य बीमारी आ एकर उपचार।
0: किसान भाई लोकन आई खेती गृहस्थी कार्यक्रम में अपने सब गोटे के स्वागत संगे नमस्कार। आई बड़ खुशी के गप है आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में उपस्थित छथि सेवानिवृत्त क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन विभाग दरभंगा डॉक्टर चंद्रभूषण मिश्रा। डॉक्टर चंद्रभूषण मिश्रा जी अपने के आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करे छी संगे अपने के नमस्कार। आई हम गप करब जे पशु सभक सामान्य रोग आ ओकर उपचार के संबंध में। ओइसे पहिने डॉक्टर साहब हम ई जानना चाहब अहाँ से जे स्वस्थ आ रोगी पशु के की लक्षण होइया हम ई कोना बुझबै जे हमर जे खुट्टा पर माल अछि ई स्वस्थ अछि आ रोगी अछि तऽ एहि संबंध में कहल जाय।
2: पशुपालक भाई आई अहाँ के पशुपालन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जे ज्ञानकारी अछि से दऽ रहल छी भऽ सकैए ओ अहाँ लेल उपयोगी हुए तैँ अहाँ ओकरा ध्यानपूर्वक सुनब। सबसे पहिने तऽ अहाँ केना बुझबै जे पशु हमर बीमार यए कि स्वस्थ अछि तऽ ओकर तीन चारिटा मूल लक्षण छै। पहिल बीमार पशु सबसँ पहिने पागुर केनाइ छोड़ि देत। ओकरा थुथुन पर जे रहै छै पानि जकाँ ओ सूखि जाइ छै। सङ्गहि ओकर कान जे छै से नीचा मुँहे भऽ जायत। आर बेसी जानबै तऽ ओकर अगर थर्मामीटरसँ अहाँ टेम्परेचर लऽ सकै छी तऽ टेम्परेचर ओकर हाई रहै छै। ओहो नहि देखबै तऽ ओकर साँसके लेबऽके प्रक्रिया तेज भऽ जाइ छै। ई सामान्य पशुमे भेलै। यदि दुधारू पशु अइ तऽ ओकरा अगर थनमे कोनो तरहके पीड़ा छै तऽ चलऽमे दिक्कत भऽ जेतै, दूध कमि जायत। आओर ओहिसँ बेसी कोनो बीमारी हेतै तऽ जेना पैखाना पतला भऽ जेतै, अरुचि भऽ जेतै, अपच भऽ जेतै, ईसब बीमार पशुके लक्षण भेलै। ओहिसँ जे परे भेल से स्वस्थ पशुके लक्षण भेल।
0: बेसीकाल ई देखल जाइ छै जे स्वस्थ पशु जखन बैसैए तऽ शरीरके अगला भाग पहिने नीचा करैए, ओकर बाद पिछला भाग करैए। सम्भवतः ई गप छै,
2: अवश्य छै। ओहीपर ओकर भारके सन्तुलन रहै छै। अगला आगा केलाके बाद पाछा केलासँ भार ओकर सन्तुलित भऽ जाइ छै, तैँ ओ बैसैमे ओकरा आराम भेटै छै।
0: आ नीक आ स्वस्थ पशुके जे शरीरके जे चमड़ा होइ छै ओ बड्ड बेसी चमकदार आ मुलायम सेहो रहै छै।
2: जी जी।
0: आ रोगी पशुमे एकर सभक अभाव बुझना जाइ छै। तऽ आब हमसभ ई गप करब जे अखन गर्मी अपन सने सने रूप देखा रहल अछि, प्रचण्डताक दिस गर्मी अपन बढ़ि रहल अछि। गर्मीक मासमे देखल जाइ छै जे मनुखके आ पशुके दुनूके लू लगै छै, तऽ एहि लूसँ लगऽके लेल नहि लागय एकर बचावके लेल की सब करक चाही आ जखन लू लागि जाय तखन की करक चाही?
2: गर्मी मासमे गर्मीसँ तऽ सब केओ प्रभावित रहै छथि। पशुके शरीरक एरिया नमहर होइ छै, ओहिसँ पानिके उत्सर्जन बेसी होइ छै, तैँ सबसँ पहिने हुनका पानिके बेसी आवश्यकता पड़ै छनि। तैँ पशुपालक भाइ ई बातके ध्यान राखथि कि पानिके हुनका कमी नहि होइ। जँ कोनो पशु गर्मीसँ आक्रांत भऽ गेलै, ओकरा भइए कि लूके असर अछि, तऽ ओ पशु सबसँ पहिने अपना आपके एकदम गुम सुम कऽ कऽ बैस जायत, मूड़ीके पेटपर मोड़िकऽ राखि लेत, कोनो कोनो केसमे साँस अधिक चलऽ लागत आ एकदम ओकर एक्टिविटी शरीरके जे छै से एकदम कमसँ कम भऽ जाइ छै। तऽ अहाँ समझि लिअ असर भऽ गेल। तत्काल ओकरा सबसँ पहिने तऽ साफ आओर स्वच्छ पानि दियौ, ओहिमे चीनी नमक मिलाकऽ दियौ। ओहिसँ बेसी होइ तऽ जँ दहीके पानि उपलब्ध होइ घरमे अगल बगलमे तऽ दहीके पानि घोरि कऽ ओकरा पियाउ। ओहूसँ बेसी अखन आमके समय छै, टिकुला छै, ओकरा थकुचि कऽ ओकरा पका कऽ ओहिमे नून धऽ कऽ दियौ। ओहूसँ बेसी जँ जरूरी पड़े तऽ पशु चिकित्सकसँ सम्पर्क कऽ कऽ ओकर चिकित्सा कराउ।
0: निश्चित रूपसँ सम्पर्क करक चाही। जँ बुझना जाय कि अपनासँ संहारमे नहि भऽ रहल अइ तऽ योग्य पशु चिकित्सक लग जा कऽ ओकर उपचार करेबाक चाही। गर्मीक मासमे एहनो देखल जाइ छै डॉक्टर साहेब जे पाचन सम्बन्धी विकार मालजालके बेसी भऽ जाइ छै, अपच हुअ लगै छै। तऽ अपचके कारण की छै आ ओकर निदान की छै ई सन्दर्भमे कहल जाय?
2: आइ काल्हि चारागाह पर आश्रित रहैवला पशुके संख्या

0: या बहुत कमि गेलै यऽ। ज्यादातर पशु खुट्टा पर बान्हि कऽ पोसै वाला पोसै छथि, जाहिमे भुस्साके सङ्ग सङ्ग दानाके मात्रा दै छथिन। गर्मीके समयमे जे दाना ओ तैयार करै छथिन, यदि कोनो कारणसँ या हुनका जानकारीके अभावके चलते ओ बेसी देर राखल रहि जाइ छै, तऽ ओहिमे फर्मेंटेशन शुरू भऽ जाइ छै आ ओ जहाँ भुस्सामे मिलाकऽ देबै तऽ ओकरा पेटमे गैस बनतै आ ओकरा अपचके कारण भऽ जेतै। ताकि ओकर शरीरके एकटा pH होइ छै, जे एगो 6.8 to 7.2 होइ छै, ओहिसँ जखने ओ ऊपर बढ़तै कि नीचा बढ़तै, ज़्यादा एसिड हेतै कि अल्कलाइन हेतै, बस ओहिसँ ओकरा पशुमे पाचन सम्बन्धी बीमारी हो लगतै। दोसर कारण, आइ काल्हि भुस्साके भी सेहो क्वालिटी अलग अलग किस्मके रहै छै, तऽ बहुत मीही अगर भुस्सा अहाँ दऽ देबै तऽ ओहूसँ ओकरा पाचन क्रियापर असर पड़ै छै। तेसर कारण, यदि धोखासँ कोनो पशु बाहरमे अइ आओर कोनो गन्दा नालामे पानि एको दू घोट पी लेलक, तऽ ओकरा ओ टॉक्सिसिटी, ओकरा जहरीला असर ओकरा ऊपर कऽ दै छै आ ओहिसँ ओकरा प्रभावित भऽ जाइए पशु। चारिम कारण, धोखासँ कोनो फसल कतौ लागल अइ आ ओहिपर कोनो किसान ओकरा कीटनाशीके ऊपर प्रयोग केला हा, जे अहाँके जानकारीमे नहि अइ आ ओ पशु एक दू मुट्ठी खा लेला, तऽ ओहि अहाँके घर खुट्टा पर अबितै ओ अपन ढंगके एकटा नया सिम्टम ग्रहण करऽ लागत। तैं गर्मीमे एहिसब बातके अहाँ ध्यान राखी जे सबसँ पहिने तऽ ओकरा पानि स्वच्छ आ भरपूर मात्रामे दियौ आ ओकर बाद छायाके व्यवस्था करियौ,
1: माने छाहरिमे राखऽके चाही। गर्मीक मासमे बहुत रास उपद्रव मालजालमे होइए, अपच सम्बन्धी विकार तऽ हेबे करैए, सङ्गे पेट खराब जकरा दस्त सेहो कहल जाइए, तऽ पेट खराब सेहो मालजालके भऽ सकैए, तऽ एकर कारण की छै आ एकर निदान सामान्य रूपसँ की करक चाही से कहि दियौ।
0: जखने भोजनमे कोनो तरहके गड़बड़ी हेतै तऽ पेट ओकर पाचनपर असर पड़तै आ पाचन जखने सही नहि भेलै तऽ पेट खराब हेतै। तऽ पेट खराब दू तरहसँ भऽ सकै छै, एकटा खानामे कोनो तरहके गड़बड़ी भेलै ओहिसँ पेट खराब भऽ जेतै, या कोनो इन्फेक्शन ओकरा भोजनके माध्यमसँ ओकरा पेटमे चलि गेलै ओहिसँ खराबी हेतै। सामान्यतः यदि भोजनमे कोनो गड़बड़ी छै तऽ ओकर एकाएक पतला पैखाना होइ छै, ओहि लेल कोनो एंटी डायरियल पाउडर है ओकरा माड़मे मिलाकर दियौ, नून पानिके घोल दियौ, या कोनो सल्फा ड्रग्स या ओहिसँ आओर ऊपर होइ छै यूनिमाइसिन सल्फेट, नियोमाइसिन, ईसब दवाइ जे छै से ओकरा बाजारसँ लाबिकऽ दियौ। जँ नहि कंट्रोल हुए तऽ पशु चिकित्सकसँ सम्पर्क करी।
1: बहुत सुन्दर जानकारी दऽ रहल छी डॉक्टर साहेब चंद्रभूषण मिश्रा जी। अपने एहनो देखल जाइ छै जे एक रोगके कारण बहुत रास रोग हुअ लगैए, जेना अपच भेलै, दस्तके शिकायत भेलै, एकर अतिरिक्त कखनो कखनो एहनो होइ छै मालजालके जे पेटमे बड्ड बेसी गैस भरि जाइ छै, अफरा भऽ जाइ छै, तऽ ओकर कारण की छै आ एहिसँ बचऽके लेल की उपाय करक चाही, आ जँ मानि लियो एहि रोगसँ कोनो मालजाल ग्रसित भऽ गेल तऽ ओकर सामान्य उपचार।
0: भोजन जखने पाचन नहि हेतै, पेटमे अधिक देर तक रहतै, तऽ मनुष्य अथी पशुके चारिटा पेट होइ छै, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। पहिला पेटके कैपेसिटी 40 लीटर तकके रहै छै, ओहिमे अगर बहुत देर भोजन रहि गेलै तऽ ओ तरह तरहके गैस बनेतै, मीथेन बनतै आओर तरहके गैस बनतै, जाहिके चलते ओकर पैखाना पातर भऽ जेतै, पैरसँ ओ लंगड़ा लागत चलऽमे, रोआँ ओकर भुलकि जेतै, मुँहसँ पानि आबऽ लगतै। ईसब सिम्टमके लेल अहाँ जेना पैखाना भेलै, पातर भेलै, तऽ ठीक छै ओकरा एंटीबायोटिक दवाइ दियौ, ओकरा कोनो पाचनवला जेना जाहिमे ईस्ट एक्सट्रैक्ट रहै छै, लैक्टोबैसिलस रहै छै, एहि टाइपके दवाइ दियौ। ओहूसँ नीक बफर आइ काल्हि भेटऽ लगलै बाजारमे, तऽ कोनो बफरके पानिमे घोरिके दियौ, ताकि अगर एसिड ओकरा पेटमे बहुत बढ़ि गेलै तऽ ओ न्यूट्रलाइज करतै, ओकरा बाद फेर ओ बहुत तुरत जल्दी भोजन नहि पकड़त, तऽ ओकरा भोजनके सामान्य रूपमे लाबै लेल लीवर एक्सट्रैक्टके इंजेक्शन दियौ, बी कॉम्प्लेक्सके इंजेक्शन दियौ। आओर जल्दी दुधारू पशु होइ चाहै छी, जल्दी ओकरा हम नीक करी, तऽ ओकरा कैल्शियम बोरोग्लुकोनेटके बोतल एक दू तीन बोतल तक चढ़वा सकै छी अहाँ। ईसब उपाय करबै तऽ पैखाना तऽ ठीक भैएटा जाएत, ओकरा सङ्ग सङ्ग ओकरा जे से हुअवला जे क्षति अहाँके भऽ गेल, दूधमे कमी, भूखमे कमी, शरीरमे मुरझापन, ईसब दूर भऽ कऽ पशु अहाँके शीघ्र स्वस्थ भऽ जाएत।
1: एहनो देखल जाइए जाहि मालजालसँ हमसब काज लै छिए, बरद भेल वा आन कोनो अइ, घेँटपर जे छै सूजन भऽ जाइ छै, फूलि जाइ छै, जकरा योक गल सेहो कहल जाइए। एहन रोगसँ जे कोनो काज करयवला मालजाल ग्रसित भऽ जाए तऽ एहि लेल की करक चाही?
0: सबसँ पहिने देखियौ अपना

0: शरीरमे भी कोनो ठाम अहाँके बेसी रगड़ लागत तऽ ओहिठमा अहाँके हाड़ एहन स्वेलिंग भऽ जायत, सूजन भऽ जायत। से हाल छै पशुओके, ओकरा के कन्हा कान पर राखि कऽ अहाँ पालो या कोनो चीज, कोनो एहन भार वला चीज रखै छियै तऽ बराबर ओहिमे घर्षण पैदा होइ छै, जाहिसँ ओतऽ के टिश्यू जे छै से ओ हार्ड भऽ जाइ छै आओर हार्ड भऽ कऽ ओ फूलि गेल, ओहिमे दर्द भेल, कड़ा भऽ गेल आओर ओ पशुके बहुत बहुत पीड़ा दै छै। तऽ ओकरा अहाँ कोशिश करू जे अखन शुरूएमे जखन सूजन भऽ गेलै तऽ ओकरा गरम पानिमे नमक डालिके ओकरा सेकियौ, ओकरा आयोडेक्स लगबियौ, कैटगल वाइंटमेंट अबै छै ई लगबियौ, आर कोनो पेन किलर अबै छै ओ सब अहाँ पोरसाइल गोल्ड जी सब बहुत तरहके अबै छै पेन किलर, ओकरा अहाँ लगा सकै छी।
1: एकर अतिरिक्त जिंक ऑक्साइड वा सल्फेट के
0: बॉडी के एसिड सब के लगा के अहाँ
1: वेसलिन
0: बना के ऊपर लगा सकै
1: छी।
0: वेसलिन तऽ अहुना लगाबऽ पड़त चूंकि ओ फाटि जाइ छै कोनो कोनो केस मे।
1: अंत मे डॉक्टर साहब, हम पशुपालक भाई लोकनि के लेल जानऽ चाहब जे माल जाल मे अंतः आ बाह्य परजीवी दुनूक प्रकोप होइए, तऽ सबसँ पहिने अंतः परजीवी आ बाह्य परजीवी दुनूक सन्दर्भमे ओकर कारण की होइए, किया लगैए, किया होइए आ ओकर निदान की छै?
0: आइके युगमे पशुपालक भाई, जँ अहाँ अपना पशुधनसँ आर्थिक स्थिति नीक करऽ चाहै छी तऽ सबसे पहिने ओकरा बाह्य परजीवीके दूर करऽके अहाँके उपाय करऽके पड़त। महिनामे एक बेर चेक करियौ कि ओकरा शरीरमे कतौ जे छै से कोनो चमोकन तऽ नहि छै। बाह्य परजीवी उहे भेलै, ओहिके चलते की होइ छै, जे ओ खून चूसै छै, सङ्गहि ओ जे चमड़ामे छेद कऽ दै छै ओहिके थ्रू भयानक भयानक बीमारी जेना थलेरियसिस, पायरोप्लाज्मोसिस, एनाप्लाज्मोसिस आओर मने थले बहुत तरहक बीमारी ओहिके थ्रू होइ छै। ओहिके थ्रू अहाँके रेड वाटरके केस जे छै ओहो बबेसियसिस ओहो होइ छै। तऽ अगर अहाँ एकटा टिक्स पर ओहिके लेल सरकारी अस्पतालमे भी आइवरमेक्टिन आओर साइपरमेथ्रिन लगाबऽवला आओर आइवरमेक्टिनके इंजेक्शन टैबलेट भी अबै छै, अहाँ प्रयास करियौ। जखन जाइ तखन भले ही नहि होइ, ओकरा बाद जाके कोशिश करू, आ नहि तऽ रेगुलर रूपसँ महिनामे एक बेर अगर अहाँ बाह्य परजीवीके उपाय कऽ देबै, साइपरमेथ्रिन या एमित्राज ईसब लगाबऽवला दवाइ भेलै आओर ओकर टैबलेट खुआबऽवला अबै छै, सङ्गहि आइवरमेक्टिनके इंजेक्शन अबै छै, ओहिमे पशुके भारके मुताबिक ओहिमे ओकर मात्रा तय कयल जाइ छै। तऽ ई अहाँ निश्चित रूपसँ अगर ई काज करै छी तऽ अहाँके पशुपालनमे घाटा कहियो नहि हैत। अंतः परजीवीमे लीवर फ्लूक, इंटेस्टाइनल फ्लूक, ब्लड फ्लूक आओर राउंड वर्म भेलै। जनरली छोट मवेशीमे राउंड वर्म होइ छै जकरा एस्केरियसिस कहै छै, ओकरा अहाँ एल्बेंडाजॉल दियौ। अगर ई एरिया चूँकि बाढ़िग्रस्त छै ताहि लेल एहिमे लीवर फ्लूकके बेसी शिकायत रहै छै, तैँ ऑक्सी क्लोजानाइड लिभामिसोलके अहाँ टैबलेट इंजेक्शन ओकरा दऽ सकै छियै आओर टेप वर्मके लेल फेनबेंडाजॉलके टैबलेट दियौ, एहिसँ अहाँके बहुत आराम भेटत।
1: बहुत बहुत सुन्दर नीक जानकारी चंद्रभूषण मिश्रा जी अपनेके पशुपालक भाई लोकनिके लेल नीक जानकारी देलियै, ताहि लेल अपनेके बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ उगना भाई, एखन हमसब भेंट वार्ता सुन रहल छलहुँ। भेंट वार्ताक विषय छल पशुओंके सामान्य रोग एवं उपचार। भेंट वार्ताकार छला डॉक्टर चंद्रभूषण मिश्रा, हिनका संग गप कर रहल छला
2: अनिल कुमार कर्ण। तो दुनू गोटा के बीच भेल गपशप सुनलहुँ आ आब हमरा लोकनि सुनै छी ई गीत। तो सुनल
1: कलाकार छथि हेमकांत झा।

0: एखन हमरा लोकनि हेमकान्त झाके गाओल बड़ नीक ई नचारी सुनलहुँ आ अनिल भाई अहिक सङ्ग आब आजुक खेती गृहस्थीक बेर सम्पन्न भऽ रहल अछि तऽ स्नेही किसान श्रोता भाई बहिन लोकनिसँ चलबाक आज्ञा लैत छियनि। नमस्कार अनिल भाई।
1: नमस्कार उपना भाई।

0: अभी आप सुन रहे थे सांध्यकालीन दैनिक कार्यक्रम खेती गृहस्थी, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पल में।
1: नमस्ते आनंद भाई।
2: नमस्ते विनीता बहन।
1: नमस्ते आनंद भाई।
2: नमस्ते शिम्बा बहन।

0: सुन रहे थे आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। एक अंतराल के बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
1: और इस गीत के बाद
2: छाया गीत।

is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

0: बुद्धू, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
4: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: कृपया ध्यान दें, डेंगू अपने शहर में पांव पसार रहा है, पर हम सावधानी और स्वच्छता से इसको हरा सकते हैं।
7: डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन अवश्य करें, जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसीलिए कहीं भी पानी जमा ना होने दें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए अपने आसपास साफ रखें और अपने शरीर को ढक कर रखें। समय समय पर फॉगिंग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं। खिड़की दरवाजों में मच्छर जाली लगवाएं।
6: जब होगा पूरा प्रयास हमारा, तभी मिलेगा डेंगू से छुटकारा। जीवंत बिहार, सपना हो साकार। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
8: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
9: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
10: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त

0: ज्ञानेश कुमार ने पटना में निर्वाचन साक्षरता क्लब 2.0 की शुरुआत की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विद्यार्थी सहयोग पोर्टल का शुभारंभ किया, कहा शिक्षा व्यवस्था में आएगी पारदर्शिता। लखीसराय भगदड़ घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरी शोक संवेदना जताई। राज्य सरकार ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान की घोषणा की। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद, भभुआ और गया जिले में अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में निर्वाचन साक्षरता क्लब ईएलसी 2.0 की शुरुआत की। ये पहल निर्वाचन साक्षरता, डिजिटल सहभागिता और लोकतंत्र में नागरिकों की सार्थक भागीदारी को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: ज्ञान भवन में आयोजित कार्यशाला के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे जेएनजी युवाओं और छात्रों से सीधा संवाद किया। छात्रों ने चुनाव प्रक्रिया, मतदान और लोकतंत्र से जुड़े कई सवाल पूछे।
2: अनिकेत कुमार, केंद्रीय विद्यालय सोनपुर। हम लोग सीखे कि वोट कैसे दिया जाता है, स्टेप बाय स्टेप समझे कि कैसे कैसे पहले इंटर करना है, उसके बाद क्या क्या मेथड होता है आने का, लास्ट तक पोलिंग बूथ तक। एक्साइटमेंट हो रहा है जल्दी बड़ा होने का ताकि रियल में वोट दे सके।
1: चुनाव आयुक्त ने कहा कि ईएलसी 2.0 के जरिए युवाओं को डिजिटल माध्यमों से चुनावी प्रक्रिया से जोड़ने और उन्हें अपने मताधिकार के प्रति जागरूक करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
3: मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से पारदर्शी शांतिपूर्ण मतदान बिहार ने पूरे देश को एक वरदान के रूप में दिया था, उसी तरीके से इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब भी इस पूरे देश को वरदान रूप में बिहार प्रदान करेगा।
1: श्री कुमार ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में लोगों की दिलचस्पी और उनका विश्वास बनाए रखने के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करना जरूरी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विद्यार्थियों की शैक्षणिक और छात्रावास संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए आज विद्यार्थी सहयोग पोर्टल का लोकार्पण किया। पटना के जेडी विमेंस कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पोर्टल का शुभारंभ करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार छात्रों की समस्याओं को लेकर संवेदनशील है और हर स्तर पर उन्हें सहायता देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
4: सहयोग पोर्टल सिर्फ पोर्टल लॉन्च नहीं हो रहा, इस सहयोग कार्यक्रम से हम लोगों ने पूरी तरह बिहार में लगभग 6,42,000 लोगों ने आवेदन किया पिछले 19 मई से, साथ ही उसमें से 96% आवेदन का निष्पादन किया गया। उसमें एक व्यवस्था किया गया है कि जैसे ही आवेदन आप करेंगे तो ठीक 10 दिन तक यदि हमारे पदाधिकारी कर्मचारी जो संबंधित है उन्होंने यदि आदेश पारित नहीं किया तो 11वें दिन मुख्यमंत्री के कार्यालय से सीधा उनको नोटिस भेजने का काम किया गया।
0: विद्यार्थी पोर्टल के आधिकारिक एड्रेस sahyog.bihar.gov.in पर अपनी समस्याएं दर्ज कराने के साथ सुझाव भी दे सकेंगे। पोर्टल से संबंधित सभी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1100 पर संपर्क किया जा सकता है। राज्य सरकार ने 44 कोयला ब्लॉकों का सर्वे कराने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में कोयला और खान मंत्रालय द्वारा आयोजित सामरिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी और NMEMDT की कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए ये घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 सितंबर तक 30 से अधिक कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया जा सकता है और 15 अक्टूबर से राज्य में खनन कार्य शुरू करने का लक्ष्य है।
4: हम लोगों ने 44 ब्लॉक को अपने राज्य सरकार के द्वारा टेंडर की प्रक्रिया शुरू की है। लगभग 28 टेंडर की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। 30 सितंबर के पहले लगभग 30 से अधिक ब्लॉक हमारे आवंटित भी कर दिए जाएंगे। सरकार ने उसको एडवांस प्लानिंग किया है बिहार में और मेरा भरोसा है कि 15 अक्टूबर के बाद बिहार में हम माइनिंग करना भी 20 साल के बाद शुरू कर देंगे। साक्षी,
0: राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में आज से पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था शुरू हो गई है। इस व्यवस्था के तहत रजिस्ट्री की प्रक्रिया में कागजी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी और डिजिटल दस्तावेजों के आधार पर निबंधन का कार्य पूरा किया जाएगा। नई व्यवस्था में रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होते ही डिजिटल डीड व्हाट्सएप के माध्यम से मोबाइल पर भेज दी जाएगी। डिजिटल डीड मिलने की सूचना संबंधित व्यक्ति को SMS के जरिए भी दी जाएगी। सावन की तीसरी सोमवारी की सुबह आज लखी

0: सराय के प्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर में भगदड़ मचने से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 25 श्रद्धालु घायल हो गए। एक रिपोर्ट।
1: तीसरी सोमवारी पर लखीसराय के अशोक धाम मंदिर पहुंचने के क्रम में भगदड़ के कारण मौके पर अफरा तफरी मच गई। जिला प्रशासन ने बताया कि यह घटना अशोक धाम स्टेशन से मंदिर जाने वाले रास्ते पर हुई। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिजली का खंभा गिरने से करंट फैलने की अफवाह से भगदड़ मची, जिसके कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। जिला प्रशासन ने कहा कि घटना के कारणों और परिस्थितियों की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है।
2: डीएम साहब को हमने निर्देशित किया है कि इसमें घटना की पूर्ण जांच करवा लें। एक बड़े पदाधिकारी अपर समर्थ स्तर में एग्जैक्ट टॉज उसके सामने आएंगे। 7 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, इसके प्रति हम संवेदना अभिव्यक्त करते हैं। आगे एक्शन सरकार लेगी। इसमें
1: हादसे में मृत लोगों की पहचान कर ली गई है। इनमें लखीसराय जिले की मनमाला देवी, हेमलता देवी, ललिता देवी, सविता कुमारी और सावित्री देवी, मुंगेर जिले की रिंकू देवी तथा पटना जिले की सरोज देवी शामिल है। मृतक के परिजनों को अनुग्रह अनुदान की राशि देने की प्रक्रिया की जा रही है। लखीसराय से संवाददाता विनय कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निधि श्री।
0: उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि घटना की जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी।
3: जो दुर्घटना घटी है वो काफी पीड़ादायक है, सरकार उसके कारणों की जांच कराएगी। अगर किन्हीं की कमी कमजोरी पाई जाएगी तो उनके विरुद्ध कार्रवाई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में मृतकों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन इस हादसे में प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता कर रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ की घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के निकटतम परिजन को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने और घायलों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सादा, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत अन्य गणमान्य लोगों ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। इधर धार्मिक न्यास बोर्ड ने कहा है कि इस पूरी घटना की जांच की जाएगी। बोर्ड के अध्यक्ष रणवीर नंदन ने बताया कि मामले की जांच के लिए न्यास की एक टीम लखीसराय जाएगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन की अध्यक्षता वाली नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन की घोषणा की है। जारी सूची में 13 उपाध्यक्ष, 8 महासचिव, 16 राष्ट्रीय सचिव और 7 लोगों को पार्टी की विभिन्न मोर्चों की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार के सिद्धार्थ शंभू को राष्ट्रीय सचिव, ऋतुराज सिन्हा को पार्टी के विभिन्न इकाइयों का सह समन्वयक और शिवेश कुमार राम को अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी नई टीम को शुभकामनाएं और बधाई दी है। पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने आज विधानसभा की सदस्यता की शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में उन्हें सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव, जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा संगठन विस्तार के लिए राज्य में विशेष अभियान चलाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 20 अगस्त से राजगीर में पार्टी का 3 दिवसीय विमर्श शिविर आयोजित किया जाएगा।
5: इसी महीने में 20, 21 और 22 अगस्त को नालंदा जिला के राजगीर में पार्टी की ओर से शिविर रखा गया है। इस शिविर का नाम विमर्श शिविर के रूप में रखा गया है। इसमें कुछ हमारी पार्टी की विचारधारा से संबंधित

0: भी बातें होंगी। साथ ही साथ हम अपने संगठन का विस्तार इस शिविर का एक बड़ा मुद्दा है।
1: भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाने को लेकर आज पटना में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। बैठक में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज के सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। बैठक में सभी 7 जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। मुख्य सचिव ने सीमा पर 24 घंटे गश्त, तस्करी और साइबर अपराध पर सख्त कार्रवाई तथा सीमावर्ती गांवों में विकास और टेलीकॉम कनेक्टिविटी तेज करने के निर्देश दिए हैं। आज सावन की तीसरी सोमवारी के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न शिवालयों और प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई है। भक्ति गीतों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो रहा है। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ, सोनपुर के हरिहरनाथ, मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ, रोहतास के गुप्ता धाम, पटना के बैकटपुर धाम समेत प्रमुख शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। आज नाग पंचमी भी है, इसे लेकर आज की पूजा का विशेष महत्व माना जा रहा है। हमारे कैमूर संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर जिले में नाग देवता की पूजा अर्चना की जा रही है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता के कारण राज्य के विभिन्न भागों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। औरंगाबाद, भभुआ, जमुई, गया, नवादा और रोहतास जिले के कई भागों में दोपहर बाद से तेज बारिश हो रही है। इधर पटना और आसपास के क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर तेज बारिश दर्ज की गई। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बक्सर, जहानाबाद, नवादा, रोहतास, औरंगाबाद, भभुआ और गया जिले में कई स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
2: दिनांक 18 अगस्त को दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य हिस्सों में तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और आंधी तूफान बिजली गिरने की संभावना है। बक्सर, जहानाबाद, नवादा और रोहतास जिलों में भारी बारिश की संभावना है। औरंगाबाद, भभुआ और गया जिलों में बहुत भारी बारिश की संभावना है। उत्तर पश्चिम हिस्सों में तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और आंधी तूफान बिजली गिरने की संभावना है। सारण, सिवान और वैशाली जिलों में भारी बारिश की संभावना है।
1: भागलपुर के रहने वाले 6 वर्षीय बालक रियान सिद्धार्थ ने सिंगापुर में आयोजित आसियान प्लस शतरंज चैंपियनशिप में 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रियान की इस उपलब्धि पर बधाई दी है। श्री चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रियान की प्रतिभा, एकाग्रता और मेहनत के परिणाम स्वरूप ये सफलता मिली है। बिहार को अपने इस नन्हे चैंपियन पर गर्व है। शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र के कबीरपुर गांव में छापेमारी कर पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड गिरोह के एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से एसएसबी और पुलिस की संयुक्त छापेमारी में लगभग 1400 लीटर नेपाली शराब बरामद की गई है। इस संबंध में मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। अरवल जिले के विभिन्न पंचायतों और टोलों में 18 अगस्त से 20 अगस्त तक संत रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर कलश यात्रा समेत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पटना में निर्वाचन साक्षरता क्लब 2.0 की शुरुआत की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विद्यार्थी सहयोग पोर्टल का शुभारंभ किया। कहा, शिक्षा व्यवस्था में आएगी पारदर्शिता। लखीसराय भगदड़ घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरी शोक संवेदना जताई। राज्य सरकार ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान की घोषणा की। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद, भभुआ और गया जिले में अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: सावधान, क्या आप जानते हैं आपके द्वारा पॉलिथीन में फेंका गया खाद्य पदार्थ पशुओं की जान ले सकता है। पॉलिथीन में लिपटा बचा हुआ खाद्य पदार्थ पशुओं का साइलेंट किलर बनता जा रहा है। खाद्य पदार्थों के साथ ये पॉलिथीन उनके पेट में जमा होकर पाचन तंत्र को बंद कर देता है, जिससे उनकी

0: मौत तक हो सकती है। पॉलिथीन के कैरी बैग पर लगाए गए प्रतिबंध का पालन करें, उसे खुले में न फेंकें, बचे हुए खाद्य पदार्थों का सही निपटान करें, पॉलिथीन मुक्त समाज बनाएं, पशुधन बचाएं।
1: डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: कभी घर के अंदर की हिंसा, कभी बाहर की बदसलूकी, अक्सर महिलाएं सोचती हैं मेरी बात कौन सुनेगा।
2: माँ अगर कहीं भी कोई परेशानी हो तो क्या करें?
3: बस याद रखो 1 नंबर 181
0: बिहार महिला हेल्पलाइन 181 महिलाओं और बालिकाओं के लिए 24x7 टोल फ्री सेवा है। मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, छेड़खानी, दहेज प्रताड़ना, मानव तस्करी, यौन उत्पीड़न जैसी किसी भी समस्या में करें कॉल।
3: हम आपकी बात सुनते हैं, शिकायत दर्ज करते हैं और जरूरत के अनुसार पुलिस, अस्पताल, एम्बुलेंस, कानूनी सहायता एवं अन्य संबंधित सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं। महिलाओं से जुड़ी सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी चाहिए, जवाब है 181। अब चुप्पी नहीं, जवाब है 181।
0: महिला हेल्पलाइन 181 हर महिला का भरोसेमंद साथी। समाज कल्याण विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
5: ब्रो ये फटा है। सुन कते फटे हैं पुराने नोट को?
2: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
5: वाओ नया नोट मिलेगा?
6: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
2: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो,
7: कूल रहो।
8: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है गया जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मवीर भारती।
9: गया जिले में स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। गांधी मैदान स्थित हरिहर सुब्रमण्यम स्टेडियम में कृषि मंत्री से जिला प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। बोध गया के महाबोधि मंदिर, विष्णु पद मंदिर और फल्गु नदी के तट पर भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिले वासियों ने देशभक्ति नारों के साथ राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शेरघाटी अनुमंडल में भी घर घर तिरंगा अभियान के तहत कार्यक्रम हुए। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने जिला समाहरणालय से गांधी मंडप तक निकाली गई तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। इसमें जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, एनसीसी कैडेट्स, स्कूली विद्यार्थियों, स्काउट गाइड, जीविका दीदियों और बड़ी संख्या में आम लोगों ने भाग लिया। विद्यार्थियों की समस्याओं और सुझावों को जानने के लिए कॉफी विद डीएम कार्यक्रम का दूसरा सत्र आयोजित किया गया। जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने विद्यार्थियों से संवाद किया। विद्यार्थियों ने शिक्षा, खेल, युवा विकास, डिजिटल कौशल, रोजगार और प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने से जुड़े सुझाव साझा किए। गया जिले में करीब 6,000 करोड़ के निवेश से एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने की दिशा में उद्योग विभाग और महाशक्ति ग्रुप के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रस्तावित संयंत्र की उत्पादन क्षमता 10 से 15 लाख टन प्रति वर्ष होगी, जिससे जिले में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के साथ सहायक और लघु उद्योग को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि स्टील प्लांट से गया जिले की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वहीं गया में बाल श्रम उन्मूलन को लेकर बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद सिंह और विधान पार्षद अनिल शर्मा ने मगध प्रमंडल के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में बाल श्रम मुक्त पंचायत घोषित करने और बाल श्रमिकों के पुनर्वास की कार्य योजना पर चर्चा हुई। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की क्रॉस वर्ल्ड प्रतियोगिता में गया जिले के 3 विद्यार्थियों ने पुरस्कार प्राप्त किए। संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती वर्ष के राज्यव्यापी अभियान के तहत पवित्र कलश गया के मानपुर स्थित खीरु धर्मशाला पहुंचा। श्रद्धालुओं और सामाजिक संगठनों ने कलश का स्वागत किया।
8: और अब प्रस्तुत है भागलपुर जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता विनोद कुमार।
10: सावन माह में भागलपुर जिले का सुल्तानगंज शिव भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। अजगैबीनाथ धाम से देवघर तक कांवर यात्रा जारी है। देश के विभिन्न हिस्सों के साथ विदेशों से भी शिव भक्त सुल्तानगंज पहुंच रहे हैं और गंगा जल लेकर करीब 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर देवघर में बाबा वैद्यनाथ पर जल अर्पित कर रहे हैं। वहीं राज्य सरकार की ओर से हेलीकॉप्टर से कांवरियों पर पुष्प वर्षा भी की जा रही है। 31 अगस्त तक चलने वाले श्रावणी मेला में जगह जगह सेवा शिविर, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी अलंकृता पांडे और एसएसपी प्रमोद कुमार यादव व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी कर रहे हैं।

0: बढ़ने के बाद में बैरिकेडिंग का लगातार।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। सुनते हैं फिल्म संगीत।

साधना सरगम और उदित नारायण को अभी आप सुन रहे थे फिल्म किस्मत में। समीर के लिखे इस गाने को संगीत दिया था आनंद मिलिंद ने।

एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा को अभी आप सुन रहे थे फिल्म सुहाग में। समीर के लिखे इस गाने को संगीत दिया था आनंद मिलिंद ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।

बंदिश फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। समीर के लिखे इस गाने को संगीत दिया था आनंद मिलिंद ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।

0: ऐ मेरी हमरक्स, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

मोहरा फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब प्रस्तुत है मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार।

नमस्कार बंधु, स्वागत अछि अपने सब गोटे के सिंगरहारक आजुक अंक में। एहि टटका अंकक संग उपस्थित भ गेल छी हम सोनू। अहाँ सब तो जनित छी जे आधा घंटा धरि अहाँक साहित्यिक सहयात्री बनि हम अहाँक रेडियो सेटक संग संग न्यूज ऑन AIR ऐपक माध्यम सँ अहाँ सभक मोबाइल सेट पर सेहो गप करैत उपस्थित रहब।

पूनम कुमारीसँ ई गीत हमसब सुनि रहल छलहुँ हैं। असलमे एखन सावन मास चलि रहल अछि ने, आ ताहूमे आइ सोम अछि, मने शिव आराधनाक दिन अछि। ओना तऽ सब दिने शिवक आराधना होइत अछि, किन्तु आइ विशेष दिन अछि, कारण जे सावनक सोम आइ कतेको कमरथुआ जल लऽ कऽ शिव पर जलार्पण केने हेता। से किछु तऽ गंगासँ जल लेने हेता, तऽ किछु कमला नदीसँ, कतौ शिव पर कोशीक जलार्पण कयल गेल हेतनि तऽ कतौ कमलाक आकि जीवछक। कहबाक अछि जे सोम आ जे आइ अछि, मने सावनक सोम जे शिव आराधनाक दिन अछि, ताहिमे एहि दिनमे हमसब ई शिव नचारी सुनलहुँ। आ पहिने कहलहुँ हैं जे गीत शुरुएसँ अछि, जहियासँ मानवक आरम्भ भेल हैत, कारण जे मानव आरम्भक सङ्गहि ओकर सुख दुख ओकरा सङ्गहि आयल छैक। कतौ बजबाक लेल ओकरा शब्द चाही, व्यक्त करबाक लेल ओकरा अपन भाव चाही, से गीतक रूपमे बहराइत रहल अछि, जे अखन एहि नचारीक माध्यमसँ हमरा लोकनि सुनलहुँ। इएह तऽ छैक परिवारक सङ्ग जीयब, परिवारक जे सुख दुख छै से व्यक्त करब ओकरा गीतक माध्यमसँ। आ से गीतसभ बहुत रास भेटैत अछि हमरा मैथिली काव्यमे सेहो, खास कऽ जखन हम महाकवि मने विद्यापति काव्यमे देखैत छी, तऽ हमरा शिव विषयक कतेको गीतक भरमार भेटैत अछि। तकर एकटा कारण इहो लगैत अछि जे महाकवि स्वयं शिव भक्त छलाह, से एकटा पदक माध्यमसँ ओ स्वयं कहनहुँ छथि। ओ कहैत छथि, आन चान गण हरि कमलासन सब परिहरि हम देवा भक्त बछल, प्रभो बान महेश्वर जनि कैल तुअ सेवा। अर्थात ओ कहै छथि जे केओ चंद्रमाक पूजा करै छथि तऽ केओ विष्णुक पूजा करै छथि, किंतु हम भक्त वत्सल बान महेश्वरक पूजा कैल अछि। ई बान महेश्वर जे महादेव छथि से बिस्फीसँ उत्तर भैरवा नाम

0: नामक स्थान में आयु विराजमान छथि। ततबे नहि आगू महाकविक कहै छथि जे लोढ़ब कुसुम तोड़ब बेलपात पूजब सदाशिव गौरीक साथ। अर्थात कवि सदैव शिवक पूजा करै छथि करैत रहला अछि। से लगैया जेना ओ एहि लेल संकल्पित छलाह। हम संकल्पित सेहो छी अपन कार्यक्रम अहाँ सब धरि पहुँचेबाक लेल। आ एहि कार्यक्रमक जे रूपरेखा रहल अछि से तऽ अहाँ सबके बुझले अछि, किंतु हमरा इहो दायित्व अछि जे कार्यक्रमक बीचमे जे कोनो संदेश अछि सेहो अहाँ सब धरि बिलहि दी।
1: आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233।
3: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन में करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
4: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
5: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
6: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
5: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800420-2233 पर कॉल करें।
3: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन में करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
4: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
5: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
6: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
5: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800420-2233 पर कॉल करें।
0: हाँ, ई संदेश सुनि रहल छलहुँ हैं, एकदम सामयिक संदेश अछि। एखन जे समय छै ने, ई जे सावन भादवके मास होइत अछि, एहि मासमे साँप सेहो बेसी सह सह करैत रहैत अछि। आ साँप कटबाक जे घटना दुर्घटना छै से एहि मासमे बढ़ि जाइत अछि। तऽ ई बातके हरदम हमसब ध्यान राखी जे जँ ककरो आस पड़ोसमे एहन स्थिति होइ साँप कटबाक, तऽ हमसब झाड़ेबाक पक्षमे नहि जाइ, अपितु ओकरा तुरंत अस्पताल लऽ जाइ। इएह संदेश हमसब सुनै छलहुँ हैं। आ ताहिसँ पहिले हम गप कऽ रहल छलहुँ हैं गीतपरमे। गीत सेहो केहन शिव विषयक गीत जे महाकविक काव्यमे आयल अछि। महाकविक बहुत रास एहन गीत अछि जे शिव विषयक गीत सब अछि, से सब तरहें। कारण जे जखन हम शिव विषयके गीत सब सुनै छी तऽ अपन जे दैनिक जीवन छै मनुष्यक से

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एखन शनेस हमसब सुनि रहल छलहुँ हैं आ ताहिसँ पहिने अरविन्द कुमार झासँ हमसब नचारी सुनि रहल छलहुँ हैं। ई नचारी भने ही महाकविक नहि छलनि हैं, किन्तु ओ नचारी महाकविक लिखल होनि कि आन कोनो कविक। नचारी तऽ नचारी होइत अछि आ सेहो शिव विषयक। ओहिमे मनुष्य अपन जीवन अवश्य तकैत अछि आ ओकरा भेटतो छैक आ से आइ मने सोम दिन तऽ निश्चिते। आ से देखू ने, आइ सोमे नहि अछि, आइ 17 अगस्त सेहो अछि। मने अजुके दिन मैथिली साहित्यक प्रख्यात कथाकार, उपन्यासकार, गीतकार, इतिहासकार प्रोफेसर मायानंद मिश्रक जन्मदिवस सेहो छन्हि। प्रोफेसर मायानंद मिश्र जतबे प्रख्यात लेखक छलाह, तहिना एकटा कुशल मंच संचालक सेहो छलाह। कहल तऽ इहो जाइत अछि जे मायानंद मिश्र जाहि मंच पर उपस्थित भऽ जाइत छलाह, तहि मंच के सफलताक गारंटी निश्चित भऽ जाइत छल और हुनका सुनबाक लेल श्रोताक हुजूम कार्यक्रम स्थल दिस अबैत छल। ई जादू छल हुनक, माने माया बाबूक शब्दक, हुनक आवाजक। मायानंद मिश्र आरंभमे आकाशवाणीसँ जुड़ल छलाह, बादमे सहरसा कॉलेज सहरसामे मैथिलीक प्राध्यापक नियुक्त भेला। आजीवन मैथिली लेल ओ लागल रहला, मैथिली सेवामे लागल रहला आ हुनका मंत्रपुत्र उपन्यास लेल साहित्य अकादमिक पुरस्कार सेहो प्रदान कयल गेलनि। हमरा लोकनि समय भेटतै तऽ आर गप सप करब, मुदा आइ हमर मोन अछि जे आइ जैं कि सौनक सोम अछि तऽ हमसब शिव आराधना कनि बेसी केलहुँ हैं, तऽ किएक ने आइ नचारी हमसब कनि एकटा बेसी सुनी आ फिर गप करी।
3: गौरा तोरो सजन माना

0: अभी आप सुन रहे थे मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: फिर अंग्रेजी और उसके बाद उर्दू में।
2: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं की गहन जांच करने का

0: निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से यूपीआई के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गॉल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और हमलों की साजिश नाकाम की। एक रिपोर्ट।
1: ये आतंकी गतिविधियां स्वतंत्रता दिवस के आसपास की जानी थी। इस ऑपरेशन के तहत 14 राज्यों में 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51 और पंजाब से 44 लोग शामिल थे। ऑपरेशन के दौरान आईएसआई समर्थित इस आतंकी संगठन के पास से आईईडी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी कैमरे बरामद किए गए। शहजाद भट्टी नेटवर्क पाकिस्तान में स्थित और आईएसआई समर्थित एक आतंकी सिंडिकेट है जो पूरे भारत में ग्रेनेड, आईईडी और पेट्रोल बम हमलों और टारगेटेड हत्याओं से जुड़ा है। अब तक इस नेटवर्क के खिलाफ 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं और 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं। अमन यादव के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलीन ब्लैक, स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है।
2: भारत में पिछले 12 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 7 गुना बढ़ी है, अब 13 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स 11 गुना बढ़कर 4 लाख करोड़ से ज्यादा के इलेक्ट से होने लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, उसके बाद में मॉड्यूल्स और उसके बाद में कंपोनेंट्स और आगे डीप जाने पर कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने वाले मटेरियल्स और कैपिटल इक्विपमेंट, जिन मशीनों से इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चर होती है।
0: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। एक रिपोर्ट।
3: श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए शक्ति की सप्त धारा से कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में योजनाएं बनाकर और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके इस लक्ष्य को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों

0: की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
2: भारतीय जनता पार्टी

0: युवा मोर्चा अध्यक्ष रूप कुमार चौधरी, महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त पदाधिकारी पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारी विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा है कि ब्रिक्स संगठन पिछले दो दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है। आज नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य समूह और संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान में मध्य करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे वर्ष 2002 और 2003 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले एक दशक में भारत की विदेश नीति किस प्रकार विकसित हुई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान किए। पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण, पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने नियमों को समाप्त करने और नए नियम बनाने, प्रशासन में तकनीकी बदलाव तथा लेखा व्यवस्था जैसी विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार बदलती प्रशासनिक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार पेंशन प्रक्रिया को लगातार सरल बना रही है। उन्होंने बताया कि पेंशन फॉर्म से अनावश्यक प्रावधान हटाए गए हैं और जटिल प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है।
2: भारत सरकार में सेवानिवृत्त या पेंशनर्स की संख्या जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वर्किंग एम्प्लॉय उससे कहीं अधिक है। रिटायरमेंट हैपनिंग एट द एज ऑफ 60 व्हेन द लाइफ स्पैन हैज गॉन ऑलमोस्ट अप टू 70 सो मोस्ट ऑफ दीज रिटायरिंग कुलीग्स आर इन द प्राइम ऑफ देयर हेल्थ ऑल्सो प्राइम ऑफ देयर एक्सपर्टाइज प्राइम ऑफ देयर एक्सपीरियंस और इसलिए उनको इस तरह से छुट्टी पे न जाने दिया जाए। उनकी सेवाएं, उनका योगदान किसी न किसी तरह से राष्ट्र निर्माण के कार्य आए और किस प्रकार आ सकता है ये उनके साथ चर्चा करने का माध्यम बने।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने फर्जी जमानतदारों को लेकर चिंताओं के बीच मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम से संबंधित मामलों में आरोपी विदेशी नागरिकों के लिए जमानत की शर्तें कठोर करने का आदेश दिया है। इस संबंध में कई निर्देश जारी करते हुए न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि जमानत पर रिहा किए गए विदेशी नागरिकों को अपने पासपोर्ट संबंधित न्यायालयों में जमा करने होंगे और वे पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा नहीं कर सकेंगे। देश की 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी के लिए बेरोजगारी दर जुलाई में घटकर 5.1% रह गई, जो इस वर्ष जून में 5.5% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मासिक श्रम बल और बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जारी किए हैं। ग्रामीण बेरोजगारी दर पिछले महीने घटकर 4.5% रह गई, जबकि जून में यह 5% थी। हर घर तिरंगा अभियान का आज समापन हो गया। हर घर तिरंगा अभियान के पांचवें वर्ष में लाखों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने, तिरंगा यात्राओं में शामिल होने और वंदे मातरम गाने के लिए एकजुट हुए। 2022 में शुरू हुआ यह अभियान अब देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। एक रिपोर्ट।
3: इस वर्ष का अभियान भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर केंद्रित था, जिसमें देशभक्ति के अनोखे जश्न के तौर पर राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगीत को एक साथ लाया गया। देशभर में तिरंगा यात्राओं, साइकिल और मोटरसाइकिल रैलियां, सांस्कृतिक जुलूसों, स्कूल कॉलेज के कार्यक्रमों और सामुदायिक आयोजनों में हर घर तिरंगा की भावना साफ दिखी। पिछले 5 वर्षों में हर घर तिरंगा लोगों की भागीदारी और गर्व का एक देशव्यापी प्रतीक बन गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: ये आकाशवाणी है। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 281 अंक लुढ़क कर 77,728 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी में 78 अंक की गिरावट देखी गई और ये 24,288 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 18 पैसे कमजोर होकर 95.61 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब कुछ खेल खबरें। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल को और आयुष ने पुरुष सिंगल्स में चीन के शी युकी को हराया। उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लगभग 42,000 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है।
2: केंदुझर, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, जाजपुर और केंद्रापड़ा में बाढ़ का असर हुआ है, जिससे 1,304 गांव के लगभग 800,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बैतरणी, ब्राह्मणी और सालंदी नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को भोजन, पीने का पानी और बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक और जाजपुर जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया और राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। राज्य के जल संसाधन विभाग का कहना है कि यह स्थिति अगले 4 से 5 दिनों तक बनी रह सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने झारखंड में कल के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले ISI समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से UPI के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. ISI-backed terror group Shehzad Bhatti network destroyed ahead of Independence Day, says Home Minister Amit Shah. Over 200 operatives held. Government approves 31 new proposals worth nearly 7,900 crore rupees under Electronics Components Manufacturing Scheme. Education Minister Prahlad Joshi holds meeting with senior officials on examination reforms. Directs National Testing Agency to conduct thorough audit of all exam processes. BJP announces new team of national office bearers, Piyush Goyal, Smriti Irani and Vasundhara Raja Sindhya among key names. Indians in Qatar can now send money home through UPI from post offices. And in men's cricket, India take 178-run lead after restricting Sri Lanka to 284 in first innings of Gaul Test. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has informed that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISI-backed terror group Shehzad Bhatti network ahead of Independence Day. He informed that the government also thwarted its plans for

0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत ने यौम आज़ादी से कबल आईएसआई की हिमायत वाले दहशतगर्द ग्रुप शहजाद भट्टी नेटवर्क को तबाह कर दिया है। जनाब शाह ने बताया कि हुकूमत ने इस ग्रुप के 200 से ज्यादा कारिंदों को गिरफ्तार करते हुए उनके मुमकिन हमलों के मंसूबों को भी नाकाम बना दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने 14 रियासतों के मुख्तलिफ मकामात पर तालमेल पर मबनी कार्रवाइयां अंजाम देते हुए इस नेटवर्क को तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने के भारत के अज़्म की उम्दा मिसाल है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: सिक्योरिटी एजेंसियों ने इस महीने की 12 तारीख को रियासती पुलिस फोर्सेज के साथ मिलकर कई रियासतों में तालमेल पर मबनी ऑपरेशन के जरिए हकीकी वक्त पर मबनी इंटेलिजेंस इश्तराक की बिना पर शहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई अंजाम दी है। ये नेटवर्क यौम आज़ादी के आसपास खलल डालने की कोशिश कर रहा था। ऑपरेशन के दौरान 14 रियासतों से तकरीबन 200 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51 और पंजाब से 44 अफराद शामिल हैं। आईएसआई की माली एयानत वाले इस ग्रुप से आईईडी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, जिंदा कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सीसीटीवी कैमरे बरामद किए गए। ये नेटवर्क मुख्तलिफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस था। शहजाद भट्टी नेटवर्क पाकिस्तान में मुकीम आईएसआई की हिमायत वाला दहशतगर्द ग्रुप है, जो भारत में ग्रेनेड, आईईडी, पेट्रोल बम हमलों और टारगेटेड किलिंग्स में मुलविस था। शहजाद भट्टी नेटवर्क पुलिस, दिफाई तनसीबात और मजहबी मकामात की रेकी के लिए मुकामी कारिंदों को रकम अदा करता था ताकि वो जासूसी के लिए सीसीटीवी कैमरे नसब कर सकें। शहजाद भट्टी नेटवर्क मामले में अब तक 80 से ज्यादा FIR दर्ज की जा चुकी हैं और 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: हर घर तिरंगा मुहिम आज इख्तिताम पजीर हो गई। हर घर तिरंगा मुहिम के 5वें साल ने एक तरफ जहां तिरंगे को लाखों भारतीयों के दिलों से जोड़ा, वहीं सरहद पार भारतीय भी तिरंगा लहराने, तिरंगा यात्राओं में शामिल होने और वंदे मातरम गाने के लिए यकजा हुए। मुल्कगीर पैमाने पर मनाई गई इस मुहिम ने शहरियों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को जगाया, कौमी यकजहती को मुस्तहकम किया और भारत के सकाफती विरसे को फरोग दिया। साल 2022 में शुरू हुई हर घर तिरंगा मुहिम अवामी शमूलियत वाली मुल्क की सबसे बड़ी तहरीकों में से एक के तौर पर उभरी है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इस साल हर घर तिरंगा मुहिम भारत के कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल की तकमील से मंसूब रही। इस मुहिम ने हुब्बुल वतनी के मुनफरिद इम्तजाज के तहत कौमी परचम और कौमी गीत को यकजा किया। इस साल की मुहिम की खासियत लोगों का इसमें नित नए तरीकों से शामिल होना था। रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में तिरंगा यात्राओं, साइकिल और मोटरसाइकिल रैलियों, सकाफती जुलूसों, स्कूल और कॉलेज प्रोग्रामों और बिरादरियों के जश्न में हर घर तिरंगा का जज्बा साफ नजर आ रहा था। स्कूलों और कॉलेजों ने कौमी परचम और वंदे मातरम के बारे में जानने के लिए नौजवान लोगों की हौसला अफजाई की। ये मुहिम हर साल लोगों को तिरंगे से जोड़ने के नए तरीके लाती है और साल 2026 में भी इस मुहिम को मनाने का दायरा काफी वसी रहा। दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: हुकूमत ने 7,877 करोड़ रुपए की तखमीना जाति सरमायाकारी वाली इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जों की मैन्युफैक्चरिंग स्कीम ECMS के तहत 31 मजीद दरख्वास्तों को मंजूरी दी है। इन मंजूरियों से 9,500 से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा होने की उम्मीद है। ये दरख्वास्तें 10 रियासतों से मौसूल हुई हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7 और महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 दरख्वास्तें शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान इन दरख्वास्त गुजारों को मंजूरी नामे सौंपे। ये दरख्वास्तें एसिटाइलिन ब्लैक स्पीकर्स और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल कैपेसिटर्स, ट्रांसीवर्स और कॉयल्स जैसी मसनूआत की मैन्युफैक्चरिंग से ताल्लुक रखती हैं। तकरीब से खिताब करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि इन 31 मंजूरियों के साथ ही इस स्कीम के तहत कंपनियों की मंजूर की गई दरख्वास्तों की मजमूई तादाद 106 हो गई है। जनाब वैष्णव ने बताया कि हुकूमत ने 59,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी रागिब करने का हदफ मुकर्रर किया था, लेकिन अब हुकूमत अपने हदफ से आगे बढ़ गई है और 69,000

0: करोड़ रुपए की सरमायाकारी हासिल कर चुकी है।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: वजीर तालीम जनाब प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में आला तालीम के महकमे के सेक्रेटरी, इम्तिहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA और दीगर आला ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग की। वजीर मौसूफ ने इम्तिहानात से मुतालिक जाब्तों पर सख्ती से अमलावरी किए जाने की हिदायत दी। उन्होंने राजदाराना अमली सरगर्मियों, अलग थलग कमरों, एयर गैप सिस्टम्स यानी बाहरी नेटवर्क से मुनकता निजाम, डिवाइस जमा करवाने जैसे जाब्तों पर जंगी पैमाने पर अमल किए जाने की तलकीन की। NTA से कहा गया है कि वह सभी इम्तिहानात के अमल की तफसीली जांच करे और उसे दुरुस्त करने के लिए किए गए मुतालिका इकदाम के बारे में रिपोर्ट दाखिल करे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन ने आज पार्टी के कौमी ओहदेदारों की नई टीम का ऐलान किया। जनाब नबीन ने 13 कौमी नायब सुदूर का तकर्रुर किया है, जिनमें वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जयपांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा शामिल हैं, जबकि जनाब पीयूष गोयल को पार्टी का कौमी खजांची मुकर्रर किया गया है। नीज BL संतोष को तंजीमी कौमी जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई है। जनाब नबीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लब कुमार देव समेत पार्टी के 8 लीडरों को कौमी जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मुकर्रर किया है। पार्टी ने मुख्तलिफ मोर्चों के लिए भी नए सरबराहों के नामों का ऐलान किया है। इनमें डॉक्टर हेमंग जोशी को बतौर युवा मोर्चा सदर, रूप कुमार चौधरी को महिला मोर्चा सदर और बंसीलाल गुजर को किसान मोर्चा का सदर के तौर पर तकर्रुर किया गया है। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्टी के ओहदेदारों की नई टीम को मुबारकबाद दी। सुप्रीम कोर्ट ने मुनशियात और नफसियात पर असरअंदाज होने वाले मादों की रोकथाम से मुतालिक नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात में मुलव्वस गैर मुल्की शहरियों के लिए जमानत की शराइत सख्त कर दी है। यह फैसला फर्जी जमानत के खदशात के मद्देनजर किया गया है। इस सिलसिले में मुतादिद हिदायत जारी करते हुए जस्टिस संजय करोल और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि जमानत पर रिहा होने वाले गैर मुल्की शहरियों को अपने पासपोर्ट मुतालिक अदालत में जमा कराने होंगे और उन्हें पेशगी इजाजत के बगैर भारत से बाहर सफर करने के मजाज नहीं होंगे। अदालत ने मजीद कहा कि ऐसे मुलजिमान को रिहाई के एक हफ्ते के अंदर गैर मुल्कियों के इंदराज के इलाकाई दफ्तर FRRO में अपना इंदराज कराना होगा। अदालत ने हिदायत दी कि आमतौर पर मुलजिम की जमानती मचलके की रकम के मसावी 2 जमानतें भी जमा करानी होंगी। इसके अलावा अगर तफ्तीश के दौरान मुलजिम के भारत में रिहायशी पते और राबते की मालूमात की तस्दीक हो चुकी हो, तब भी जमानत के हुक्म के 3 दिन के अंदर इन मालूमात की दोबारा बजाते खुद पेश होने पर तस्दीक की जाएगी। जम्मू कश्मीर में 2 नामालूम अफराद के मुश्तबा नकलो हरकत के बारे में खुफिया मालूमात मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने उधमपुर के जंगलाती इलाके रामनगर में नाकाबंदी और तलाशी की वसी मुश्तरका कार्रवाई की। जम्मू के हमारे नामानिगार के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस के खसूसी कार्रवाई ग्रुप SOG, फौज और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों पर मुश्तमिल एक मुश्तरका टीम ने जोफर इलाके की नाकाबंदी की और मुश्तबा अफराद का पता लगाने के लिए तलाशी की कार्रवाई की। आला ओहदेदारों की मौजूदगी में यह कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। कार्रवाई में गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। इलाके में कई मकामात पर यह कार्रवाई जारी है। इंतजामिया ने मकामी लोगों से सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ तआवुन करने की अपील की है। उधमपुर जिले में भी सिक्योरिटी फोर्सेस चौकसी बरत रहे हैं और अमन और सलामती को लाख किसी भी खतरे से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन तुहीन कांता पांडे ने कहा है कि 3 अगस्त से शुरू किया गया नया क्लोजिंग ऑक्शन सेशन जारी रखा जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट के साइबर रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म के इफ्तिताह के मौके पर बात करते हुए जनाब पांडे ने कहा कि बोर्ड इदारे की जानिब से मौसूल होने वाली तजावीज पर गौर करेगा और जरूरत के मुताबिक तब्दीली भी लाएगा। سیبی کلوزنگ آکشن سیشن سیبی کی جانب سے متعارف

0: कराया गया 3:15 से 3:35 तक 20 मिनट का नीलामी सेशन है। इसका मकसद F&O सेक्शन में शामिल स्टॉक्स की सरकारी अख्तितामी कीमत तय करना है, जिसके लिए ऑर्डर जमा किए जाते हैं और उन्हें एक वाहिद मुतवाजन कीमत पर मैच किया जाता है। अब कतर से भारत रकम की मुंतकीली के लिए UPI से मुंसलिक पोस्ट ट्रांसफर सर्विस दस्तियाब है। इस सर्विस के तहत कतर में मौजूद सारिफिन कतर पोस्ट के मराकज के जरिए बराह रास्त भारत में UPI से मुंसलिक बैंक अकाउंट में रकम मुंतकिल कर सकते हैं। मवासलात की वजारत के मुताबिक ये सर्विस रकूम की बैन अलाक्वामी मुंतकली के लिए एक तेज, महफूज, आसान और काबिल रसाई जरिया फराहम करती है, जिसे खासतौर पर कतर में मुकीम बड़ी तादाद में भारतीय बिरादरी और भारत में मौजूद उनके अहल खाना को फायदा पहुंचेगा। ये इकदाम डाक के निजाम की वसी रसाई को भारत के डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे के साथ जोड़ता है, ताकि सरहद पार रकूम की मुंतकली का एक मौसर और आसान वसीला फराहम किया जा सके। शिमाली ओडिशा में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन है, जहां 6 जिले और 126 गांव नदियों की बढ़ती सतह आब और लगातार बारिश की वजह से मुतासर हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ओडिशा के 6 जिले केओंझर, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, जाजपुर और केंद्रपाड़ा में सैलाब से शदीद नुकसान पहुंचा है और 1304 गांव के तकरीबन 8 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। बेतरानी, बरहमनी और सालंदी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सैलाब से मुतासिरा इलाकों में लोग खुराक, पीने के पानी और बिजली की शदीद किल्लत का सामना कर रहे हैं। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
0: भारतीय महकमा मौसमियात ने झारखंड में कल शदीद से इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने बिहार, छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। मर्दों के क्रिकेट में गाले में खेले जा रहे पहले टेस्ट में भारतीय गेंदबाजों ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान श्रीलंका को पहली इनिंग्स में 284 रन पर आउट कर दिया। इस तरह भारत ने 178 रन की सबकत हासिल कर ली है। भारत की जानिब से सबसे ज्यादा 4 विकेटें मानव सूथर ने ली, जबकि रविन्द्र जडेजा ने 3 विकेट लिए। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में जडेजा ऐसे चौथे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 350 विकेटें ली हैं और 4000 रन बनाए हैं। साबिक आलमी चैंपियन PV सिंधु ने आज कहा कि कोर्ट की हालत बहुत बेहतर है, जिससे उन्हें अपने खेल को अच्छी तरह तरगीब देने में मदद मिली है। आयरलैंड की अपनी हरीफ खिलाड़ी सोफी नोबल पर जीत हासिल करने के बाद मीडिया वालों से बात करते हुए उन्होंने ये कहा। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि यौम आजादी से कबल ISI की हिमायत वाले शहजाद भट्टी दहशतगर्द नेटवर्क को तबाह कर दिया गया है। जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत ने इस नेटवर्क के 200 से ज्यादा कारिंदों को गिरफ्तार भी किया है। हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जों की मैन्युफैक्चरिंग स्कीम ECMS के तहत तकरीबन 7900 करोड़ रुपए मालियत की 31 नई तजावीज को मंजूरी दी है। वजीर तालीम प्रहलाद जोशी ने इम्तिहानी असलाहत के मौजू पर सीनियर अफसरान के साथ मीटिंग की। वजीर तालीम ने सभी इम्तिहानात के तरीकाकार का जामे ऑडिट करने की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को हिदायत दी। BJP ने पार्टी अहदेदारों की नई कौमी टीम का ऐलान किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है
3: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आज के समय में उपभोक्ताओं के लिए अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझना बहुत जरूरी हो गया है। बाजार में लगातार नए नए उत्पाद आ रहे हैं और अब ये उत्पाद सिर्फ बाजारों में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी उपभोक्ताओं तक पहुंच रहे हैं। भ्रामक लेबलिंग और गलत जानकारी से बचने के लिए उपभोक्ताओं में जागरूकता होना बेहद जरूरी है। सरकार ने उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापारिक गतिविधियों, भ्रामक प्रचार और हानिकारक उत्पादों से बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के अंतर्गत उपभोक्ता कार्य विभाग कई जागरूकता अभियान चलाता है। इनमें जागो ग्राहक जागो एक प्रमुख अभियान है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA की स्थापना 24 जुलाई 2020 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और उन्हें अनुचित व्यापारिक गतिविधियों से बचाना है। तो पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आज का विषय है भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकार जागरूकता यानी मिसलीडिंग लेबलिंग एंड कंज्यूमर राइट्स अवेयरनेस। इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं उपभोक्ता कार्य विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा, और भारतीय खाद्य सुरक्षा

0: और मानक प्राधिकरण FSSAI में साइंस स्टैंडर्ड की संयुक्त निदेशक डॉक्टर कविता रामास्वामी, आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें अपनी आपकी जो है फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-07-8-2371-7117-2371-7106 और 2331-44-44 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करके अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो अनुपम जी, सबसे पहले आपसे हम सवाल जानना चाहेंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है, क्या आप हमें आसान भाषा में समझा सकते हैं इस कानून की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और ये कानून उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा किस प्रकार कर सकता है?
1: मुकेश जी और सभी श्रोतागण, हम सभी लोग पिछले दशक में जो ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केट प्लेस में जो वृद्धि हुई है उससे भली भांति परिचित हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: इस वृद्धि ने जहां एक ओर हमारे जीवन को सुगम बनाया है, आसान बनाया है, वहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड कई नए चैलेंजेस को खड़ा किया है।
0: जी।
1: उन्हीं चुनौतियों का सामना करने के लिए 2019 में नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लाया गया। ये 1986 के एक्ट को रिपील करके आया था। इसमें कई विशेषताएं हैं, कई इसमें खूबियां हैं, पर आज मैं चार विशेषताओं को आपके दर्शकों को, श्रोताओं को बताना चाहूँगा। जिनमें पहला है कि इसमें उन्होंने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA की स्थापना की है। इसका मुख्य कार्य है कि कंज्यूमर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनके विषय में क्लास एक्शन ले जाए, मतलब हर एक कंज्यूमर को अपनी ग्रीवांसेस से खुद ना जाना पड़े कोर्ट में, कचहरी में, या CCPA उनका स्वयं संज्ञान लेता है और क्लास एक्शन लेता है। दूसरी विशेषता है कि इसमें ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केट प्लेस को कंज्यूमर प्रोटेक्शन के दायरे में लाया गया। तीसरा इसमें जो विशेषता थी कि जो प्रोडक्ट लाइबिलिटी का क्लॉज, कि कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, उसका सेलर, यदि उसके प्रोडक्ट में कोई दोष पाया जाता है तो उसके उसके लिए लाइबल बनाया जाता है। और चौथी जो सबसे अच्छी विशेषता है, ऑनलाइन केस फाइलिंग की, कंज्यूमर कमीशंस में अपने ग्रीवांसेस को ऑनलाइन कहीं भी फाइल कर सकता है।
0: जी, बहुत बहुत आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है। कविता जी, आपसे हम जानना चाहेंगे भ्रामक लेबलिंग से क्या मतलब हो सकता है, आप आम उपभोक्ता ऐसे रोजमर्रा में कहाँ कहाँ देखता है?
2: मुकेश जी, ये अब दोबारा पूछ लीजिए। कैन यू शेयर इन इंग्लिश प्लीज?
0: जी, ये जो क्या कहते हैं आपका भ्रामक लेबलिंग, यानी कि जो मिसलीडिंग लेबलिंग है, इसकी मतलब इसको किस तरह से देखते हैं, इसका मतलब क्या है और उपभोक्ता जो है रोजमर्रा में कहाँ कहाँ देखता है?
2: अच्छा, हमारा एक रेगुलेशन है एडवर्टाइजमेंट एंड क्लेम्स के ऊपर। उसमें हमने अच्छा तरह डिस्क्राइब किया कैसे कैसे FBO क्लेम्स प्रोडक्ट के ऊपर ले सकते हैं करके। उसमें हेल्थ क्लेम्स है, न्यूट्रिशन क्लेम्स है, कंडीशनल क्लेम्स है, इक्विवेलेंस क्लेम्स है, मतलब इस तरीके से बहुत प्रोविजन है FBO को क्लेम्स प्रोडक्ट के ऊपर लेने का। उसमें हम बता रहे वो ट्रूथफुल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका साइंटिफिक बैकअप होना चाहिए, क्योंकि एक क्लेम प्रोडक्ट को ऐसे नहीं होना चाहिए वो प्रोडक्ट खाने में वो मील का रिप्लेसमेंट होगा, हमारा बैलेंस डाइट को वो फुलफिल करेगा, और मतलब वो क्लेम इस तरीके से नहीं होना चाहिए वो प्रोडक्ट एक्सेस खाएगा। तो कुछ चीज हम उसको मिसलीडिंग क्लेम, प्रोहिबिटेड क्लेम करके रखा है। मतलब वो अगर उस प्रोडक्ट से वो बेनिफिट नहीं आ रहे, से इम्यूनिटी बूस्टर और कुछ टॉल क्लेम्स बोलते हैं हम, वो प्रोडक्ट का बिल्कुल फॉल्स क्लेम, उस तरीके से नहीं होना चाहिए हमारा। उसका पेनालिटी प्रोविजन भी है अगर कोई मिसलीडिंग क्लेम ले रहा है इन प्रिंटेड मोड और इलेक्ट्रॉनिक मोड में। हमारा एक पोर्टल है।

0: डिस्कस करके उधर अगर कोई भी एनी स्टेक होल्डर अगर कहीं भी मिसलीडिंग क्लेम्स है वो लोग उसको डाल सकते हैं. हम सुओ मोटो उसको एग्जामिन कर रहे हैं एंड हम उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस दे रहे हैं एफबीओ को उस तरीके से क्लेम्स को बदलने का.
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया. और हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं रायबरेली से, रमा शंकर वाजपेयी. रमा शंकर जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है.
2: जी नमस्कार
1: जी, बताएं क्या सवाल है आपका.
2: हाँ, मैं ये पूछना चाहता था कि ये जो भ्रामक लेवल है जैसे दवाइयों के यूज में आता मगर इसको नशे में भी परिवर्तित कर देते हैं तो कैसे पता लगेगा कि ये नशा है या दवाई है.
1: जी कविता मैम बताएं क्या क्या जवाब देना चाहेंगे इसका.
0: दवाई के लिए मतलब हमारे पास न्यूट्रासूटिकल करके एक रेगुलेशन है, फंक्शनल फूड्स, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज, मेडिकल यूज करके उसमें हमने कैसे क्लेम होना है करके भी क्लियरली दे रखा है. अगर वो क्लेम कुछ प्रिवेंशन तरह नहीं होना चाहिए, मतलब डिसीज को क्यूर करेगा, डिसीज को दूर रखेगा करके नहीं होना चाहिए. उसका मतलब डिसीज को रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब सपोर्ट हेल्थ करके कर सकते हैं. से अगर हम कैल्शियम का दवाई ले रहे हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस को मतलब प्रिवेंट रिड्यूस रिस्क को रिड्यूस करने का सपोर्ट करेगा करके ले सकते हैं. अगर सोडियम तक बहुत कम प्रयोग होने में बीपी नहीं आएगा उस तरीके से हम क्लेम्स ले सकते हैं. वेरस हम ये डिसीज को पूरा बंद करेगा करके नहीं हो पाएगा. वो भी इस तरीके से नहीं होना चाहिए, डॉक्टर रिकमेंडेड है उस तरीके से भी नहीं होना चाहिए. कुछ मेडिकल प्रोडक्ट्स मतलब फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस के लिए हम बता देते हैं वो डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे लेना चाहिए करके.
1: जी बिल्कुल. और अनुपम जी आपसे पूछना चाहेंगे कि CCPA यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की भूमिका क्या है, पिछले एक साल में CCPA ने कौन सी बड़ी कार्रवाइयां की हैं.
3: CCPA की स्थापना जुलाई 2020 में हुई थी. पिछले 5 वर्षों में इसने करीब 500 से ज़्यादा नोटिसेज इशू किए हैं.
1: बहुत बड़ी कार्रवाई.
3: या और ये जो नोटिसेज हैं विशेष रूप से जहाँ भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स या वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स पाया गया है उन क्षेत्रों में ये नोटिसेज दिए गए हैं जहाँ कंज्यूमर्स का एज ए क्लास उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना जरूरी था. कुछ जो बड़ी कार्यवाही हुई है वो है सबसे बड़ी ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में. हम सब जानते होंगे बहुत ही मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आते थे. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्लेम करते थे कि जब UPSC का रिजल्ट आता था हमारे इंस्टीट्यूट से 500, 600, 300
1: बैनर लगे होते थे.
3: इनफैक्ट यदि आप सारे को जो भी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एडवर्टाइजमेंट करते थे यदि आप उनके छात्रों की संख्या ऐड कर ले तो UPSC के सिलेक्शन से भी कई बार ज़्यादा हो जाती थी.
1: जी, जी.
3: तो इनको करीब 50 से ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर एक्शन लिया गया जिसमें कई बड़े नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी शामिल हैं. दूसरा जो बड़ी कार्यवाही CCPA ने की है पिछले वर्षों में वो है डार्क पैटर्न को लेकर. डार्क पैटर्न ये है कि जब हम किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो जो चीज़ हम ना करना चाहें हमें लगता है कि जब हम उस प्लेटफॉर्म से बाहर होते हैं वो चीज़ हमसे अनायास भूलवश हो जाती है. तो उनको डार्क पैटर्न कहा जाता है कि इस तरह प्लेटफॉर्म की डिज़ाइन की जाती है. तो कई जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं जिसमें जेप्टो है, इंडिगो है, बुक माई शो, स्पाइसजेट, इनमें इन डार्क पैटर्न को चिन्हित किया गया, उन पर कार्यवाही की गई है. एक जो और बड़ी कार्यवाही CCPA ने की है वो जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जो बैंड प्रोडक्ट्स थे जैसे वॉकी टॉकीज, ड्रोन जैमर्स, एक्सप्लोजिव जो बेचे जा रहे थे जिसमें अमेजन, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया जैसे नामी प्लेटफॉर्म्स थे उन सब पर भी कार्यवाही की गई है. तो कुछ बड़ी कार्यवाही है जो CCPA ने पिछले वर्ष की है.
1: और एक और श्रोता हमारे साथ बिहार के सासाराम से जुड़ गए हैं अमित आंचल. अमित जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है.
4: जी नमस्कार. मेरे ये सवाल था सर कि जैसे भारत में इतना उत्पादन के हिसाब से, खपत के हिसाब से, जैसे कि दूध जो है पेय पदार्थ इसका उत्पादन बहुत ज्यादा होता है और खपत उससे भी दुगना होता है. इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो खाद्य पदार्थ है वो सही है या गलत है. इसलिए इसमें ना बहुत लोगों पर हानिकारक, स्वास्थ्य पर हानिकारक असर पड़ता है.

0: इसको कैसा वहाँ वेरीफाई कर पाएंगे? अभी एक शोध हुआ था न्यूज पेपर में प्रकाशित हुआ था
1: जी,
0: इस पर थोड़ा सा आप इस पर थोड़ा बता दें
1: जी। कविता मैम आपसे सवाल है ये
2: जी, बताइए प्लीज इसको।
1: ये दूध, इनका कहना ये है कि दूध की बात ये कर रहे हैं कि उत्पादन जितना है खपत उससे ज्यादा है, तो उत्पादन और खपत का जो ये गड़बड़ी है, किस तरह से ये पूर्ति हो पाती है ये कहना चाह रहे हैं।
2: अच्छा, दूध के ऊपर मिलावट उसका कैसे करना है
1: जी,
2: करके?
1: जी जी जी FSSAI का।
2: हाँ जी, देखिए हमारे पास दूध का प्रोडक्ट्स का स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड है, वो कौन मैन्युफैक्चर कर रहे FBO उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। हमारे पास भी पूरा टेस्टिंग मैकेनिज्म भी है, हम सर्विलेंस सैंपल उठाते हैं उसमें FBO को पीनलाइज नहीं करते, उसमें कुछ गड़बड़ होता है तो उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस देते हैं। अगर लीगल सैंपल हम लेते तो उसमें कुछ सबस्टैंडर्ड निकल के आ रहा है, मतलब उसका क्वालिटी पैरामीटर में कॉम्प्रोमाइज है, फिर हम उनको पेनाल्टी देते हैं। अगर कुछ अनसेफ निकल के आ रहा है, मतलब कुछ पेस्टिसाइड है, कुछ डिटर्जेंट है, कुछ हसार्डस सब्सटेंस, मतलब हमारा शरीर को बिल्कुल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करने वाला, उसको हम प्रोसिक्यूशन करेंगे। इस तरीके से हाई रिस्क कमोडिटी बोलते हैं हम, दूध तरह हाई रिस्क कमोडिटी को हम पूरा स्टेट्स को दे रखा है, सैंपल उठाना जरूरी है, हमको रिपोर्ट एनुअली दो बार जमा करना है, फूड बिजनेस ऑपरेटर पूरा फूड सेफ्टी ऑफिसर डेसिग्नेटेड ऑफिसर को भी हम टारगेट दे रखे हैं। हम चार बार मिलते हैं सारे फूड सेफ्टी कमिश्नर्स हेडक्वार्टर में आते हैं रिपोर्ट देने का, उसमें इस तरीके से उन्होंने कैसे सर्विलेंस एक्टिविटी किया, कैसे एडल्ट्रेशन को हॉटस्पॉट किधर है करके कैसे पकड़ा, कितना एनफोर्समेंट सैम्पलिंग किया है करके वो लोग हमको शेयर करना चाहिए। इसके अलावा भी हम अवेयरनेस भी बहुत दे रहे हैं, क्योंकि समटाइम्स फार्मर्स को भी नहीं पता होता है किस तरीके से, मतलब बहुत कुछ सोशल मीडिया में भी ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं, वो सारा नॉट पॉसिबल है, मतलब दोनों तरीके से भी है, एक तरफ बहुत डरने का जरूरत भी नहीं है। ऑल्सो हमारा दूध बहुत प्रोड्यूसिंग कंट्री, इंडिया वन ऑफ द टॉपेस्ट, तो ज्यादा मिलावट का भी पॉसिबिलिटी नहीं है। आधा नेगेटिव न्यूज है, आधा में हम बहुत आगे वॉट एवर वे में हमको प्रिवेंट कर सकते हैं, वी आर डूइंग दैट एट द फुलेस्ट पॉसिबल।
1: जी बिल्कुल। तो जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं, हम उन्हें बताना चाहेंगे कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, और आज हम भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकार जागरूकता पर चर्चा कर रहे हैं और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं उपभोक्ता कार्य विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के में साइंस स्टैंडर्ड की संयुक्त निदेशक डॉक्टर कविता रामास्वामी। अनुपम जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है, ई जागृति की शुरुआत 1 जनवरी 2025 को हुई थी और ये उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर सामने आया है, तो ई जागृति ने उपभोक्ताओं के लिए शिकायत दर्ज कराने और उसका समाधान पाने की प्रक्रिया को किस तरह से आसान बनाया है?
3: यह आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है
1: जी।
3: और ई जागृति ने कंज्यूमर डिस्प्यूट एड्रेसल सिस्टम में कई महत्वपूर्ण एवं आधारभूत सुधार किए हैं। अब ई जागृति के माध्यम से कोई भी कंज्यूमर कहीं से भी बिना कंज्यूमर कमीशन ने फिजिकली जाए हुए अपने घर बैठे अपना केस दाखिल कर सकते हैं,
1: बहुत बड़ी सुविधा,
3: उसका पेमेंट कर सकते हैं और हर एक स्टेज पर उनके केस की क्या प्रगति हो रही है, कब वो लिस्ट हो रहा है, कब उस पर ऑर्डर आ रहा है, उसमें समन इशू किए जा रहे हैं, सारी जानकारी उनको घर बैठे मिल सकती है। और बिना कमीशन गए हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से कंज्यूमर कमीशन में अपना पक्ष भी रख सकते हैं और न्याय भी पा सकते हैं। इस व्यवस्था में जब से हमने इसको जनवरी 2025 से लागू किया है, 5 लाख से ज़्यादा नए हमारे साथ इसमें कंज्यूमर्स जुड़े हैं, इसमें करीब 4000 से ज़्यादा NRIs हैं। अब इसमें जो VC फैसिलिटी दी गई है उसके माध्यम से विदेशों में भी जो बाहर, मतलब NRI जो बाहर से इंडिया आए सामान खरीदे और बाहर गए, उनका कोई कंज्यूमर डिस्प्यूट है तो USA, चाइना, दुबई, कई ऐसे देश हैं जो हमारे VC के माध्यम से न्याय प्राप्त कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि ई जागृति के माध्यम से जो कंज्यूमर कमीशन के ऑर्डर

0: हैं उनकी लोकल लैंग्वेज में, मराठी में, गुजराती में, तमिल में, जो भी भारतीय भाषाएं हैं उनमें कंज्यूमर्स को दिए जाते हैं।
1: ये बहुत बड़ी पहल है। और एक और श्रोता हमारे साथ महाराष्ट्र के श्रोता जुड़े हैं, श्रीकांत जाखड़े। श्रीकांत जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: हेलो, नमस्कार।
1: जी श्रीकांत जी,
2: हाँ,
1: श्रीकांत जी
2: मैं
1: सवाल
2: श्रीकांत
1: पूछिए।
2: जाखड़े बोल रहा हूँ पूरे महाराष्ट्र से।
1: जी
2: तो मेरा सवाल ये है कि जैसे कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक चीज वगैरह खरीदते हैं तो वो फ्रेश है या फिर सेकंड हैंड है,
1: जी
2: तो ऊपर से तो लेबल सेम रहता है, तो इसके इसके समाधान का क्या मतलब तरीका क्या है मतलब।
1: कविता मैम, आपसे सवाल है ये।
3: हाँ जी, क्वेश्चन क्वेश्चन ये है मतलब कुछ सामान खरीदने में वो फ्रेश है
1: जी
3: और
1: बिल्कुल,
3: ड्यूरेशन को ऊपर हो गया, वही वही उनका
1: जी
3: सवाल है
1: जी
3: ना।
1: जी जी
3: हाँ
1: बिल्कुल।
3: जी, मतलब एनी प्रोडक्ट शेल्फ लाइफ हम अथॉरिटी डिटरमाइन नहीं करेंगे, मतलब उसका प्रोडक्ट रूम टेम्परेचर में या रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर में कितना दिन रहेगा, एक साल और 6 महीने, वो FBO टेस्ट करके वो प्रोडक्ट का नेचर के हिसाब से वो एक्सपायरी डेट देता है। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी देना जरूरी है, मैंडेटरी है, सेम वे डेट ऑफ एक्सपायरी भी देना जरूरत है। वो सेल्फ में मतलब वो रिटेलर भी डिस्ट्रीब्यूशन में भी कोई भी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते, हमारा नोटिस पे आ रहा तो उनका मतलब प्रोसिक्यूशन विल बी इन प्लेस। ये कंज्यूमर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम लेबल नहीं देखते जनरली, अगर इंडिया में ये प्रैक्टिस है मतलब हम लेबल में इतना ध्यान नहीं करते, तो हम भी चेक करना पड़ेगा एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है करके। इसीलिए सेकेंड हैंड प्रोडक्ट उस तरीके से पॉसिबल नहीं है, मतलब क्योंकि एक पैकेट प्री पैकेज्ड फूड का लेबल का वो है कुछ टैम्पर, बिना टैम्परिंग का कंटेंट बदल नहीं सकते, इसीलिए रीपैकिंग ऑल ये सारा पॉसिबल नहीं है, इसका पनिशमेंट भी है।
1: जी अनुपम जी, क्या मंत्रालय की ओर से उपभोक्ताओं के लिए कोई राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध है?
0: जितने भी उपभोक्ता हैं उनका यह अधिकार है कि उनकी भी किसी भी वस्तु से, किसी भी सेवा से जो खरीदते हैं कोई शिकायत हो तो उस शिकायत का निवारण करवाना।
1: जी
0: इसके लिए उपभोक्ता मंत्रालय विभाग एक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो कि 1915-1915 है, ये टोल फ्री है,
1: जी
0: इसमें आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। यह 17 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: जी
0: इसके साथ ही साथ ये हमारे पोर्टल पर और व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। व्हाट्सएप नंबर है 8800-1915 8800-1915। ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एक प्री लिटिगेशन ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। हम सलाह ये देते हैं कि यदि आपकी कोई शिकायत है तो सबसे पहले आप उस कंपनी से शिकायत करें, यदि वहाँ डिले होता है या जो उसका जो समाधान है आपके अनुरूप नहीं है तब आप NCH में आकर शिकायत कर सकते हैं। और ये व्यवस्था पूर्णतया निःशुल्क है। और पिछले एक वर्षों में NCS के माध्यम से करीब 90 करोड़ रुपए का लोगों को रिफंड भी किया गया है।
1: जी, और व्हाट्सएप पर हमें एक सवाल मिला है राजेश नेमा सिंहपुर बेड़ा से। उन्होंने सवाल किया है, नकली घी और नकली पनीर की समस्या, जो मार्केट में इतना नकली पनीर जो है वो उपलब्ध हो रहा है, उसके लिए सरकार के क्या प्रयास हैं? तो कविता जी, आपसे सवाल ये रहेगा।
3: हाँ जी, नकली घी करके बहुत मतलब रेयर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम घी में कुछ मिलावट करने के, अगर वनस्पति मिलावट हो रहा है, वनस्पति में जरूर तिल का तेल थोड़ा सा रहना चाहिए क्योंकि उसका फ्लेवर एविडेंट होगा, इसीलिए घी में वनस्पति मिलावट होता तो इजीली पकड़ सकते हैं। फिर हमारे पास एक अच्छा टेस्ट मेथड भी है, अगर कुछ वेजिटेबल फैट घी में ऐड हो रहा है बीटा सिटोसिरल करके, उसका प्रेजेंस के थ्रू हम अडल्ट्रेशन को पकड़ सकते हैं, मतलब घी में मिलावट हुआ करके वो इजीली पता कर सकते हैं हम। और उसके अलावा हम अभी रिसेंटली फैटी एसिड कॉम्पोजिशन बोलते हैं, वो यूनिक होता है, वो भी घी के

ये हमने नोटिफाई किया वो और अच्छा है, मतलब मिलावट को अच्छी तरह पकड़ सकते हैं, इसीलिए इतना इजी नहीं है घी में मिलावट करने का। एनालॉग पनीर को मैं बता देता हूँ, पनीर का हमारे पास स्टैंडर्ड है, कैसे इमिटेशन चॉकलेट तरह होता है, मतलब कोकोवा कम होता है उसमें चीनी ज्यादा होता है, इमिटेशन चॉकलेट भी ग्लोबली अवेलेबल है। सेम तरीके से एनालॉग पनीर में भी हमने प्रोविजन दिया है मिल्क फैट के अलावा वेजिटेबल फैट ऐड कर सकते करके। फिर इसमें भी कुछ चर्चा हो रहा है कैसे पता करेंगे लोगों को, कैसे पता मतलब पनीर पैक्ड पनीर रिलायबल वेंडर से हम खरीदेंगे तो हमको पता है पनीर है, तो रेस्टोरेंट में खाएंगे तो वो लोग रिवील करना पड़ेगा हमको ये एनालॉग है और पनीर है। इसके ऊपर हम अभी चर्चा भी कर रहे हैं क्योंकि ये एक तरफ से बेनिफिट है अगर लोगों लैक्टोज इंटॉलरेंस हम बोलते हैं, मतलब वो लोग मिल्क रिलेटेड स्टफ को नहीं लेते।

0: आपको पता है पनीर है तो रेस्टोरेंट में खाएंगे तो वो लोग रिवील करना पड़ेगा हमको ये एनालॉग है और पनीर है। इसके ऊपर हम अभी चर्चा भी कर रहे हैं क्योंकि ये एक तरफ से बेनिफिट है अगर लोगों लैक्टोज इंटॉलरेंस हम बोलते हैं मतलब वो लोग मिल्क रिलेटेड स्टफ को नहीं लेते उन लोगों का अच्छा है एनालॉग। फिर भी बहुत कंप्लेंट्स भी आया हमको क्योंकि टेस्टिंग मेथोडोलॉजी नहीं है इसीलिए हम इसको थोड़ा रिविजिट कर रहे हैं इस तरीके से एनालॉग को।
1: अनुपम जी, हम अक्सर उत्पादों और विशेष रूप से सोने के आभूषणों पर BIS हॉलमार्क देखते हैं, ये हॉलमार्क क्या होता है और ये किस बात की पुष्टि करता है?
2: BIS का जो हॉलमार्क है ये सोने की शुद्धता की गारंटी देता है
1: जी।
2: इसमें बेसिकली तीन निशान हैं, एक है BIS का लोगो जो एक तिकोना सा चिन्ह होता है जो शुद्ध करता बताता है कि इस आभूषण की शुद्धता प्रमाणित है, दूसरा जो होता है वो गोल्ड का कितना कैरेट है ये बताता है, तीसरा एक उसमें 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड है, ये हर एक आभूषण का यूनिक कोड होता है और ये उसकी शुद्धता बताता है। और आप चाहें तो ये जो अल्फा न्यूमेरिक कोड है ये BIS केयर ऐप जो एक BIS के ऐप में है उसमें यदि आप डालेंगे तो उसके सारे डिटेल्स ही आपको दे देगा
1: जी।
2: तो जब भी आप सोने की कोई भी चीज़ खरीदें हम सभी श्रोताओं को बताना चाहेंगे
1: जी,
2: वो BIS का हॉलमार्क जरूर देखें, ये शुद्धता का प्रमाण देता है।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला से, राकेश। राकेश जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी धन्यवाद आपका
1: जी, सवाल पूछिए
3: जी। मेरा एक सवाल ये है कि जैसे हम कंपनी में से शिकायत करते हैं क्या हमें लिखित में क्या बोलते कंप्लेंट करनी पड़ती है या फोन पे जो है जो MSS पे हम क्या बोलते कंप्लेंट कर सकते या हमें लिख के देना पड़ता है, ये मेरा प्रश्न है
1: जी। अनुपम जी
2: पूछिए। जी आप बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है राकेश जी। आपकी कोई भी शिकायत है तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन आप 1915 पर फ़ोन करके कर सकते हैं, आपको उसे राइटिंग में देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर सबसे पहले आप अपनी कंपनी से शिकायत कीजिए, यदि कंपनी में भी आप फ़ोन नंबर है उनके कस्टमर केयर नंबर दिए होते हैं वहाँ कीजिए, वहाँ आप लगता है कि आपकी शिकायत का सही निवारण नहीं हुआ तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो कि प्री लिटिगेशन मतलब कि कोर्ट कचहरी में जाने से पहले की एक व्यवस्था है आप वहाँ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, सिर्फ एक फ़ोन पर और अपनी भाषा में हिंदी में आप दर्ज कर सकते हैं
1: जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शिकायत सुविधा दी गई है। और कविता जी आपसे जानना चाहेंगे, हर्बल दवा के नाम पर शीशी बेची जा रही हैं जिस पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, इसकी शिकायत कहाँ पे की जाए?
0: इसका हमारा एक कंज्यूमर ग्रीवेंस पोर्टल भी है
1: जी।
0: उसमें अगर इस तरीके से प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं आप फोटो के साथ हमको भेज सकते हैं, और मैंने बोला लाइसेंसिंग अप्लाई करने का हमारा फॉस्कॉफ पोर्टल भी है, उसमें भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट ऑल दिस इज मिसलीडिंग मिसब्रांडिंग रिलेटेड अगर ये क्योंकि एक्सपायरी मैंडेटरी देना चाहिए इस तरीके से नहीं है तो ये मतलब पनिशेबल ऑफेंस है। इसको आप ये ग्रीवेंस पोर्टल के थ्रू हमको अप्रोच कर सकते हैं और फोस्कॉफ पोर्टल में मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को आप कर सकते हैं, हेडक्वार्टर को लिख सकते हैं। अगर ये कंप्लेंट मतलब लाइसेंस खुद स्टेट में दिया है और सेंट्रल में दिया है वो स्टेट कोड के हिसाब से कंसर्न डेसिग्नेटर ऑफिसर और कंसर्न फूड सेफ्टी कमिश्नर को अप्रोच करके दे सकते हैं आप, हम उसको एग्जामिन करेंगे मतलब वो फूड बिजनेस ऑपरेटर को हम लिखेंगे करेक्टिव एक्शन के ऊपर, अगर नहीं ले रहे तो उसके बाद हम फर्दर एक्शन ले लेंगे।
1: अनुपम जी पैकेज पर कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए, कानूनी रूप से जरूरी है, और जैसे एक्सपायरी बैच नंबर निर्माता का पता अगर ये ना हो तो उपभोक्ता क्या करे?
2: पैकेज पर कई एक तो फूड सेफ्टी एक्ट में पैकेज पर कई डिटेल्स फूड रिलेटेड देने की अनिवार्यता है, उसके साथ साथ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में पैकेज कमोडिटी रूल्स में भी कई डिक्लेरेशंस देने जरूरी होते हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है MRP उसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट क्या है, कंट्री ऑफ ओरिजिन वो प्रोडक्ट किस देश का बना हुआ है कहाँ से है, मैन्युफैक्चरर्स नेम एंड एड्रेस, नेट क्वांटिटी 1 किलो है वजन उसका कितना है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर और उसके कस्टमर केयर डिटेल। इनफैक्ट यदि जो उपभोक्ता है कोई भी सामान खरीदने से पहले उसके पैकेज पर दिए हुए सारे डिटेल्स यदि अच्छे से पढ़ते हैं तो उनके उस प्रोडक्ट के रिलेटेड

0: कई जानकारियां उनको मिल सकती हैं।
1: और अंत में जानना चाहेंगे कि एक जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान क्या है?
0: एक जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान है कि पहला, पैकेज कमोडिटी में दिए गए सारे डिटेल्स को अच्छी तरह पढ़ता है,
1: जी
0: नंबर एक। नंबर दो, कोई भी सामान खरीदने से पहले उसका बिल लेता है। तीसरा, यदि उसके कोई शिकायत है तो उसके निवारण के लिए शिकायत करता है अपने
1: जी
0: ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म के थ्रू। ये तीन जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान है।
1: कविता जी, आपके अनुसार एक जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान क्या हो सकती है?
2: जी, एक इन्फॉर्म्ड चॉइस होने का लेबलिंग को पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है कंज्यूमर के तरफ से, क्योंकि रेगुलेटर स्टैंडर्ड्स दे देगा, फूड बिजनेस ऑपरेटर क्या क्या कंप्लाई करना है वो लोग कंप्लाई करेंगे, कुछ इनएडवर्टेंटली भी मिस कर सकते हैं, क्योंकि फूड सेफ्टी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रेगुलेटर, फूड बिजनेस ऑपरेटर एंड कंज्यूमर। सो कंज्यूमर का भी इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल है लेबल में क्या दिया है। हम बहुत कुछ चीज में सर्विंग साइज मिस कर देते हैं आजकल, हम बताते हैं मतलब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी देखना हमारा आदत है, वो छोड़ के कौन सा इंग्रेडिएंट्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया होता है, अगर फैट ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, साल्ट ज्यादा है, मतलब ये सारा कॉमन मैन को समझ आना चाहिए। सर्विंग साइज, एक पैकेट में चिप्स में चार सर्विंग है तो हम पूरा पैकेट नहीं लेना चाहिए। ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारा हेल्थ के हिसाब से। अगर कुछ कंप्लेन भी उधर हम मतलब कुछ इश्यूज है, कुछ टॉल क्लेम्स है, कंज्यूमर कैसे अप्रोच
1: जी कविता जी,
2: वो भी
1: समय
2: चाहिए।
1: समय अब समाप्त हो रहा है, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं आपसे विदा लिया जाए। तो हमारे साथ आज जो भी श्रोता जुड़े और उपभोक्ता कार्य विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की साइंस स्टैंडर्ड की संयुक्त निदेशक डॉक्टर कविता रामास्वामी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया,
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, इसी के साथ आज का पब्लिक स्पीक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। मुकेश कुमार को अनुमति दीजिए, नमस्कार।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। प्रस्तुत है पुराने फिल्मी गानों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दरभंगा के फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी में। मैं भवेश, आपका रेडियो मित्र, और आज के इस सुहाने सफर में आपके साथ मुखातिब हूँ। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल करें, हमारे नंबर 9430023535 पर, और सुने अपनी पसंद के पुराने फिल्मी गाने अभी के अभी अपने रेडियो सेट पर। आइए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन हैं। हेलो।
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं, कौन साहब बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम मोहम्मद हाशिम है, टूंगा चतरिया से बोल रहे हैं।
0: मोहम्मद हाशिम, बहुत बहुत स्वागत आप।

0: का कैसे हैं?
1: ठीक है मालिक के दे। आप कैसे सर?
0: बिल्कुल ठीक हूँ। और मोहम्मद हाशिम, सबसे पहले अपनी फरमाइश हमें बता दें, आज कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: सेवक और मुकेश साहब के आवाज में गाना है, बरखा रानी जरा झमके बोल दो।
0: बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश आपने की है, और मौके की नजाकत भी है, बारिश बारिश भी हो रही है।
1: हाँ सर, बारिश।
0: आज बहुत दिनों के बाद गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है।
1: हाँ
0: जी,
1: जी
0: और हासिम साहब, आपके अगल बगल में काफ़ी शोर हो रहा है। अच्छा,
1: ना तो इसलिए।
0: चलिए, बच्चे लोग आए हैं तो जाहिर सी बात है, खेल कूद तो होगा ही। हासिम साहब, आप कार्यक्रम में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी फरमाइश हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जी
1: शुक्रिया।

0: बताएं।
1: मैं रामपट्टी घोषणा जिला मधुबनी बिहार से शिवनारायण महतो बोल रहा हूँ। सर को एक बार पुनः नमस्कार, साथ साथ तमाम श्रोता मित्र जो प्रोग्राम सुन रहे हैं उन्हें भी मेरा नमस्कार।
0: शुभ नारायण महतो जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। कैसे हैं
1: बहुत बढ़िया हूँ सर, बहुत बढ़िया हूँ।
0: जी? और फरमाइश हमें बता दें जल्दी से।
1: आज मुझे फिल्म पगला कहीं का गीत है, वहां तुम मुझे यूं बुला न पाओगे,
0: जी
1: लता जी
0: आप
1: के स्वर में चला
0: लता जी और
1: दीजिए।
0: मोहम्मद रफ़ी जी, दोनों ही के स्वर में गाने
1: जी
0: उपलब्ध हैं, किनके स्वर में सुनना पसंद करेंगे?
1: तो मोहम्मद रफी साहब के स्वर में है तो मोहम्मद रफी साहब के स्वर में सुना दीजिए।
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल। और शुभ नारायण महतो जी, एक बात आपसे पूछना चाहूँगा। रेडियो पर फरमाइश करने का सिलसिला कब से चल रहा है? कुछ कुछ बताएंगे इसके बारे में?
1: जी, रेडियो पर मैं लगभग 1981 से आ रहा सुन रहा हूँ
0: जी
1: प्रोग्राम आपका, आकाशवाणी दरभंगा
0: जी जी
1: 81-82 से लगभग, जिसमें मैं इंटर का छात्र था। तो
0: जी
1: उस समय जो मैंने आकाशवाणी दरभंगा, वैसे पटना से भी मैं शुरू में सुन रहा था कुछ गीत
0: जी
1: फरमाइश का,
0: जी
1: लेकिन बाद में जब दरभंगा स्टेशन खुला तो उसी समय से मैं आकाशवाणी दरभंगा से जुड़ा और आज तक जुड़ा हुआ हूँ।
0: चलिए, और आगे भी हमारी कामना है कि आप ऐसे ही हम सबसे जुड़े रहें
1: जी
0: जी। और
1: सर, हम लोग के क्षेत्रीय केंद्र प्रोग्राम रेडियो स्टेशन दरभंगा है,
0: जी
1: तो इच्छा है कि जब तक रेडियो सुनता रहूंगा तो आपके आकाशवाणी दरभंगा को ही सुनता रहूंगा, और सुनता हूँ लेकिन आकाशवाणी दरभंगा तो सुनता ही रहूंगा।
0: जी और आकाशवाणी दरभंगा, आप जी, आप कार्यक्रम से जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी फरमाइश हम आपके रेडियो सेट तक पहुंचा रहे हैं जी। गाना को सुने जी।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, नमस्कार। अपना नाम बताएं।
1: नमस्कार सर।
0: जी, अपना नाम।

0: आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। अपनी फरमाइश सुनने के लिए हमें कॉल करें हमारे नंबर 9430029353 पर और सुने अभी से लेकर रात के 11 बजे तक अपनी पसंद के पुराने फिल्मी गाने। हेलो
1: हेलो सर जी, नमस्कार।
0: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
1: सर मैं उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर से मुकेश कश्यप आपसे बात कर रहा हूँ। सर
0: मुकेश कश्यप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, कैसे हैं?
1: सर मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताएं सर आप कैसे हो और दरभंगा परिवार में सभी लोग कैसे हैं? सर
0: सभी लोग अच्छे हैं। और मुकेश कश्यप जी फरमाइश बता दें।
1: सर मेरे फिल्म का नाम है आया सावन झुमके, इसका टाइटल सॉन्ग सुनना है सर।
0: आया सावन झूमके टाइटल सॉन्ग सुनना है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।
1: जी सर
0: बहुत ही अच्छे बहुत ही प्यारे गाने की फरमाइश आपने की है। और
1: सर मैं आपको बता दूं अपने यहाँ के मौसम के बारे में कि सुबह से आज मेरे यहाँ रिमझिम बारिश हो रही है सर और अभी हो रही है।
0: क्या बात है, बहुत खूब। और मैं भी आपको बता दूँ कि आज शाम से दरभंगा बिहार में भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और मौसम मिला जुला कर कहेंगे तो थोड़ा पहले से बेहतर है, गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है। जी
1: जी जी सर।
0: और मुकेश जी क्या करते हैं आप, कुछ कुछ बताएंगे अपने बारे में?
1: बिल्कुल सर, हमारे सर खेती बाड़ी भी है जिसमें हमने अपने धान लगा दिए हैं।
0: चलिए बहुत
1: और
0: अच्छी
1: सर
0: बात है।
1: और सर जो छोटी गाड़ी होती है इलेक्ट्रॉनिक,
0: अच्छा
1: जिसमें 4-5 सवारी बैठे हैं, वो मैं गाड़ी चलाता हूँ सर।
0: बहुत खूब, एक साथ आप दो दो कामों को लेकर चल रहे हैं ऊपर। जी आपको बहुत बहुत शुभकामना आपके आगे के भविष्य के लिए और इसी तरह आप मेहनत करते रहें। जी आपकी पसंद का ये गाना आप तक हम पहुंचा रहे हैं, गाना को सुने। जी आप कार्यक्रम से जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्ते सर।
0: जी

0: हेलो जी, अपना नाम बताएं।
1: राम कुमार झा, सिमरिया कल्याणपुर समस्तीपुर से बोल रहा हूँ। श्रीमान जी,
0: जी, राम कुमार शाह जी, बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं?
1: मर्जी आप लोगों की कृपा, मैं सानंद हूँ
0: जी
1: और ये और पूरे आकाशवाणी परिवार को मैं शुभकामना देता हूँ।
0: जी, और कृपा तो ऊपर ऊपर वाले की है, जो हम सब सुरक्षित हैं, ठीक हैं, और इस वक्त
1: जी
0: का
1: हाँ, फरमाइश
0: जी। और फरमाइश बता दें।
1: है सर, उपकार फिल्म जो है जिसमें
0: जी,
1: कि उनकी जो है फिल्म जिसमें कि कसम है, वादे, प्यार, वफा, बातें हैं, बातों का
0: मन्ना डे की आवाज़ में।
1: जी
0: जी
1: मन्ना डे की आवाज है,
0: जी
1: शास्त्रीय धुन पर आधारित
0: जी जी
1: ये मैं सुनना चाहता हूँ।
0: जी बिल्कुल, इंडिवर का लिखा गाना और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।
1: जी सर,
0: जी,
1: जी सर,
0: बहुत ही अच्छे गाने की फरमाइश आपने की है। जी जी आप राम कुमार शाह जी, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद आपको भी श्रीमान कि आपने मुझे शामिल किया अपने कार्यक्रम में।
0: जी
1: जी सर, ठीक
0: और
1: है सर,
0: चलते हैं, आपकी ये प्यारी सी फरमाइश सुनते हैं। जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी आपका भी हमसे जुड़ने के लिए और कार्यक्रम की शोभा
1: जी
0: बढ़ाने के लिए।
1: जी सर, जी सर,
0: बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो हेलो
1: हाँ नमस्कार सर।
0: जी, नमस्कार। अपना नाम बताएं।
1: साबिर परवाना बोल रहे हैं, नाहरमन टोला जिला मधुबनी गया।
0: साबिर परवाना जी, कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में
1: बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसे
0: जी।
1: हैं सर आप?
0: बिल्कुल ठीक हूँ। और फरमाइश बताएं, कौन सा गाना सुनना पसंद
1: प्यासा
0: करेंगे?
1: सावन का गाना सुना दीजिए, मेघा रे मेघा रे।
0: मेघारे मेघारे, लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में।
1: जी जी
0: चलिए, आपकी फरमाइश हम ज़रूर पूरी करेंगे। और साबिर परवाना जी, और बताएं, आस पड़ोस में सब कैसे हैं?
1: तो सर दिल्ली में है अभी। जी
0: अच्छा, अभी आप दिल्ली में हैं। मोबाइल के जरिए, आप मोबाइल ऐप के जरिए आप कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं
1: जी बहुत
0: जी। दिल्ली में प्रसारण कैसा कैसा जा रहा है ऐप पर हमारा?
1: बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ अभी अभी जो कॉल लगा अकरम भाई का, उसमें
0: जी साबिर परवाना जी, आपकी पसंद का ये गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद
1: ठीक है।
0: जी।
1: नमस्कार सर।
0: जी नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, नमस्कार। अपना नाम बताएं, कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से?
1: नमस्कार, हम दस्तगीर अंसारी बोल रहे हैं, मोहल्ला फैजुल्ला खां से,
0: जी अंसारी जी, बहुत
1: खां
0: बहुत
1: साहब की हवेली से। जी,
0: जी अंसारी साहब, बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हैं।

0: भावेश भाई, आप कैसे हैं?
1: बिल्कुल ठीक हूँ। और अंसारी साहब, कहना चाहूँगा कि रेडियो पर आप कार्यक्रम सुन रहे हैं इस वक्त।
0: जी सर, हम तो जमाने से सुनते हैं सर। जिस जमाने
1: जी
0: में 80 और 82 में रेडियो के हम बहुत फैन थे। और
1: तो कहना बस ये चीज़ मतलब चाह रहा हूँ कि रेडियो की वॉल्यूम को थोड़ी सी कम कर लें या अपने पास से थोड़ी सी दूर कर लें। आवाज़ में इको हो रहा है जी, सुनने में कठिनाई हो रही है जी जी और अंसारी साहब, फरमाइश बताएं, आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
0: लाला मजनू का जो लता मंगेशकर के आवाज में है, तो
1: कोई पत्थर से
0: वो
1: ना
0: गाना
1: मारे।
0: सुना दीजिए
1: जी बिल्कुल
0: जी। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी फरमाइश हम ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे। और अंसारी जी बताएं, कार्यक्रम कब से आप सुन रहे हैं?
0: लगभग हम तो होश संभाले हैं, तो दरभंगा स्टेशन को ही जाने हैं। कुछ पहले विविध भारती सुनते थे
1: जी
0: और सिलोन रेडियो सिलोन वगैरह सब सुनते थे।
1: जी
0: फिर से अपना दरभंगा स्टेशन आया
1: जी जी
0: तो अपना ये सब प्रणाम काम गोल वगैरह इसको सब दाम घर तो बहुत शौक से सुनते हैं साथ में। और अभी तक खैर नया से नया प्रोग्राम थोड़ा चल रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम सब देते हैं।
1: जी
0: और माशाल्लाह आप लोग का आवाज भी अलग दिया है।
1: जी
0: जो 11 बजे से जो सुनते हैं हम
1: जी
0: लोग,
1: जी हेलो हेलो
0: वो
1: जिंदगी
0: हेलो जिंदगी हेलो
1: जी
0: जिंदगी उसको बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हैं।
1: जी
0: और उससे आदमी का बहुत मतलब मनोबल बढ़ता है। और वो समझिए ना कि हम लोग रेडियो से जुड़े हुए हैं, अच्छे से थके आ रहे हैं, काम करते हैं, रेडियो में सारा दुनिया एकदम भूल गए। रेडियो में एक लड़के थकान उतरता है हम लोग का।
1: चलिए अंसारी जी, ये सब बातें सुनकर हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत सफल है, हमारा प्रयास सफल है और ये कार्यक्रम श्रोताओं के लिए है और आकाशवाणी भी श्रोताओं के लिए है। तो बहुत बहुत ही बहुत ही अच्छा लगा ये मतलब जानकर। और अंसारी जी, आपके पसंद का ये गाना हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप कार्यक्रम में जुड़े और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, इसके लिए बहुत बहुत
0: धन्यवाद। एक
1: शुक्रिया
0: बात और सुन लीजिए
1: जी
0: सर, एक
1: जी
0: बात और सुन लीजिए, आपकी जितनी टीम है
1: जी
0: सबको हमारे तरफ से 15 अगस्त का मुबारक हो।
1: जी
0: बढ़िया सर, और आप लोग अल्लाह ताला लंबी उम्र दे
1: जी
0: और हम लोग भी इसी तरह रहे। भले हो
1: जी शुक्रिया।
0: शुक्रिया सर।

0: हेलो।
1: नमस्कार भैया, नमस्कार। मैं आदिवासी टाइल्स से बात कर रहा हूँ सर।
0: जी, अपना अपना नाम बताएं।
1: मेरा नाम टाइल हुसैन है। ठीक
0: जी हुसैन साहब, कैसे हैं?
1: है सर, आज कुछ गर्मी से राहत हो रहा है, मिल रहा है।
0: राहत आज मिली है गर्मी से?
1: जी, छोटा तो बारिश हुआ है।
0: चलिए, बारिश हुई है तो मन को भी ठंडक है, तन को भी ठंडक है
1: जी।
0: और मौसम भी खुशनुमा बना हुआ है।

0: अच्छी बात है। और गर्मी की तपिश भी काफ़ी ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा थी।
1: सर बहुत काफी जी बहुत बुरा हाल है।
0: जी, फरमाइश हमें बता दें।
1: नीलकमल सिंह का गाना आप सुना दीजिए, साथ
0: जी
1: में आपको प्यार भरा नमस्कार हमारे आनंद कुमार जी हैं।
0: ताहिर जी, कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह के डेडिकेशन से बचें, किसी भी तरह के। जी हेलो। जी, और आपकी फरमाइश हमने ढूंढ निकाली है और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गाना को सुने,
1: शुभ
0: आप कार्यक्रम में
1: रात्रि
0: शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपको भी शुभ रात्रि।
0: जी।

0: हेलो
1: हेलो, प्रणाम भैया।
0: जी, प्रणाम। अपना नाम बताएं, कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से?
1: हम मुबारकपुर जिले से अकरम बोल रहे हैं, गांव कोतवन्ना, जिला दरभंगा में। हाँ
0: जी अकरम साहब, कैसे हैं? स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: हाँ बहुत बढ़िया भैया, मौसम भी बढ़िया है, सही
0: जी
1: है। नहीं,
0: तो इस वक्त आप दिल्ली में हैं या आप यहाँ हैं दरभंगा में?
1: अभी तो दिल्ली में है। जी
0: अच्छा, अभी आप दिल्ली में हैं। दिल्ली का मौसम कैसा है? बारिश बारिश हो रही है?
1: हाँ, वैसे ही है, हो रहा है बारिश, कभी नहीं, जो दिन होता है एक दिन होती।
0: अच्छा, फरमाइश।
1: गर्मी का मौसम है, वो
0: जी
1: तो
0: जी
1: होता ही रहता है। हाँ,
0: जी जी फरमाइश, हमें बताएंगे कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: वो हिमालय की गोद पे है, फिल्म
0: जी
1: की नाम है, हिमालय
0: जी
1: की गोद में, चांद
0: तो
1: की फिल्म है, दुबाव में भी बहुत।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और अकरम साहब, कहना चाहूँगा कि समय की थोड़ी कमी है, तो बिना देर किए ये गाना हम आप तक पहुँचाते हैं। आप कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी
1: जी, कल्याण।

इस गीत के साथ ही वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में फिर मिलेंगे नए श्रोता नई फरमाइश के साथ, आपके पसंदीदा गीतों के साथ। मैं भवेश यहीं लेता हूं विदा। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा और संयोजक अमित कुमार के साथ। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात नए गीतों और नई फरमाइशों के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।

0: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी पुराने फिल्मी गानों का हमारा फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को हैं। अब समाचार होंगे क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में।
1: अब आप समाचार सुनेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
2: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलिन ब्लैक स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक निरीक्षण कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने अब तक की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को

भी कहा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, वैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं। इनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमारी चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा अध्यक्ष बनाए गए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत गणना का चरण आज पूरा हो गया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत दिल्ली में लगभग 1,45,00,000 फॉर्म बांटे गए। इस दौरान 13,000 से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारी घर घर पहुंचे और मतदाता सूची के सत्यापन का काम पूरा किया। इस महीने की 24 तारीख से 23 सितम्बर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।